नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि सीमा को हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। यह निर्णय राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया है। इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना जरूरी था। बयान में कहा गया है कि भारत में यह क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज से रूस की 2 दिन की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। वे व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉ जयशंकर यात्रा के दौरान रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स JRSE लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। शिलान्यास समारोह के बाद JRSE भवन में लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद रक्षा मंत्री का युवा भारती किरंगन में ईस्ट बंगाल FC और मोहन बागान सुपर जायंट के बीच डूरंड कप का फाइनल मैच देखने का भी कार्यक्रम है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने नवी मुंबई के कपड़ा अपशिष्ट पुनर्चक्रण मॉडल का विस्तार महाराष्ट्र के अन्य नगर निगमों में भी करने का आह्वान किया है। इससे बढ़ते कपड़ा अपशिष्ट की समस्या से निपटने के साथ साथ नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे

हरी पिला श्रावण मास आसीगले दुनिया सारा लोके राखी दिन को अनई बसंती परस्पर भितरे किछि भी संपर्क नथिले मध्य राखी द्वारा भाई भूनी रो संपर्क गढ़ीबा पाई।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों से वार्ता की। वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में प्रस्ताव पारित। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन सीमा समाप्त करने की अधिसूचना जारी की। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज। ब्रिटेन के सांसदों का संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या मामले में हस्तक्षेप का आह्वान। बंगाल की खाड़ी में मालवाहक जहाज डूबा, चालक दल के 24 सदस्य थे सवार। भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने बचाव अभियान शुरू किया। और भारत की मानसी लाठर ने स्लोवाकिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। तन्वी और कोमल को कांस्य पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री मोदी ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचार और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ जुड़ाव को बढ़ाना है।
1: एक सोशल मीडिया पोस्ट में नितिन नबीन ने कहा कि भाजपा ने वंदे मातरम की ऐतिहासिक विरासत के सम्मान और संरक्षण के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें पार्टी ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 19 अगस्त को कांग्रेस कार्यक्रमों में वंदे मातरम के गायन को केवल पहले दो पैरा तक सीमित करने वाली वर्ष 1937 के प्रस्ताव को पुनः लागू किए जाने के निर्णय की कड़ी निंदा की। पार्टी ने राष्ट्रीय गीत के रूप में संपूर्ण वंदे मातरम के सम्मान, गरिमा, विरासत और राष्ट्रीय महत्व को बनाए रखने का संकल्प लिया। श्री नबीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। आनंद और प्रिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट

0: की विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इससे पहले कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। बयान में कहा गया कि भारत में ये क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। मंत्रालय का मानना है कि टेलीविजन उद्योग और डिजिटल मीडिया के बीच पर्याप्त प्रतिस्पर्धा है। टेलीविजन के लिए विज्ञापन अवधि सीमा 2006 में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के तहत लागू की गई थी। तब से लेकर आज तक टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उस समय टीवी चैनलों को प्रसारित करने के मुख्य माध्यम केबल टीवी

0: में टीवी चैनलों को प्रसारित करने के मुख्य माध्यम केबल टीवी की प्रसारण क्षमता सीमित थी और उपभोक्ताओं के पास बहुत कम विकल्प थे। केबल टीवी क्षेत्र के डिजिटलीकरण के बाद डीटीएच, एचआईएसटी और आईपीटीवी सहित सभी प्लेटफॉर्म अब डिजिटल हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की दो दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। इसके बाद रक्षा मंत्री का युवा भारती क्रीड़ांगन में ईस्ट बंगाल एफसी और मोहन बागान सुपर जायंट्स के बीच डूरेंट कप का फाइनल मैच देखने का भी कार्यक्रम है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है और किसी को भी अहिंसा के इन मूल्यों को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। श्री सिंह ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना सरकार की सर्वोपरि कर्तव्य है।
2: अहिंसा का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि किसी को की हत्या मत करो, किसी को मारा नहीं जाना चाहिए। अहिंसा का अर्थ है मन, वचन और कर्म से किसी भी रूप से किसी को पीड़ा न पहुंचाई। अहिंसा के मूल्य को हमारी कमजोरी किसी भी सूरत में नहीं समझी जानी चाहिए। हमारे अहिंसा को गलत मत समझो, अहिंसा और शांति हमारी संस्कृति है।
1: रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने खरीफ और आगामी रबी मौसम के लिए उर्वरक विभाग की तैयारियों की कल समीक्षा की। नई दिल्ली में कल एक बैठक में उन्होंने कहा कि किसानों को उर्वरकों की निर्बाध और समय पर आपूर्ति करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत को विश्व की फार्मेसी की अपनी पहचान से आगे बढ़कर अनुसंधान, नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों के बल पर विश्व की प्रयोगशाला के रूप में उभरना होगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में स्वास्थ्य सेवा में एआई को बढ़ावा देना विषय पर आयोजित हेल्थ केयर समिट में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की परिवर्तनकारी क्षमता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एआई दवाओं की खोज में तेजी ला सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इसमें खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी भाग लेंगी। कार्यक्रम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता, द्विपक्षीय बैठक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल होंगे। बैठक के समापन पर ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 अनुकूलन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। ब्रिटेन के 70 से अधिक सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या रोकने और नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। इस क्षेत्र में पाकिस्तान की सेना की निर्मम कार्रवाई में सैकड़ों लोगों के मारे जाने और घायल होने के बाद ये अपील की गई है। इस क्षेत्र में कड़ी नाकाबंदी और कर्फ्यू के कारण संचार व्यवस्थाएं ठप हैं। इस बीच बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में बलूच यकजहती कमेटी ने आम नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना के ड्रोन हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे सरकार प्रायोजित आतंकवाद करार दिया है। इसमें 4 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। BYC ने बताया कि शुक्रवार को मस्तुंग के खड़कुचा इलाके में एक ड्रोन हमले में 4 मजदूर मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इनमें चीनी नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। एक रिपोर्ट।
3: अधिकारियों ने बताया कि ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर ये दुर्घटना हुई। जहाज एमवी ओशन विनर के चालक दल में चीन के 20, म्यांमार के 3 और एक बांग्लादेशी नागरिक सवार था। जहाज ओडिशा से करीब 72,000 मीट्रिक टन लौह अयस्क

0: लेकर 20 अगस्त को पारादीप तट से सिंगापुर के लिए रवाना हुआ था। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को बचाया जा चुका है। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: भारतीय वायुसेना ने हाल ही में 2 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यासों में सफलतापूर्वक भाग लिया है। इनमें ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक 2026 और मलेशिया में उदार शक्ति 2026 अभ्यास शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 2 देशों के बीच इन अभ्यासों से भारतीय वायुसेना ने परिचालन क्षमता, उन्नत सामरिक समन्वय और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक रक्षा साझेदारी और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। मंत्रालय ने कहा है कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन वायुसेना द्वारा आयोजित अभ्यास पिच ब्लैक के दौरान भारतीय वायुसेना ने अपने अग्रिम पंक्ति के राफेल विमानों के साथ 20 से अधिक भागीदारी देशों की वायुसेनाओं के साथ मिलकर अभ्यास किया। उधर मलेशिया में आयोजित सैन्य अभ्यास उदार शक्ति के दौरान भारतीय वायुसेना के चालक दल ने रॉयल मलेशियन वायुसेना के साथ मिलकर उच्च तीव्रता वाले लड़ाकू मिशन और संयुक्त सामरिक युद्ध अभ्यास किए। आरजू और प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने जयपुर में अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में हुई अनियमितताओं के लिए एडुकेटी करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रभावित परीक्षार्थियों के लिए पुनर्परीक्षा अगले महीने की 1 तारीख को जयपुर में आयोजित की जाएगी। स्लोवाकिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने 3 पदक और जीत लिए हैं। मानसी लाठर ने रजत पदक और तन्वी गुंदेश, मखदूम और कोमल ने कांस्य पदक हासिल किए। और भारत और श्रीलंका के बीच वर्तमान क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज कोलंबो में शुरू होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से खेला जाएगा। भारत पहला टेस्ट 165 रन से जीतकर श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अन्य खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में कल विश्व एथलेटिक्स रजत स्तरीय प्रतियोगिता में भारत के रोहित यादव ने भाला फेंक और मुरली श्रीशंकर ने लंबी कूद स्पर्धाओं में जीत हासिल की। रोहित ने अपने 6ठे और अंतिम प्रयास में 87.68 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने 8.07 मीटर की छलांग लगाकर पहला स्थान हासिल किया। महिलाओं की लंबी कूद में एनसी सोजान पहले, शैली सिंह दूसरे, जबकि मुबस्सिना मोहम्मद तीसरे स्थान पर रहीं। नाइजीरिया के चुकवू एबुका एनेक्वेची ने पुरुषों के शॉटपुट का खिताब जीता, जबकि इटली के जेन वियर दूसरे स्थान पर रहे। इसके अलावा खेल मंत्रालय ने अगले महीने से जापान में शुरू होने वाले एशियाई खेलों के लिए 492 सदस्यीय दल को मंजूरी दे दी है। इस बार एथलेटिक्स के सर्वाधिक 73 प्रतिभागियों को शामिल किया गया है।
1: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और विदर्भ में दिनभर तेज वर्षा का अनुमान है। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत में भी अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। इस बीच अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मंगलवार तक गरज चमक के साथ तूफान की आशंका है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों की नई दिल्ली में बैठक की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भाजपा जेनजी से जुड़ेगी, 14 से 25 वर्ष के युवाओं से जुड़ने के लिए पार्टी अभियान चलाएगी। जनसत्ता का शीर्षक है, राष्ट्रगीत के सम्मान से किसी तरह का समझौता स्वीकार नहीं, भाजपा ने वंदे मातरम पर कांग्रेस के निर्णय की आलोचना की। अमर उजाला के अनुसार कांग्रेस के पूरा वंदे मातरम न गाने खिलाफ प्रस्ताव पास, विकसित भारत का उद्घोष भी वंदे मातरम। दैनिक जागरण ने वंदे मातरम पर घिरी कांग्रेस शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वंदे मातरम के 2 ही पद गाने की कांग्रेस की जिद से ये साफ है कि सोनिया गांधी ने 15 अगस्त को पार्टी मुख्यालय पर उसके पूर्ण गायन पर आपत्ति जताई थी। पंजाब केसरी का शीर्षक है, गोरखा मुद्दे पर समझौते की तैयारी, सरकार ने गठित की समिति, चिकन नेक को मिलेगी अवैध सुरक्षा। गृहमंत्री अमित शाह, गोरखा नेताओं और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच हुई बैठक का उद्देश्य वर्तमान समस्याओं का समाधान करना। नवभारत टाइम्स ने विदेश मंत्री जयशंकर का बयान देते हुए लिखा है, पाक यूनिक आतंक फैलाता है, बोले चीन के साथ अच्छे रिश्ते दोनों के हित में। अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने कहा, भारत यूएस संबंध ट्रंप और मोदी की दोस्ती पर आधारित। राजस्थान पत्रिका ने नया युद्ध शीर्षक से दिया है, ईरान

0: ईरान की घेरेबंदी के बीच अमेरिका में साइबर हमले, ड्रोन मिसाइलें शांत, अब यूएस और ईरान के बीच साइलेंट वॉर। अमर उजाला के अनुसार मुनीर के खिलाफ पाकिस्तानी सेना में असंतोष, रावलपिंडी की सुरक्षा बढ़ाई गई, पूर्व सैनिकों के संगठनों में भी बढ़ी नाराजगी, सुरक्षा बलों पर हमले को बताया कारण। दैनिक जागरण का शीर्षक है 1 सितम्बर से ई बोर्डिंग पास दिखाकर हो सकेगी विदेश यात्रा, एयरपोर्ट पर फिजिकल बोर्डिंग पास और स्टैम्पिंग व्यवस्था खत्म होगी। दैनिक भास्कर ने खास खबर में दिया है चैटबॉट नहीं, बुजुर्ग सबसे बड़े लाइफ कोच, संकट में सर्च के बजाय संवाद करें, समाधान के साथ नया नजरिया भी मिलेगा। 1500 अमरीकी बुजुर्गों की युवाओं को सीख, जो हाथ में है उसी पर फोकस करें। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार कांगड़ा की अंशिका और प्रवीण राणा बने प्रेरणा स्रोत, एक साथ की LLB, बेटी टॉपर और पिता तीसरे स्थान पर। राजस्थान पत्रिका के अनुसार 3 साल बाद विदेश में टेस्ट सीरीज जीतने उतरेगी भारतीय टीम, श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट की श्रृंखला में टीम इंडिया 1-0 से आगे।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नव नियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों से वार्ता की, वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में प्रस्ताव पारित। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन सीमा समाप्त करने की अधिसूचना जारी की। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज। ब्रिटेन के सांसदों का संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या मामले में हस्तक्षेप का आह्वान। बंगाल की खाड़ी में मालवाहक जहाज डूबा, भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने बचाव अभियान शुरू किया। और भारत की मानसी लाठर ने स्लोवाकिया में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता, तन्वी और कोमल को कांस्य। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आपने ट्यून किया है विविध भारती और कार्यक्रम है चित्रलोक। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं हेट स्टोरी 3 इस फिल्म का गीत अरमान मलिक और नीति मोहन की आवाजों में। रश्मि विराग ने इसे लिखा है, अमाल मलिक का संगीत।

0: रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किस्से होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: साथियों, आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है। ये दिवस हमें भारत की अंतरिक्ष यात्रा और वैज्ञानिक उपलब्धियों पर गर्व करने का अवसर देता है। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता ने पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाया। ये दिन हमारे वैज्ञानिकों के समर्पण, प्रतिभा और आत्मनिर्भर भारत की ताकत को सलाम करने के साथ साथ युवाओं को विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और आइए अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं बटला हाउस, इस फिल्म का गीत नेहा कक्कड़, तुलसी कुमार और बी प्राक की आवाजों में। तनिष्क बागची और देव कोहली ने इसे लिखा है, संगीत है तनिष्क बागची और विशाल शेखर का।

मुबारका फिल्म का गीत सुनिए मीका सिंह और प्रकृति कक्कर की आवाजों में। इसे लिखा है कुमार ने, गौरव रोशनी का संगीत।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं वार। इस फिल्म का गीत अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाजें हैं। कुमार ने इसे लिखा है, विशाल शेखर का संगीत।

लीजिए अब आपको सुनवाते हैं सूर्यवंशी फिल्म का गीत। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में तनिष्क बागची आनंद बख्शी ने इसे लिखा है और तनिष्क बागची और वीजू शाह का संगीत।

नेहा कक्कर और मीका सिंह और कुमार सानू की आवाजों में सुनिए सिम्बा फिल्म का ये गीत। शब्बीर अहमद ने इसे लिखा है, तनिष्क बागची का संगीत।

तो ये था हमारा आज का खास संगीत सफर, जहां अलग अलग धुनों या फिर एक ही धुनों वाले गीत आपको सुनवाए गए, और कभी धुनें अलग थीं, कभी शब्द अलग थे। इस तरह के गीतों का ये सफर था। फिर होगी मुलाकात फिर किसी कार्यक्रम में। फिलहाल चित्रलोक कार्यक्रम से नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बागी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गावा बैठी पिया।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।
3: आज के फनकार।

जी हाँ दोस्तों, कमसीन तो वो थी ही और है भी। इसी मारूफ कमसीनियत की बदौलत उन्हें कई फिल्मों का ऑफर मिला। सायरा बानो की माता जी उस जमाने की जानी मानी अभिनेत्री थी नसीम बानो। उनके पिता प्रोड्यूसर थे एहसान उल हक साहब। उनकी दादी भी नामचीन थी छमिया बाई, जो कि शमशाद बेगम ऑफ दिल्ली के नाम से मशहूर थी। उत्तर प्रदेश

के हसनपुर से ये परिवार था। सायरा बानू को अदाकारी जैसे विरासत में ही मिली थी। पहली ही फिल्म जंगली में उन्हें काफी सराहना मिली और फिल्म फेयर के बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड का नॉमिनेशन भी मिला।

फिल्म जंगली के कहानीकार और संवाद लेखक थे मशहूर उर्दू राइटर आगा जानी कश्मीरी। लंदन से तालीम याफ्ता सायरा बानू को उर्दू की डायलॉग डिलीवरी की सलाहियत आगा जानी कश्मीरी ने ही सिखाई, वो उनके लिए काफी मददगार साबित हुई। शम्मी कपूर के साथ उनकी पहली फिल्म जो जंगली बनी, इसके बाद उन्हें काफी मकबूलियत हासिल हुई। इसी वजह से वो उस जमाने की लव स्टोरीज की जैसे रोमांटिक हीरोइन बन गई थी।

दोस्तों, उस जमाने के चार्मिंग चॉकलेट हीरो जुबली कुमार राजेंद्र कुमार के साथ उनकी 1964 में आई थी फिल्म आई मिलन की बेला, और इसके बाद झुक गया आसमान।

0: दोस्तों, सायरा बानो जो 1966 तक एक एस्टैब्लिश्ड अदाकारा बन चुकी थी, उनके शादी के लिए किसी नवाब, शहंशाह, बादशाह सी आन बान वाला राजकुमार उनकी नजरों में रहा होगा, और वो ख्वाब जो उन्होंने देखा होगा सच हुआ जब उनकी शादी मुगल आजम के शहजादा सलीम यानी दिलीप कुमार अर्थात यूसुफ खान साहब के साथ तय हुई और 11 अक्टूबर 1966 में उनका निकाह हुआ।
1: अरे गोपी, क्यों ठाकुर के पैसों का नाश करते हो? हम जो हैं दोनों उत्तम कलाकार, भूल गए?
2: अरे मुझे तो ध्यान ही नहीं आया, उस दिन की तरह मिलजुल के जमा देंगे प्रोग्राम।
1: हाँ।
2: ताली भी पिट जाएगी और ठाकुर का पैसा भी बच जाएगा। चलो।

दौरान उन्होंने राजेंद्र कुमार अभिनीत फिल्म अमन में एक रोमांटिक रोल किया और उनके चाहने वालों को ये संदेश भी दिया कि शादी के बाद वो फिल्मों में काम करना बंद नहीं करेगी।

0: ये आज तुम्हें क्या हो गया है? तो अपने दिल को समझाओ ना।
1: दोस्तों, फिल्म पड़ोसन जो 1968 में आई थी, सायरा बानू के लिए उनके करियर की एक जबरदस्त मोड़ देने वाली फिल्म थी। इस फिल्म के सक्सेस ने उन्हें उस दौर की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में एक ऊंचा मुकाम हासिल किया। इस फिल्म के सक्सेस ने उन्हें दिलाया उस दौर की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में एक ऊंचा मुकाम।

1968 में उनकी एक फिल्म आई दीवाना, जिसमें उनके साथ दीवाना के मुख्य किरदार में थे राज कपूर। महेश कौल निर्देशित इस फिल्म का संगीत शंकर जयकिशन का था और बड़ा ही कर्णप्रिय और लोकप्रिय बन पड़ा था। दोस्तों, दिलीप कुमार के साथ उनकी 3 फिल्में आई हैं, सगीना, बैराग और गोपी। इसमें सिर्फ गोपी को ही कमर्शियल सक्सेस मिली थी।

हाँ दोस्तों, देवानंद के साथ उनकी एक फिल्म आई थी प्यार मोहब्बत। मनोज कुमार के साथ भी दो फिल्में उन्होंने की, बलिदान और पूरब और पश्चिम।

नवीन निश्चल के साथ भी दो हिट फिल्में उन्होंने दी, पहली थी पैसे की गुड़िया और दूसरी विक्टोरिया नंबर 203।

धर्मेंद्र के साथ उनकी कुल 6 फिल्में आई थी, आदमी और इंसान, रेशम की डोरी, पॉकेट मार, इंटरनेशनल क्रूक, चैताली और ज्वारभाटा।

सुनील दत्त के साथ एक और सफल फिल्म उनकी आई थी नहले पे दहला। और जैसा कि आप जानते हैं उनकी सुनील दत्त साहब के साथ पहली फिल्म थी पड़ोसन। दिलीप कुमार अभिनीत फिल्म दुनिया में जो आई थी 1984 में उन्होंने एक छोटा सा रोल किया था। दोस्तों उनकी आखिरी रिलीज फिल्म थी फैसला। इस फिल्म में उनके हीरो थे विनोद मेहरा। हालांकि फिल्म 1976 में पूरी हो चुकी थी पर यह फिल्म रिलीज हुई थी 1988 में। दोस्तों सायरा बानो एक सफल अभिनेत्री रही हैं और साथ ही साथ एक जिम्मेदार पत्नी का रोल भी वो बखूबी निभा रही हैं। तो आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था अपने जमाने की मशहूर और मारूफ अदाकारा सायरा बानो पर।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया, सजेशन आई के साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर कर। तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इसमें खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे भी भाग लेंगे। कार्यक्रम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता, द्विपक्षीय बैठक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल होंगे। बैठक के समापन पर ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। इसके बाद रक्षा मंत्री का युवा भारती क्रीड़ांगण में ईस्ट बंगाल FC और मोहन बागान सुपर ज्वाइंट के बीच टूरन कप का फाइनल मैच देखने का भी कार्यक्रम है। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इससे पहले कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। बयान में कहा गया कि भारत में ये क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, चाहे चैनल पेड या फ्री टू एयर। मंत्रालय का मानना है कि टेलीविजन उद्योग और डिजिटल मीडिया के बीच पर्याप्त प्रतिस्पर्धा है। टेलीविजन के लिए विज्ञापन अवधि सीमा 2006 में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के तहत लागू की गई थी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, सांस्कृतिक और सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉ सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ब्रिटेन के 70 से अधिक सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश को पत्र लिखकर पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। उन्होंने पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों के रक्तपात को रोकने और नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। इस क्षेत्र में पाकिस्तान की सेना की निर्मम कार्रवाई में सैकड़ों लोगों के मारे जाने और घायल होने के बीच ये अपील की गई है। इस क्षेत्र में सख्त नाकाबंदी और कर्फ्यू के कारण संचार व्यवस्थाएं पूरी तरह ठप पड़ी हुई है। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इसमें चीन के नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। ओडिशा तट से लगभग 440 समुद्री मील दूर ये दुर्घटना हुई। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को बचाया जा चुका है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने जयपुर में अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में हुई अनियमितताओं के लिए एडुक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रभावित परीक्षार्थियों के लिए पुनर्परीक्षा अगले महीने

की पहली तारीख को सुबह 10 बजे जयपुर में ही आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर आज देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। उन्होंने कहा कि भारत ने 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प लिया है और इस लक्ष्य को साकार करने में अंतरिक्ष क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। स्लोवाकिया में अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने 3 और पदक जीते। मानसी लाठर ने रजत पदक और तन्वी गुंदेश मगदुम और कोमल ने कांस्य पदक हासिल किया। भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मैच आज

0: मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मैच आज कोलंबो में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। भारत का पहला टेस्ट 165 रन से जीतकर श्रृंखला में 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और विदर्भ में दिनभर तेज वर्षा का अनुमान है। वहीं मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, माहे और पूर्वोत्तर भारत में भी अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: कि क्या एटीट्यूड है, कितना डेवलपमेंट आया है, तो मेरे लिए यही था कि कौन सा विषय तो सबसे सुंदर, मजबूत, टिकाऊ विषय था मेरे लिए हिंदी। कि इससे अच्छा विषय क्या हो सकता है, तो मैंने हिंदी विषय के लिए पार्ट लिया कि मैं हिंदी विषय पढ़ाऊंगा। और मुझे अभी तक शायद याद है कि मैं मुंशी प्रेमचंद की कोई कहानी को लेकर बात करने वाला था जो हमारे कक्षा में थी, तो वहां टीचर्स डे में टीचर बनने का जो एक पहला अनुभव रहा वो मुझे ऐसे लगा कि नहीं यार, या तो अच्छा लग रहा है। उसके बाद फिर नुक्कड़ नाटक जो हमारा एक अहम हिस्सा है थिएटर का, तो गुजरात में हम थोड़ा अवेयरनेस को लेकर नुक्कड़ नाटक करते थे
2: जी,
1: कुछ गरीबों को समझाने के लिए, मजदूरों के लिए।
2: तो ये किसी समूह से जुड़ गए थे आप?
1: हाँ, हमारा एक थिएटर ग्रुप था जिसका नाम ही था बुधन थिएटर ग्रुप। तो बुधन एक विशिष्ट व्यक्ति था, तो उस बुधन के किरदार से हम बुधन जैसे और किरदारों के लिए कोई एक मैसेज तैयार करते थे और लोगों तक पहुंचाते थे। तो नुक्कड़ नाटक से शुरुआत हुई और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय तक मेरी यानी कि ये जर्नी चली, कि जिसमें मैं सिर्फ सीख रहा था। क्योंकि अभिनय को जितना सीखो उतना कम है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आज भी हम बड़े बड़े एक्टर्स को जब मिलते हैं तो वो भी कुछ ना कुछ नया मनन चिंतन कर रहे होते हैं कि भाई आज आपको क्या जरूरत है अभिनय के बारे में इतना सोचने की, आप जो कुछ बोलोगे वो ही पत्थर की लकीर बन जाएगा। लेकिन बावजूद उसके हमने देखा कि कितना सिंसियर वर्क है ये, कि नजर हटी की दुर्घटना घटी। एक अभिनय यानी कि 2-2.25 घंटे की फिल्म में जब आदमी एक्टिंग करता है तो उसको कितनी बारीकाई से काम करना पड़ता है। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाने के बाद और बारीकाई से मैंने इस पर काम किया, ध्यान दिया, और फिर लगा कि अब जिंदगी अभिनय के सहारे गुजर सकती है। जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, क्योंकि अपने आप में 11-15 हजार लोगों का एप्लीकेशन वहां उस वक्त गया था,
2: हमें यही सोच रहा था कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाना इतना आसान नहीं रह गया है। तो आप किस बरस गए थे और कितना कड़ा मुकाबला था?
1: कड़ा मुकाबला तो बेशक था, और मैं 2003 में मैंने अप्लाई किया था, उससे पहले मैंने 2002 में अप्लाई किया और मैं फेल हुआ। तो ये भी एक जिंदगी का सबक है।
2: तो बहुत दुखी हुए होंगे?
1: बहुत दुखी हो गया था। मुझे ऐसे लगा था कि पता नहीं मैं जिंदगी में अभी कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मैं हमारे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निर्देशक डॉक्टर देवेंद्र राज अंकुर जी, जिन्होंने बहुत समझाया था कि ऐसा नहीं होता है, आप थिएटर करते रहो, जुड़ते रहो, जब अगर आप एनएसडी में नहीं हुआ सिलेक्शन तो इसका मतलब ये थोड़ी कि जिंदगी खत्म हो गई, आप कहीं और जगह भी। लेकिन बावजूद उसके मेरा मन नहीं मान रहा था। मैं बोला नहीं सर, मैं एक ऐसी जगह पर प्रशिक्षण लेना चाह रहा था कि जहां पर रात दिन आप सिर्फ अभिनय की बातें करते हैं, संगीत की बातें करते हैं, साहित्य की बातें करते हैं। तो फिर मन बनाया कि अगले साल दोबारा मेहनत करनी है, और अगले साल और ज्यादा मेहनत करके मैं वहां पहुंचा और मेरा फिर सिलेक्शन हो गया 2003 और 2006। ये 3 वर्ष मेरे यानी कि मिला जुला कर 1000 दिन की ट्रेनिंग मैंने वहां पर ली है।
2: क्या बात है। यहाँ रुकते हैं और एक गाना सुनते हैं। आपकी पसंद का कौन सा गाना यहाँ बजाया जाए?
1: मुझे लग रहा है कि मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है जो दोस्ताना फिल्म में अमिताभ बच्चन साहब और शत्रुघ्न सिन्हा साहब पर फिल्माया है,
2: बिल्कुल,
1: और वो है सलामत रहे दोस्ताना हमारा। तो उसमें ना एक जगह पर वो एक सैड नोट भी है कि जहां पर किशोर कुमार और रफी साहब का दोनों का एक सैड नोट भी है, तो मुझे वो भी बड़ा पसंद है। लेकिन अगर वो एक फुल फेज में अगर वो गाना सुना दिया जाए तो बड़ा मजा आ जाए।
2: ये गाना सुनते हैं।
1: जी जी।

0: आलोक जी, दोस्ताना फिल्म का ये गाना हमने सुना, और इससे पहले बातें ये हो रही थी कि आपने पहले स्ट्रीट थिएटर से शुरू किया अहमदाबाद में, और वहां से आपने ये तय किया कि भाई अब मुझे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जाना है। आपने ये भी जिक्र किया कि परिवार में जो है वो वकालत की परंपरा थी, पिताजी वकील थे।
1: जी जी जी जी।
0: तो ये कितना आसान था अभिनय की दुनिया में जाना एक वकील का बेटा होकर?
1: जी, पापा का तो यही था कि मैं वकील ही बनूं, क्योंकि होता है ना कि एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, वकील का बेटा वकील। लेकिन पापा ने ये भी एक उनमें गुण थे कि जब वो कॉलेज काल में पढ़ते थे तो उन्होंने भी काफी नाटक किए थे।
0: ओके।
1: तो उन्होंने वो नाटक किए थे, शेक्सपियर के प्ले किए थे उन्होंने, सेंट जेवियर्स कॉलेज में वो पढ़ते थे, जेवियर्स में अहमदाबाद में। तो उन्होंने फिर बादल सरकार का एक स्पार्टकस नाटक भी खेला था।
0: अरे बाप रे।
1: तो फिर जब उनसे मैं परमिशन मांगता था कि मैं मोहल्ले के नाटक में भाग लेने जा रहा हूँ गणपति के लिए या जन्माष्टमी के लिए, तो वो बेझिझक मुझे कहते थे जाओ बेटा, उससे जिंदगी समझ में आएगी तुमको कि थिएटर एक रंगमंच है। लेकिन जब उनको ये कहा गया कि अब मैं पूरी तरीके से ही नाटक में हूं, तो उन्होंने कहा कि 100% करो, लेकिन प्रशिक्षण के साथ करो। उन्होंने ये कहा कि हर चीज को सीखा जा सकता है। और यही बात फिर एनएसडी में मुझे अंकुर जी ने कही कि आप गौर कीजिए कि आपको कोई सलून में आप गए हुए हो और आपको पता चले कि जो आपके अभी बाल बनाने वाला है या कटिंग करने वाला है आपके बालों की, वो कहीं से सीखा हुआ नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आपका रिएक्शन क्या होगा? मैं तो उनको अपना सिर नहीं दूंगा। तो बोले कि आप कैसे सोच सकते हैं कि 2-3 घंटे का नाटक और आप बिना ट्रेनिंग के उतनी ही गुणवत्ता के साथ कर लोगे? तो पिताजी ने फिर मुझे परमिशन दी कि यू कैन गो। और फिर कॉलेज में मैंने कैंपस थिएटर किया। मेरे गुरु सौम्य जोशी जी जो फिल्मों में अभी लिखते हैं, उनकी फिल्म 102 नॉट आउट उन्होंने लिखी। उसके अलावा बहुत अच्छा थिएटर करते हैं वो गुजरात
0: लगातार, उनका तो बहुत अच्छा। हाँ, तो अच्छे प्लेज अभी भी चले।
1: हाँ, अभिजीत जोशी एंड सौम्य जोशी दोनों भाई है
0: जी।
1: तो इन दोनों भाइयों के साथ मैंने थिएटर की जर्नी शुरू की थी अहमदाबाद में। तो पिताजी को लग रहा था कि ये जैसे वकालत भी एक अपने आप में रिस्की फील्ड है कि आपका काम हुआ तो ठीक है, वरना कचहरी के चक्कर लगाते रहिए। तो पिताजी ने फिर हमको कहा कि आप कर सकते हो। तो फिर मैंने कॉलेज में दबा के थिएटर किया।
0: वाह वाह।
1: तीन वर्ष मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला।
0: क्या बात है।
1: INT एक संस्था है जिसको इंडियन नेशनल थिएटर बोलते हैं, जो मुंबई बेस्ड है, लेकिन वो गुजरात में कंपटीशन करती थी कॉलेज में। तो ये कह सकते हैं कि 20वीं सदी का आखिरी अवार्ड मुझे मिला है और 21वीं सदी का प्रथम अवार्ड भी मुझे मिला।
0: वाह वाह।
1: तो 99 में मैंने पहला प्ले किया था तुत्तु तु तु तु तारा, एक शराबी का कैरेक्टर था जो जॉनी लीवर साहब के एक जोक पर हमने नाटक इम्प्रोवाइज किया था कि अहमदाबाद में चारों तरफ एक शराबी घूम रहा है बस। तो उस किरदार को मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। फिर दूसरे दिन मैंने एक किसान की

0: बायोपिक की थी, फार्मर सुसाइड्स बहुत हो रहे थे गुजरात में, तो सौम्य जोशी साहब की कलम थोड़ी
1: मजबूत
0: वैसी,
1: है।
0: हाँ, इंकलाबी कलम रही
1: तो ये
0: शुरुआत
1: सब
0: से।
1: उन्होंने लिखे?
0: उन्होंने ही लिखे दोस्त चौक का
1: ओ
0: सही नगर वस्तु तू,
1: हो,
0: और बहुत कमाल के लिरिसिस्ट है वो, कमाल के म्यूजिक कंपोजर है, कमाल के एक्टर, कमाल के डायरेक्टर। और मेरा सौभाग्य है कि मैं तो, मेरा पूरा परिवार उनका ऋणी रहेगा कि मुझे ऐसे माहौल से उन्होंने निकाला जहाँ थोड़ा मुश्किल था ग्रो करना, तो वहां से उन्होंने मुझे एक ग्रोइंग एक्टर एक बनाया। तो ये आज इस मंच पर उनको याद कर रहा हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे गुरु को याद।
1: एनएसडी में पहुंचने के बाद आपका एक तरह से सपना पूरा हुआ, और आपने कहा कि 1000 दिन वहां तकरीबन आपने निकाले हैं। तो एनएसडी की कुछ यादें हैं, और वहां जो आपके बैचमेट्स थे, आपके सीनियर्स थे, उन सब के बारे में बताइए।
0: जी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एक फायदा यह है कि आप वहां जाते हो ना, तो आपके साथ प्रांगण में, उसके कैंपस में पूरा देश आपके साथ रहता है। तो सबसे पहला मजा तो वो आया कि जब सीनियर जूनियर के बीच में एक इंट्रो फेस होता था हमारा, जस्ट एक इंट्रो फेस होता था कि लोग पूछते थे आपके बारे में, तो बड़ा अच्छा था कि पहले ही हमारा इंटरेक्शन ऐसे होता था कि आप गुजराती हो और आपका एक बैचमेट आसामी है, आसाम से है, तो आपको आसामी भाषा सीखनी है और आपको उन्हें गुजराती सिखानी है।
1: अरे गजब।
0: तो ये कल्चरल एक्सचेंज के प्रोग्राम से जो एनर्जी बनती है, वो एनर्जी हमारी आज तक बनी हुई है कि अब हम लाइक कोई किरदार में एक्सेंट डालना हो तो हम बड़ी आसानी से बंगाली एक्सेंट ले लेते हैं, एमपी का एक्सेंट ले लेते हैं। और किस्से तो इतने हैं, जैसे कि हमारे सीनियर पंकज त्रिपाठी जी थे, तो
1: ओहो
0: वो थर्ड ईयर में थे और हम फर्स्ट ईयर में थे, तो जब बातचीत होती थी विद्यार्थियों के बीच में तो हमको वो कहते थे कि अच्छा तुम गुजरात से हो तो गुजरात का फोक थिएटर के बारे में तुम्हारा क्या समझ है? तो हमने कहा कि हाँ भवाई और ऐसा फोक थिएटर है, और उनका बिहार का एक अलग फोक थिएटर है, लौंडा नाच और इन सारी चीजों का। तो उस जगह से लाइक एक होता है ना कि आप टीचर से जितना सीखते हो उतना आपके सीनियर्स भी आपको इतने प्यार से सिखाते थे। इश्तियाक भाई थे तो उनका म्यूजिक पर कमांड था,
1: अरे हारमोनियम पे बैठ जाएं वो तो
0: हारमोनियम पर
1: फिर
0: बैठ जाएंगे तो वो चलता ही रहेगा उनका। तो हर तरह से, यानी कि सुबह से लेकर रात तक हमारा पहनना ओढ़ना खाना पीना सिर्फ एक्टिंग एक्टिंग एक्टिंग ही रहती थी। एक मजेदार किस्सा है वो ये है कि हम लोग गए थे के एन पणिकर जी के थिएटर में केरला, तो वहां पर हमको तैया तैयम नाम का एक नाटक करने को कहा गया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्म था। ये तैया तैयम एक रिचुअलिस्टिक थिएटर केरला
1: बिल्कुल
0: का होता है कि जिसकी यात्रा करीबन 9-10 दिन तक चलती है, यानी
1: जी
0: 12-15 दिन तक एक ही शो चल रहा है।
1: जी
0: रोज रात को आ रहे हैं लोग, शो चल रहा है 2-3 घंटे, फिर प्रसाद बट रहा है, फिर दूसरे दिन आ रहे हैं। तो हमको वहां पर, वहां की गवर्नमेंट के साथ टाई अप होकर और हम वहां पर गए, तो पणिकर जी की एक बात जो मुझे इतनी अच्छी लगी, जो सीखने को मिली, कि वो व्यक्ति ने हमको विलंबित विधा में, यानी कि विलंबित लय में, आप संस्कृत नाटक की जो एक लय होती है, जो फिर हमको पता चला कि मोहनलाल जी भी उनके वहां प्ले कर चुके थे, तो वो विलंबित लय में आप म्यूजिक के साथ बीट के साथ एक सेंटर स्टेज पर आते हो और वहां लार्जर देन लाइफ आपको एक्ट करना पड़ता है, तो दैट्स गुड। यानी एनएसडी की तो बात ही अलग है। तो
1: बिल्कुल।
0: हमारे
1: और
0: सीनियर कई रतन थियाम जी का थिएटर करने गए थे वहां
1: अच्छा
0: पर, वहां थांगटा सीख कर आए, हम
1: हाँ
0: केरला गए तो हम वहां कल्लरीपयट्टम सीख कर आए, तो आज भी
1: हाँ
0: वो कल्लरीपयट्टम की आर्ट मुझे आज भी याद है और आज भी मैं उसी से व्यायाम करता हूं अपना।
1: अरे वाह वाह वाह। तो एक तरह से ये होता है कि एक तो आप भारत से परिचित होते हैं, परंपराओं से, संस्कृति से परिचित होते हैं, और दूसरा नाट्य परंपराओं से अच्छी तरह से परिचित होकर एक ठोस एक्टर या एक ठोस कलाकार बना के एनएसडी आपको
0: भेजती है।
1: मैदान में भेजता है कि अब जाओ। आपके साथ भी ये हुआ कि तय करना था कि दिल्ली में रहना है कि मुंबई जाना है?
0: नहीं, मेरा तो पहले से ये था कि मुझे मुंबई ही जाना है, क्योंकि मैं अगर गुजरात में भी जाता तो गुजराती थिएटर अपने आप में एक कमर्शियल थिएटर है कि जहां से आदमी आज भी सिर्फ गुजराती थिएटर करने वाले, परेश रावल जी ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि आज अगर पूरे भारत देश में रोज थिएटर हो रहा हो तो वो सिर्फ गुजराती है,
1: वाह सही बात
0: रोज
1: है।
0: रोज। यानी कि आज आप बोरीवली का प्रबोधन ठाकरे या घाटकोपर का ऑडिटोरियम या भाईदास, अब लेकिन तेजपाल हॉल या वहां पर कहीं पे भी चले जाओ कि रोज आपको एक नया

0: नाटक देखने को मिल सकता है। तो मुझे तो पता था कि मुझे थिएटर करना है या सिनेमा करना है, तो मेरे लिए पृष्ठभूमि मुंबई से अच्छी कुछ नहीं हो सकती थी। तो दिल्ली में मेरा रुकने का प्लान नहीं था, यानी कि रंगमंडल से जुड़ने का और उसका मेरा कोई प्लान नहीं था। मेरा यही था कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से ट्रेनिंग ली है, अब जल्दी से इस कैंपस को मुझे छोड़ देना है। क्योंकि मैंने ऐसे कई हमारे सीनियर विद्यार्थियों को देखा कि फिर वो वहीं रहते थे, तो और हम रोज पूछते थे कि दादा आप कौन सी बैच के हो, तो कोई कह रहे थे कि हम 95 के बैच के हैं, 92 के बैच के हैं, और वहीं कैंपस में आकर और कैंपस के साथ ही जुड़ जाते हैं, तो आदमी आगे चल के ग्रो नहीं कर पाता। तो हमने सोचा कि हमें दिल्ली तो नहीं रहना, हम मुंबई चले चलेंगे। और मुंबई और अहमदाबाद के बीच में डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा नहीं था, तो कॉन्फिडेंस मेरा बरकरार रहा। और मुंबई में आते ही सरस्वती माता की कृपा से काम भी अच्छा मिलने लगा।
1: यहाँ एक गाना सुनते हैं, फिर मुंबई की बातें करेंगे।
0: जी जी जी।
1: तो बताइए कि आपकी पसंद का कौन सा गाना होगा यहाँ पर?
0: जी, धर्मवीर फिल्म का गाना मेरा बहुत फेवरेट है। हाँ। जो दोनों साथ अजूबे इस दुनिया में आज भी अपनी जोड़ी, और वहां पर भी एक सैड नोट आता है,
1: बिल्कुल
0: माता को लेकर कि ये जो सच्चा वादा है तो सब कुछ आधा आधा है, तो रानी माँ से मुझको भी मिल जाए ममता थोड़ी।
1: वाह वाह वाह।
0: तो ये एक अगर आप सुना दे तो
1: जरूर सुनते हैं ये गाना।
2: सात अजूबे इस दुनिया में आठ में अपनी जोड़ी, सात अजूबे इस दुनिया में आठ में अपनी जोड़ी, हर थोड़े से भाई टूटे ना।

0: धर्मवीर फिल्म का ये गाना हमने सुना और बातें मुंबई की हो रही हैं। दिल्ली की दुनिया बहुत अलग है और मुंबई की दुनिया संघर्षों की दुनिया है। जब आप मुंबई आए तो क्या कैफियत थी और क्या परिस्थितियां थी?
1: बहुत वैसा सवाल है कि सच में आज भी वो लम्हा याद करता हूँ तो थोड़ा पेट में एक घबराहट

0: सी हो जाती है कि मैं आया था तब मैं शादीशुदा था,
1: अच्छा
0: यानी कि मेरी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के फर्स्ट ईयर के बाद ही अरेंज मैरिज, मेरा घर में गुजरात में शादी हो गई थी।
1: अच्छा ऐसा।
0: हाँ,
1: और
0: और
1: आपने ये तय किया कि भाई पढ़ाई के दौरान शादी कर लेते
0: हाँ,
1: हैं।
0: क्योंकि हमारे वहाँ बहुत जल्दी हो ही जाती थी तो उससे कोई छुटकारा था नहीं, तो
1: तो एक काम करते हैं, संघर्ष के बारे में बाद में बात करते हैं, ये शादी वाली बात पूरी कर लेते हैं पहले।
0: जी फर्स्ट ईयर में मैं पढ़ रहा था, उससे पहले ही हमारी शादी की बात तय हो गई थी। मेरी वाइफ, जिसका नाम रुक्ष्मणी है, और वो बीकॉम कर रही थी, बैचलर ऑफ कॉमर्स, और मैं बीए कर रहा था, बैचलर ऑफ आर्ट्स। उसका थिएटर से कोई ताल्लुकात नहीं था, लेकिन अच्छे घर की संस्कारी लड़की थी तो घर वालों ने कहा कि शादी तो आज नहीं तो कल करनी है। तो हमने कहा कि नहीं, हमको तो अभी दिल्ली जाना है, पता नहीं क्या। बोले नहीं, तुम शादी दिल्ली में छुट्टियों में आकर शादी कर सकते हो और उसके बाद फिर आराम से तुम जिंदगी बसर कर सकते हो। तो मुझे भी ऐसे लगा कि चलो कोई बात नहीं, देखी जाएगी, जब इतने ही संघर्ष ले लिए है जिंदगी ने तो ये भी एक संघर्ष निपट जाएगा। तो फर्स्ट ईयर की छुट्टियों में जब मैं घर आया 2004 में, तब हमारी शादी हुई, और अभी हमारी शादी को 22 साल कंप्लीट हो गए। और जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मैं पास आउट होने के बाद जब बम्बई आए, तो ये हालत थी कि अब पत्नी को लेकर आपको बम्बई निकलना है। तो
1: और
0: वही,
1: ऑलरेडी वो आपके बिना इतने समय रह चुकी हैं।
0: हाँ, क्योंकि आप कितना ही अत्याचार कर लोगे कि अगर आपकी सहूलियत के हिसाब से अगर आप जिंदगी को चाहते हैं तो सब कुछ नहीं मिलता। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, चलो करते हैं संघर्ष जैसे सभी लोगों ने किया है। तो माहड़ा में हम लोग रहते थे, मलाड में, और शुरुआती दिनों में काम को लेकर कुछ भी क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हमने थिएटर किया रात दिन अच्छे से, प्रांगण था, हर तरह की सहूलियत हमको मिल जाती थी, रहने के लिए हॉस्टल, हवा गर्मी लग रही है तो कूलर लग गया, ठंडा पानी खराब हो गया तुरंत बन गया, अब यहाँ क्या करेंगे। तो यहाँ पहली बार पता चला कि लाइट बिल आता है 350 रुपया एक वन रूम किचन का, वो भी बहुत मायने रखता है एक हिसाब किताब में। तो ये संघर्ष शुरू किया, लेकिन वही मैंने कहा था ना कि पापा की एक बात मुझे वो हमेशा याद रही थी कि लाइफ में कुछ इस तरीके से करो कि आप अभिनय भी कर सको और घर भी तुम्हारा चले उस तरीके से। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की ट्रेनिंग क्या है, अपने आप में थिएटर में आपको इतना वो मांझ देते हैं कि आप किसी को थिएटर पढ़ा भी सकते हैं, यानी उतना लेवल का नहीं जैसे वहां के फैकल्टी पढ़ाते हैं, लेकिन मोटा मोटा खाका आप किसी को बता सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो जाती है। तो मैंने एनजीओ सेक्टर पे आकर काम करना शुरू किया, और मैं स्ट्रीट चिल्ड्रन और स्ट्रीट प्लेटफॉर्म बॉयज के साथ थिएटर एज अ थेरेपी काम करता था, आगरी पाड़ा, मलाड से आगरी पाड़ा जान। तो पहले ही दिन जब लोकल ट्रेन में मैं चढ़ा तो मैं रो पड़ा, क्योंकि वो एक तो पहले चढ़ने को नहीं मिल रहा था, और हमको यही सिखाया कि टाइम पे पहुंचना है कोई भी क्लास में, तो मुझे 150 रुपए पर क्लास मिलता था उसके लिए। तो मुझे लगा कि यार अगर दो क्लास मिल जाए तो रोज का 300 रुपया तो मुझे यहीं से मिल रहा है, यानी महीने का 9,000 रुपए, और घर का किराया ये सब मिला के 5-6 हजार में हो रहा था। तो वो संघर्ष के दिनों में मैंने एनजीओ सेक्टर में काम किया, और साथ साथ में ऑडिशन देना शुरू किया,
1: जी जी
0: और
1: जी
0: फिर यात्रा धीरे धीरे सहूलियत के साथ आगे बढ़ने लगी।
1: क्या बात है। तो लोकल ट्रेन में जाके और आप वहां सिखाते
0: जी
1: थे बच्चों
0: जी
1: को,
0: जी
1: वो यात्रा ज्यादा बड़ा संघर्ष थी या वो बच्चों को सिखाना ज्यादा बड़ा संघर्ष था?
0: बच्चों को सिखाना बहुत बड़ा संघर्ष था, क्योंकि यात्रा तो क्या है कि हमको लग रहा था कि ये भीड़ है, लेकिन मुंबई में आपको कहीं पे भी भीड़ दिखाई देगी, कोई ऐसी जगह होगी नहीं जहां भीड़ ना हो। लेकिन हाँ, बच्चों के साथ क्या होता था कि मैं सिखाते सिखाते बहुत सीखता भी रहता था, जैसे तरह तरह के लोग थे, और वही एनएसडी जैसा माहौल वहां पर भी था कि कोई उड़ीसा से एक बच्चा आया है। अब उसमें कुछ केसेस ऐसे होते थे कि कुछ बच्चे हीरो बनने आए थे,
1: लो अब ये समझाना भी मुश्किल है।
0: और उनको मैं ही समझा रहा हूं क्योंकि मैं भी हीरो बनने आया हूं। तो मेरे लिए तो ऐसा हो गया था कि ये सेल्फ लर्निंग हो रही थी। तो कुछ लोगों को वो एनजीओ ऐसी थी कि वो ऐसे बच्चों को रेस्क्यू करती थी जो बॉम्बे में बेचारे भटक रहे हैं, है ना, फिर कोई एडिक्शन में घुस गए हैं, तो उनके बच्चों की पहले बातचीत होती थी, तो पता चलता था कि एक बच्चा है जो सलमान खान के घर के बाहर ही सोता था,
1: ओ
0: वो सलमान खान को देखने ही इधर आया था, फिर उसको लगा कि मुझे सलमान खान से अच्छे से मिलना है तो एक्टर बन जाना पड़ेगा।
1: अरे बाप रे।
0: तो ऐसे मेंटालिटी के बच्चों के साथ मैंने वैसे ही काम किए कि फिर उनको जिंदगी का फलसफा समझ में आया, और फिर उनको हमने एक अच्छे ट्रैक पर लेकर गए। उसमें से जो टैलेंटेड लोग थे उनको भी

0: एक्टिंग का भी काम दिया गया, लेकिन वही होता है ना कि टारगेट किस तरीके से सेट करके आते हैं और कैसे लोग आ जाते हैं।
1: तो उनमें से कई लोगों को एक दिशा मिली।
0: दिशा मिली, जैसे कि कई लोगों ने पेपर बैग बनाने का काम शुरू किया, कई लोगों ने पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने का काम शुरू किया, तो वो भी अपने आप में बड़ी बात थी कि जो बेसहारा थे, सड़क पर सोते थे, फुटपाथ
1: अपना
0: पे
1: अपना
0: सोते,
1: काम कर
0: अपना
1: पाया।
0: अपना काम कर रहे हैं। आज वो शादीशुदा है, कुछ लोग आज भी फोन करते हैं, आलोक सर कैसे हैं आप, हमको याद है आपने हमको ये डायलॉग सिखाया था। तो मैंने डायलॉग उनको जिंदगी के लिए सिखाया था कि भाई कोई भी ऐसा एक टोंग ट्विस्टर ले लेते थे, एक ऊंचा ऊंट है पूंछ ऊंची ऊंट की, पूंछ से भी ऊंची क्या पीठ ऊंची ऊंट की। अब इसी को अलग अलग इमोशन में बोलो,
1: यस।
0: तो कोई गुस्से में बोलता था एक ऊंचा ऊंट है पूंछ ऊंची ऊंट की, पूंछ से भी ऊंची क्या पीठ
1: हाँ,
0: ऊंची ऊंट की।
1: अलग
0: तो
1: अलग
0: ये
1: तरह की
0: थिएटर
1: एक्टिंग।
0: एज अ थेरेपी, तो बच्चे हंसते थे और वही उनके साथ भी एक परिवार जैसा संबंध बन गया था। साथी नाम की ऑर्गेनाइजेशन थी, आज तो शायद वो नहीं है वहां, लेकिन वो बहुत अच्छा काम करती थी, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि साथी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे शुरुआत में काम दिया, जिससे मैं बॉम्बे में टिका रहा और फिर धीरे धीरे फिल्मों के ऑडिशन देना जो रोजमर्रा है, जो अमरीश पुरी साहब ने जो काम किया होगा वही हमने किया, कि लोगों से
1: जी, वो
0: मिलना,
1: एक प्रोसेस है कि वो
0: वो एक
1: करनी ही
0: प्रोसेस है,
1: पड़ती है।
0: वहां से कोई नहीं बच सकता।
1: तो शुरुआती तौर पर किस तरह के एक्सपीरियंसेस थे जब आप काम मांगने जाते थे, और क्योंकि तब शायद उस तरह से कास्टिंग डायरेक्टर्स नहीं आए थे
0: नहीं
1: और
0: थे,
1: आपको
0: नहीं थे,
1: अपने
0: नहीं थे।
1: फोटोज लेकर और पोर्टफोलियो लेकर जाना
0: जी
1: पड़ता
0: जी जी
1: था।
0: जी मुझे आज भी याद है कि चंदन टॉकीज के पास एक फोटोग्राफर था
1: जुहू में
0: और वो कुछ 100 रुपए की एक तस्वीर निकाल के देते थे,
1: जी
0: और मेरे पास एक ही डेनिम का शर्ट था, जींस का, जो मुझे एनएसडी से ही दिल्ली में ही खरीदा हुआ था, क्योंकि वहां वो सेल वगैरह लगते रहते हैं मंडी हाउस। तो वो पहनकर मैंने उसको कहा कि 5 फोटो भैया हमको कोई ऐसे निकाल दो जिससे लोग समझ जाए कि हम भी एक्टिंग करने के लिए आए। तो पांचों पांच एक ही कॉस्ट्यूम में तो हो नहीं सकती थी,
1: बिल्कुल।
0: तो मैंने कहा कि अंदर हमने एक गंजी पहनी हुई है, 2-3 फोटो शर्ट में निकाल लो, 2-3 गंजी में निकाल लो स्पोर्ट्स लुक के। तो वो 5 फोटोज से हमने हमारी यात्रा शुरू की, और मुझे याद है कि जय माँ संतोषी माँ की फिल्म रिमिक बन रही थी उस वक्त,
1: हाँ
0: दोबारा
1: हाँ
0: दोबारा, तो उसमें हमारे एनएसडी के कास्टिंग डायरेक्टर थे परेश पारेख जी,
1: हाँ
0: तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम आ गए, फोन किया उनको, 2-4 नंबर लेके निकला था, तो उन्होंने सीधा मुझे दादर बुलाया। अब दादर मेरे लिए अपने आप में वैसा था जैसे हम अहमदाबाद से कहीं,
1: बड़ौदा चले
0: हाँ हाँ बड़ौदा चले गए, वैसी यात्रा थी। तो दादर बुलाया और मैं चप्पल पहनकर चला गया,
1: हाँ
0: चप्पल भी वो थी बरसाती प्लास्टिक वाली,
1: हाँ
0: है ना, उसका एक अंगूठा निकला हुआ था। अब वो अंगूठे को उंगलियों में फंसाते हुए मैं सीढ़ियां चढ़ा कि भाई यहां तक हो जाए। फिर वहां गए तो उन्होंने कहा कि हाँ ऑडिशन दे दो, तो मैं बोला चलो यार नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आए हैं, ऑडिशन तो दे ही देंगे, लेकिन हमसे हो नहीं पाया ऑडिशन,
1: ओ
0: हमको समझ ही नहीं पाया कि वो क्या कह रहे थे, कैसे समझ रहे थे। फिर हमने सिर पकड़ लिया, मैं बोला कुछ तो गड़बड़ है अभी भी, तो ये भी समझना पड़ेगा कि ये प्रक्रिया क्या है। तो फिर वो परेश भाई ने बहुत प्यार से समझाया कि थोड़ा खुल के करो, थोड़ा तुम टेंशन में हो, सुखद अवस्था में रहो। मैं बोला सर सुखद अवस्था में कैसे रहूं, 3-4 दिन के बाद फिर रेंट देना है ये भी होता है। लेकिन इस तरीके से कारवा चल पड़ा, और पहली फिल्म मैंने की थी तशन, ये भी बड़ी बात है कि यश चोपड़ा की फिल्म में मेरा कास्टिंग हुआ,
1: और ये पहली फिल्म बनी,
0: पहली फिल्म बनी मेरी।
1: इसमें कितना संघर्ष करना पड़ा।
0: इसका ऑडिशन ग्रुप में हुआ कि भाई सबको चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी फिल्म थी, बहुत बड़ी फिल्म थी,
1: बहुत बड़ी
0: अनिल
1: फिल्म,
0: कपूर,
1: मल्टी स्टारर।
0: हाँ अनिल कपूर, करीना कपूर, सैफ अली खान, अक्षय कुमार, और अक्षय कुमार का एक अलग लेवल, अनिल कपूर उसमें पहली बार नेगेटिव रोल कर रहे थे विलन, और अक्षय कुमार का नाम उसमें बच्चन पांडे था, और डायरेक्टर थे विक्टर साहब, विजय विजय कृष्ण आचार्य, बहुत अच्छे डायरेक्टर। तो उन्होंने कहा कि यार वैसे तो रामलीला का सीन है और कोई हनुमान बना हुआ है, कोई भाला पकड़, तो ये जो वो भाला पकड़ने वाली कहावतें जो सुनी थी एनएसडी में कि यार क्या करोगे भाला पकड़ के खड़े रहोगे पीछे, तो मैं बोला ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों शुरुआत हो रही है। तो फिर उन्होंने कहा कि यार इसमें से कोई अच्छी लाइन बोलने वाला एक एक्टर चाहिए, तो मैंने हाथ ऊपर कर दिया, मैं बोला सर मैं बोल लूंगा, क्योंकि ये तो करना ही पड़ेगा आपको कि बताओ तो सही आपको आता
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल।
0: तो फिर उन्होंने मुझे रामलीला का कोई कैरेक्टर नहीं दिया, बल्कि रामलीला देखने के लिए जो लोग बैठे थे उसमें फर्स्ट रो में मैं बैठा हूं।
1: ओके।
0: अब

0: बड़ी बात क्या है, बहुत मजेदार किस्सा है कि अक्षय जी को जो डायलॉग बोलना था वो उन्होंने मेरी छाती पे लिखा हुआ था।
1: ओ
0: तो प्रिंट आउट उन्होंने मेरी छाती पे लगा दिया। मुझे लगा ये मेरे डायलॉग तो नहीं है, मैं कैसे बोलूंगा ऐसे देखकर। तो फिर का पता चला कि वो अक्षय जी के डायलॉग है, वो आपको भी देखेंगे और प्रिंट आउट को भी देखेंगे। और मेरा डायलॉग था उनके साथ, बढ़िया सा डायलॉग जो उसके बाद भी बहुत हिट हुआ वो डायलॉग, कि वो आते हैं और लड़की को बोलते हैं कि अरे पार्वती तू यहाँ क्या कर रही है। लड़की का नाम पार्वती था लेकिन रामलीला चल रही थी तो वो सीता का रोल कर रही थी। तो फिर मैंने कहा कि अरे भैया वो सीता है सीता, पार्वतिया तो शिव पुराण का हीरोइन है, कहा कुछ भी बोलते ऐसा कुछ। हमने हंसा तो वहां जो एक्चुअल ऑडियंस थी ना वो भी हंसने लगी कि हमने इस तरीके से कुछ डायलॉग बोला। एंड अक्षय जी के साथ बड़ा अच्छा अनुभव रहा। वो मेरी पहली फिल्म थी। फिर वो रिलीज हुई तो देखने जाना है पहली बार कि अपने आप को
1: पर्दे पर देखना है,
0: 70mm के पर्दे पर कैमरा ये वो। तो फिल्म चली नहीं लेकिन मजा आया कि हमने अपने आप को देखा कि यार एडिटिंग में कहीं वो सीन कटा नहीं, मैं पूरा दिखा। और मराठा मंदिर में मैंने देखी, मराठा मंदिर अपने आप में एक
1: ऐतिहासिक थिएटर
0: है। तो दिस इज द थिंग।
1: वाह। और इसके बाद फिर कारवां आगे बढ़ा।
0: हाँ फिर तो वही है कि एक काम से दूसरा काम, लेकिन हाँ संघर्ष तो बीच बीच में चल ही रहा था। ऐसा नहीं है कि एक फिल्म कर ली तो दूसरी कल ही कल मिल जाएगी। आज तक भी हमको फिल्में ढूंढने के लिए थोड़ा वो संघर्ष तो करना ही पड़ता है कि कौन सी जगह पर आपकी जरूरत है, इम्पोर्टेंट ये है। तो यही कह रहे थे ना कि यार तुमको कैसे यश चोपड़ा के वहां से काम मिल गया, क्योंकि उनको लग रहा था कि तुम तो राम गोपाल वर्मा के एक्टर हो।
1: अच्छा।
0: एक ये भी होता था ना कि रामू जी के फिल्मों में ज्यादातर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की एक वो पैटर्न बनी हुई थी। राजपाल यादव जी हो गए और भी एक्टर्स जैसे विजय राज जी हमारे एनएसडी रिपेट्री के। तो ये भी एक बड़ी बात थी कि इतनी बड़ी कमर्शियल फिल्म में मुझे एक छोटा सा किरदार मिला। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई टशन। फिर आगे तो धीरे धीरे काइपियो छे में मैंने सुशांत जी के साथ काम किया। उसमें गट्टू जी डायरेक्टर थे, अभिषेक कपूर, वो बहुत अच्छा उसमें किरदार, धीरे धीरे बढ़ता गया किरदार। और अब ऐसा है कि हमको अच्छे किरदार मिलने लग गए हैं।
1: बिल्कुल। बजरंगी भाईजान में भी आपने काम किया।
0: जी जी जी, बजरंगी भाईजान का मेरा सलमान जी के साथ काफी अच्छा वो सीन था, बस में।
1: हाँ, बस वाला सीन। जी, बिल्कुल। उसके बारे में बताइए कैसा रहा हो?
0: बढ़िया। उस वक्त दुनिया को बस यही लगता था कि भाई सलमान जी पता नहीं किस तरीके से बात करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बहुत सहज तरीके से हमसे मिले थे। और उसमें भी यही था कि तीन चार लोग बस में बैठे थे, अब बोले कि डायलॉग बोलने वाला है, फिर हमने हाथ ऊपर कर दिया था। बोला हम बोल लेंगे सर। और वहां पर भी हमारी सीट के वहां सलमान जी के डायलॉग लिखे हुए हैं।
1: अच्छा, ऐसा भी था?
0: हाँ, डायलॉग तो उनके लिखे हुए ही रहते थे। और मैं तो तुगलक के भी याद करके चला गया था।
1: अरे बाप रे।
0: कि जहां कम पड़ जाए तो हम बोल देंगे। तो वो ऐसा सीन था कि वो मुन्नी से पूछता है कि तुम कौन से जगह से हो, वो बोल तो सकती नहीं थी। तो बोले कि मैं शहरों के नाम बोल रहा हूँ,
1: तुम हाँ करना।
0: हाथ करना। तो वो शहरों के सारे नाम मेरे सीट पे लिखे थे। बड़ोड़ा, बीकानेर, जैसलमेर, ये वो। और उसमें एक शहर मेरा क्यू था।
1: हाँ।
0: वो मुझे पकड़ना था। तो वो बड़ा मजेदार सीन है वो। कभी आप आज भी वो फिल्म सेटमैक्स पे चलती है तो उस सीन की। और इतना अच्छा भाईचारा हमारा बना कि फिर मैंने जब दूसरी बार ट्यूबलाइट फिल्म में काम किया, सेम डायरेक्टर, सेम स्टार, तो वो मुझे पहचान गए सलमान भाई। अरे बोले तुम तो पहले भी काम कर चुके हो ना मेरे साथ में। बोला हाँ सर, मैंने बजरंगी भाई। हाँ हाँ, कमाल का यार, तुम्हारा वो हंसी बहुत अच्छा है। तो उसमें मैंने हंसने का एक सिग्नेचर बनाया
1: जी,
0: था।
1: जी, जी।
0: तो ये है। और उस वक्त वो तीन सेट पर काम कर रहे थे।
1: ओके।
0: प्रेम रतन धन पायो, बिग बॉस और बजरंगी भाईजान।
1: ओके।
0: और एनडी देसाई स्टूडियो था क्योंकि सब नजदीक है, क्योंकि बिग बॉस लोनावाला में था, प्रेम रतन धन पायो वहीं था,
1: और ये करजत
0: में। हाँ, करजत में था। तो उनके साथ खाना वाना भी हुआ। तो बहुत अच्छे से वो खिलाते हैं अपने कोवा एक्टर को, खुद बहुत कम खाते हैं। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कबीर खान सर बहुत प्यार से समझाते हैं एक एक किरदार को। तो हंसी ठल्ले हुए वहां पर भी कुछ उनकी बातों के। जब शूट नहीं कर रहे होते हैं तब भी आप बात करते हैं ना को एक्टर से, तो सलमान, हाँ, तो सलमान भाई से बोले अच्छा है, हाँ, गुड गुड, ऐसा। तो अब इतना बड़ा एक्टर हमारे लिए तो बहुत ही बड़ा है सलमान खान। तो बचपन से जिनको मैंने प्यार किया फिल्म में देखा, हमने जिनको हमने बागी फिल्म में देखा, वो किरदार आपके सामने बैठा है, आपके साथ एक ही फिल्म में,

0: तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत
1: मायने रखता
0: मायने
1: है
0: रखता
1: जी। एक तो ये कि अभी एक गाने की जगह बनाई जाए और उसके बाद आगे की बात करेंगे,
0: है।
1: तो
0: मैं
1: कौन सा
0: चाहता
1: गाना
0: हूँ
1: होगा?
0: बजरंगी भाईजान फिल्म का ही एक गाना हो जाए, भर दो
1: बिल्कुल,
0: झोली मेरी,
1: क्या
0: जो
1: बात है,
0: अदनान सामी
1: सुनते
0: ने।
1: हैं अदनान समी की
0: जी
1: आवाज
0: जी
1: से।
0: जी जी जी

0: भाई बजरंगी भाईजान की हमने बातें की और फिल्मों में फिर उसके बाद आपका काम आगे जो है वो बढ़ता चला गया और एक तरह से मुंबई में एक जगह बनती चली गई।
1: जी
0: टेलीविजन भी किया और थिएटर की दुनिया में भी आप दोबारा सक्रिय हुए मुंबई में।
1: हाँ
0: ये बातें
1: तो थिएटर तो मैंने कहा ना कि मुझे गुजराती थिएटर से बहुत होप थी शुरुआत।

0: से, और वो आज भी है मुझे, क्योंकि एकमात्र ऐसा थिएटर है जो आपको रोज एक शो दे रहा है।
1: जी
0: जैसे ही आप ग्रीन रूम में पहुंचते हो, अपना कॉस्ट्यूम होते हैं ना, मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए, कुली फिल्म का बच्चन साहब का डायलॉग, तो
1: जी
0: वैसा वहाँ वो ऑर्गेनाइजेशन है उनका, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने थिएटर किया था काफी, सिनेमा करता रहा। टीवी शो के लिए मैंने ऐसे अपने आप को बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया मैंने टीवी शो के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जब थिएटर मेरे पास है, जो गुजराती थिएटर है, जो पैसों वाला थिएटर है, तो क्यों फिर मैं अपने आप को दो तीन जगहों पर बांटता चला जाऊं। तो फिर मैंने सिनेमा और थिएटर, थिएटर में मैं गुजराती थिएटर, हिंदी थिएटर, अभी लेटेस्ट अभी भी मैं लाइलाज प्ले कर रहा हूँ,
1: पंकज त्रिपाठी जी
0: पंकज
1: वाला।
0: त्रिपाठी जी जिसके प्रोड्यूसर है, उनकी वाइफ मृदुला त्रिपाठी, और फैज मोहम्मद ने उसको, वो भी एनएसडी के मेरे जूनियर है, और बड़ा इंटरेस्टिंग म्यूजिकल प्ले है, एक बैंड वालों की कहानी है।
1: हाँ
0: कितनी गजब कहानी है कि बैंड वाले जो होते हैं वो कई बार अपनी ही गर्लफ्रेंड की शादी में बैंड बजाने चले जाते
1: अरे बाप रे।
0: दिस इज अ वन लाइन।
1: जी,
0: तो
1: क्या
0: ये
1: बात है।
0: ऐसी ट्रेजेडी है, तो बहुत मजा आता है उनके साथ काम करके, और इतने सहज तरीके से वो आज भी लोगों से हमसे
1: और
0: मिलते
1: बहुत
0: हैं।
1: पुराना आपका तो नाता रहा है, आपके
0: हाँ,
1: सीनियर रहे
0: मतलब
1: हैं।
0: फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर तो समझ लो ना कि वो एक बहुत है आपके, आप तीशु भाई, इरफान भाई, इनका भी ऐसा ही फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर वाला जो रिलेशन होता है,
1: हाँ
0: ये बहुत मायने रखता है। तो वही मेरे साथ भी हुआ।
1: जी, तो ये जो इन दिनों थिएटर की जो परंपरा है वो फिर से समृद्ध है, और फिल्मों के कलाकार भी अब थिएटर की दुनिया का रुख करते हैं, और दर्शक भी प्लेस को अलग अलग शहरों में इंतजार करते हैं, देखना चाहते हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है, और ये कितनी अच्छी परंपरा है कि थिएटर समृद्ध हो रहा है।
0: बिल्कुल, मुझे तो जहां तक लगता है कि आज से 3,000 साल पहले भी थिएटर चल रहा था,
1: जी
0: बिफोर बीसी में, हम बिफोर क्राइस्ट, हम ग्रीक थिएटर की हिस्ट्री वगैरह देखते हैं, तो वहां से लेकर आज तक कभी थिएटर वीक नहीं हुआ है। हम ही कमजोर पड़ गए हैं, करने वाले ही कमजोर पड़े हैं, थिएटर कभी वीक नहीं हुआ है। ये नसीर साहब का भी एक स्टेटमेंट मैंने सुना था, नसीर सर का, कि उन्होंने एक जगह कहा था कि जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन कर रहा था तब लोग बोल रहे थे कि थिएटर ऑक्सीजन पर है, आज तक भी वो ऑक्सीजन पर, यानी आज तक नहीं मरा,
1: हाँ,
0: तो कैसे
1: लेकिन हमेशा
0: ऑक्सीजन।
1: ये कहा जाता है ये थिएटर ऑक्सीजन पर है।
0: हाँ, हमेशा कहा जाता है, तो ये एक मिथ जो बना हुआ था वो मुझे लग रहा है कि अब धीरे धीरे टूट रहा है, और अब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। जैसे कि पहले मुंबई में हम सिर्फ पृथ्वी थिएटर में ही एक डिपेंडेंट थे, लेकिन अब नीता मुकेश अंबानी के वहां पर भी कल्चरल सेंटर में ऑडिटोरियम बन गए, बहुत इंटीमेट स्पेसेस सब डेवलप हुई है, कि आप चार किरदारों को लेकर एक परसाई जी की कहानी उठा लो और उसको भी नाटक का रूप दे दो। और इसमें सबसे बड़ा रोल है, अगर मैं कहूँ ना कि थिएटर घर घर तक पहुंचाने में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तो है ही, अब्राहम अलकाज़ी साहब तो है ही, लेकिन उनके जितने भी शिष्य हैं, वो उनमें अंकुर जी है, उनमें रामगोपाल बजाज है, रतन थियाम है, बंसी कौल है, इन सब लोगों ने थिएटर की बहुत बड़ी साधना की, और उस वजह से आज वो थिएटर हमको हमेशा अपनी तरफ चुंबक की आकर्षण की तरह वो हमें खींचता है। जैसे कहानियों का रंगमंच, इतनी प्यारी विधा है ये,
1: अंकुर जी ने जो
0: अंकुर
1: बात
0: जी की
1: कही।
0: विधा है ये,
1: जी
0: अंकुर जी, महेश आनंद जी, लेकिन अंकुर जी का ये कॉन्सेप्ट इतना अच्छा लगता था हमको। हमने प्रेमचंद जी की कहानियां भी की थी, जिनेंद्र जी की भी कहानियां की थी, और उनका एक ही था कि जीरो कॉस्ट बजट है इसमें, आपके पास कहानी है और मंच है,
1: बस
0: लाइट अगर हुई तो ठीक है, बोले बोले अगर एक आध हेलोजन जल गया तो ठीक है आलोक, बाकी और कुछ नहीं है। और एक कहानी के हमको तीन तीन ड्राफ्ट बनाने को कहते थे, कि पहली कहानी में मैं बड़े भाई साहब बनाऊं, तो दूसरे ड्राफ्ट में मैं छोटा भाई बनूंगा। हाँ, अब वो छोटा भाई क्या कर रहा है, उसकी एक्टिविटी क्या है, और कहानी का एक भी शब्द आगे पीछे नहीं होना चाहिए,
1: सेम का सेम
0: सेम
1: होगा।
0: टू सेम। तो फर्स्ट टाइम मैंने फील किया कि व्हाट इज द नैरेटिव एक्टिंग एंड व्हाट इज द सब्जेक्टिव एक्टिंग, तो नैरेशन के साथ। तो आज थिएटर अपने आप में एक अच्छा रोल अदा कर रहा है समाज में, और बहुत अच्छी बात है कि बड़े बड़े स्टार फिल्मों में काम करने के बाद भी थिएटर को एज अ अपना वो समझकर कर रहे हैं, कि हमें और कुछ नया सीखने को मिल जाए थिएटर में, और
1: बिल्कुल,
0: व्हाट इज द थिएटर का कंट्रीब्यूशन फिर सिनेमा में ले जाते हैं,
1: हाँ, तो दोनों तरफ की धाराएं
0: दोनों
1: चल रही
0: तरफ
1: हैं।
0: की धारा।
1: आप तो कई भाषाएं जानते हैं, और जाहिर है कि अब फिर ये थिएटर में भी ये काम आते हैं। आपने यहां मुंबई में गुजराती थिएटर भी किया।
0: मैंने गुजराती थिएटर किया, मैंने एक हमारी खुद की जो मदर टंग है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, भांतू बोली बोलते हैं उसको,
1: अच्छा
0: हम लोग ट्राइबल हैं एक्चुअली।
1: जी,

0: वो दो
1: जी,
0: ना
1: तो ये
0: घुमक्कड़।
1: मराठी का एक प्रकार है, ये
0: नहीं
1: गुजराती का एक प्रकार है।
0: ये अपने आप में है ना, ये राष्ट्रीय स्तर पर बोली जाती भाषा है,
1: अच्छा।
0: बट ये लोग बंजार यानी घुमक्कड़ रहे, तो कोई गुजरात में स्थायी हो गया, कोई महाराष्ट्र में हो गया, तो वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं मराठी में और गुजराती में, लेकिन जब आपस में मिलेंगे तो उनकी एक विशिष्ट बोली है।
1: अरे बाबा
0: अगर आप कहें तो मैं उस बोली में ना, मेरी
1: जी,
0: एक फिल्म भी आई है दिल्ली क्राइम सीजन 2,
1: हाँ।
0: वो किरदार मेरा उसी कम्युनिटी के था।
1: तो
0: तो
1: आपने वो किरदार वैसा बनाया
0: नहीं
1: या
0: नहीं मैंने राइटर के साथ डिस्कस किया था, भावेश मांडलिया
1: जी
0: राइटर
1: जी
0: जिन्होंने
1: जी
0: ओ माई गॉड
1: जी
0: लिखी, तो उनके साथ डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा कि ये बैक स्टोरी आपकी बहुत अच्छी जा रही है, यानी मैंने अपनी बैक स्टोरी को उस किरदार के अंदर रखा। तो वो भांतु बोली में बात करते हैं, जैसे मुझे बोलना है कि कहाँ जा रहे हो और शाम तक वापस आ जाओगे ना, अरे कितोड़ जा रहा था सांझा सुधी उल्टा ही जांगड़ा ना, एकदम
1: ओहो, इसमें
0: डिफरेंट है।
1: कुछ गुजराती के आ रहे हैं।
0: गुजराती के थोड़े मराठी, तो ये क्या घुमक्कड़ लोगों की ने कभी महाराष्ट्र से कुछ ले लिया, कोई गुजरात से
1: हाँ,
0: कुछ
1: तो
0: ले
1: एक
0: लिया,
1: मिक्स है।
0: कुछ राजस्थान से कुछ ले लिया। तो ये भाषा मुझे आती है, गुजराती भाषा मुझे आती है, हिंदी मुझे आती है, उर्दू जबान भी यानी कि नुक्ते उक्ते
1: हाँ
0: लग जाते हैं ठीक ठाक। तो ये है, अंग्रेजी व्यवहारिक रूप से जितनी बोल सकता है उतनी मैं बोल लेता हूँ।
1: जी,
0: तो भाषा मुझे लग रहा है कि एक अभिनेता का सबसे बड़ा वो होता है एलिमेंट, कि जिसको वो जितना मांझ ले उतना अच्छा है।
1: बहुत सारे बच्चे हैं जो अलग अलग शहरों में हैं और हमारी इस बातचीत को सुन रहे हैं, उनको लगता है कि एनएसडी जाएं और मुंबई आ जाएं, बस लाइफ सेट है।
0: नहीं,
1: तो
0: बिल्कुल नहीं।
1: उनको अपनी तरफ से कुछ कहिए
0: मैं बस उनको इतना ही कहूंगा कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आपको विधा सिखाता है
1: जी।
0: और प्रोफेशनल विधा सिखाता है, व्यावसायिक रंगमंच की तालीम देता है, लेकिन वो व्यवसायी एक बहुत बड़ा व्यवसायी है,
1: हाँ
0: तो उस व्यवसाय में आपको आपके ग्राहक खुद ही ढूंढने हैं, है
1: हाँ
0: ना।
1: और मुंबई शहर आपको पीसता
0: हाँ,
1: है।
0: पीसता है, जलना पड़ता है, और ये भी नहीं है कि इसमें नकारात्मकता ही भरी पड़ी है।
1: जी
0: कहीं पर आपका कुछ अच्छे काम आप करते हो तो आपको उसका अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। तो मैंने ऐसे कई लोगों को देखा कि जो आते हैं और एडिक्शन में भी डूब जाते हैं, है ना, कई और तरह की चीजों में भटक जाते हैं। तो उन चीजों में अगर ना भटके और अगर आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, चाहे फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट से किया हो, फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII से किया हो, या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से किया हो, BNA से किया हो, तो प्रशिक्षण का जो एक बल लेकर अगर आप काम करते हो तो सफलता आपको मिलेगी। सफलता को आप ही कैटेगराइज करते हो कि किसको है, जैसे अभी अक्षय खन्ना जी को हम देख रहे हैं धुरंधर फिल्म में,
1: बिल्कुल।
0: तो उन्होंने यही कहा कि सफलता को आप कैसे मापते हो, है ना, कि मुझे आप सलमान खान और शाहरुख खान के साथ कंपेयर क्यों कर रहे हो, मैं
1: बिल्कुल
0: अपने लेवल पर सफल हूं। तो मुझे लग रहा है कि ये एक अभिनेता के लिए बहुत बड़ी बात
1: क्या बात है। चलते चलते एक गाने की फरमाइश है
0: है। शैलेंद्र जी मेरे बहुत फेवरेट रहे,
1: जी।
0: और रेणु जी
1: वाह
0: की
1: वाह,
0: कहानी पर उन्होंने जो
1: तीसरी
0: फिल्म
1: कसम बनाई,
0: तीसरी कसम, उसका अगर आप एक सुना दे, दुनिया बनाने वाले क्या
1: वाह वाह
0: तेरे मन में
1: वाह, जरूर
0: सिकंदर
1: ये गाना सुनाते हैं
0: जी।
1: आपको।

0: आलोक जी, बहुत अच्छा लगा आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और आपने इतनी सारी बातें हमारे साथ शेयर की। बहुत बहुत धन्यवाद जी, अपना जी, समय देने के लिए।
1: जी जी जी धन्यवाद, और बहुत ही शुभकामनाएं हैं विविध भारती को, आप पूरी टीम को, जितने भी लोग ये काम कर रहे हैं। और क्या बताऊं मैं आपको कि रेडियो सच में हमारी जिंदगी का एक संगीत है, और अगर इंसान को आप किसी एक अरण्य में डाल दे, किसी घोर जंगल में डाल दे जहां सिर्फ निराशा निराशा ही हो गुफाओं में, और वहां एक रेडियो चल रहा हो ना, तो वो भी कहते हैं ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि एक दिया सारे अंधेरे को भगा देता है। तो रेडियो घर में ऐसा है जो हमारी नकारात्मक शक्ति को बाहर फेंकता है और एक रचनात्मक ऊर्जा को हमारे घर में लाता है। तो रेडियो यंत्र घर में रहना वो ऐसा ही है जैसे एक परिवार का सदस्य आपके साथ रह रहा है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया,
1: धन्यवाद।
2: बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे अभिनेता आलोक गागड़ेकर से यूनुस खान की बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें, आज के इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: प्यारे।
1: आमंत्रित कलाकार हैं
2: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
3: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
1: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
2: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
1: सुबह और शाम
2: 6:45 पर
1: सिर्फ विविध भारती पर।
4: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से कुछ यादगार किरदार।
5: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था जो कि पॉजिटिव था और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर हैं

0: उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
1: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: जय एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: विविधा के सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर
1: और मनीषा जैन का नमस्कार। श्रोताओ, एक गीत हमारे आसपास गूंजने लगता है जो कहता है, आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ।
0: आवारगी का ये अंदाज लेकर के अपनी कलम के सहारे जिन्होंने इस फिल्मी दुनिया में अपनी जगह बनाई, वो अमर नाम है कवि शैलेंद्र का।
1: जी हाँ, शैलेंद्र साहब की ये जन्मतिथि 30 अगस्त बहुत सी स्मृतियों के द्वार खोल देती है। शैलेंद्र जी के गीत वो गीत हैं श्रोताओं, जो हमारे आसपास की जिंदगी को बयान करते हैं, जिन्होंने जीवन का जो गहरा दर्शन है उसे बहुत सरल शब्दों में हम तक पहुंचाया है। बल्कि जयंत जी, मैं तो ये कहूंगी कि उनके लिखे जो गीत हैं उसकी कई बार तो पंक्तियां जैसे हमारे लिए रोजमर्रा में लोकोक्तियां या मुहावरे तक बन चुके हैं।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने मनीषा जी। मानवीय संबंधों में जो क्लिष्टता होती है, कई बार जो जज्बाती मुश्किलें देखने को मिलती है और उनकी वजह से जितने अवसाद इंसानों को झेलने पड़ते हैं, उन सभी को बड़ी सहजता से अपने कलम के सहारे उन्होंने अपनी रचनाओं में उंडेला था और हम सबके दिल को छू लिया था।
1: बिल्कुल, और शैलेंद्र जी की स्मृति को हम आज नमन करते हैं, जिन्होंने लिखा था, किसी के मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार।
0: जीना इसी का नाम है।

0: जयंत जी
1: जी,
0: जिस फलसफे की बात हमने की वो इस गीत में जैसे उभर कर आ रहा था, और कोई श्रोता, कोई दर्शक, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो इस गीत से प्रभावित हुए बिना रहा हो। ऐसी ही बहुत सी यादें हैं शैलेंद्र साहब की, लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है कि जब इस प्रोग्राम को हम बना रहे हैं, हमें हमारी खुशकिस्मती से मिले दिनेश शैलेंद्र जी, जो शैलेंद्र जी के छोटे बेटे हैं, और उनसे हमने टेलीफोन पर बात की और उन्होंने हमसे यादें

चर्चा की कि किस तरह से पिता शैलेंद्र उन्हें लगते थे, कैसे उन्होंने देखा, और एक गीतकार फिल्मकार शैलेंद्र दिनेश जी की नजरों में कैसे थे। आइए सुने उनकी इन स्मृतियों को। हमने उनसे टेलीफोन पर बात की। नमस्कार दिनेश।

0: नमस्कार दिनेश जी, मैं विविध भारती की ओर से आपका स्वागत करती हूँ और आपके पिता महान गीतकार श्री शैलेंद्र जी की स्मृतियों को नमन करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है दिनेश जी आपका।
1: नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद।
0: दिनेश जी, एक पुत्र से पूछूंगी कि आपने अपने पिता को किस तरह से देखा?
1: मनीषा जी, सच पूछिए तो बाबा जिस दिन गुजरे
0: जी,
1: उसी दिन हमें पता चला कि शायद वो कुछ बड़ा काम करते होंगे कि इतने सारे लोग, इतनी भीड़, अगले दिन पेपर में उनकी फोटो और उनका न्यूज, ये सब हमारे को चौंका सा दिया था इन सब चीजों ने
0: जी।
1: क्योंकि हम लोगों के घर पे माहौल जो था वो ऐसा था कि बहुत ही नॉर्मल, तो हमें तो ऐसा लगता था कि शायद शंकर जयकिशन, राज कपूर, सलील चौधरी, एसडी बर्मन, ये सभी के घर जाते आते रहते होंगे और कोई खास बात नहीं है। क्योंकि बाबा का भी रहन सहन और घर पे जो हम लोगों के साथ उनका वो था बिहेवियर, वो एकदम ही नॉर्मल था। हम सबसे छोटे थे तो जब भी घर आते थे तो हमें कोई वो फिक्र नहीं होती थी कि वो थके होंगे या काम करके आए या दिमागी तौर पे आदमी थक जाता।
0: जी जी जी।
1: लेकिन हम बोलते थे घोड़ा बनो तो वो घोड़ा बन जाते थे, हमारे साथ म्यूजिक के गेम्स खेलते थे, हम लोग सब बच्चों के साथ वो बहुत ही घुल मिल के और बहुत ही आइडियल फादर। और एक बात हम जरूर बताना चाहेंगे कि वो खार में जब उन्होंने बंगला ले लिया था
0: जी जी।
1: तो जो भी सुविधाएं होती हैं वो सभी थी हमारे घर में, लेकिन बाबा बहुत कम डाइनिंग टेबल पे बैठ के हम लोगों के साथ खाते थे।
0: अच्छा।
1: वो अक्सर जमीन पर ही बैठ के खाया करते थे और हम लोगों को वो उन्होंने यही समझाया था कि यही हमारी जगह है, यहीं से हम शुरू हुए हैं। और बार बार वो अपने बचपन की कहानियां हम लोगों को सुनाते थे कि कितनी गरीबी में वो पले बड़े थे
0: जी,
1: वो चाहते थे कि हम लोग भी वैसे ही बने।
0: आपने जो ये बात बताई कि वो जमीन पर बैठकर खाते थे, एकदम जिसको कहते हैं ना कि मिट्टी से जुड़ा हुआ इंसान जो होता है, वो थे शैलेंद्र जी। और ये उनकी हर गीत में दिखता है। मुझे ऐसा लगता है कि उनके गीतों ने, मैंने जो पहले भी बात कही थी कि उनके गीतों में जीवन दर्शन इतना गहरा और इतनी सरल भाषा, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है, ये इतनी बड़ी बात बहुत सरल शब्दों में। वहीं आपको तो खैर मैं क्या बताऊं, हम तो सुबह शाम रात दिन जैसे उनके गीतों ने हम लोगों के जीवन को, हमारे श्रोताओं के जीवन को प्रेरित भी बहुत किया। अब मैं दिनेश शैलेंद्र जी से जानना चाहूंगी कि गीतकार शैलेंद्र अपने पिता को जब आप याद करते हैं तो उनके गीतों को लेकर आपको कैसा लगता है? अभी भी जब आप सुनते होंगे तो कई बार तो आंखें भरती होंगी आपकी, क्योंकि हम लोगों की भी भर आती हैं, तो हमसे वो आपकी जो फीलिंग्स हैं उसे शेयर कीजिए ना।
1: देखिए, हम तो जब वो गुजरे थे तो 10 साल के ही थे
0: जी,
1: तो उनके गाने सुनते तो रहते थे, हमारे घर में म्यूजिक तो बजता ही रहता था, हर तरह के गाने बजते थे। लेकिन एक्चुअली जब बड़े हुए तब उनके गानों का मतलब समझ में आया और फिर और जब हमारे एक्सपीरियंसेस हुए तो ये समझ में आया कि वो बहुत ही एक अलग ही किस्म से लिखते थे, जो बहुत कम राइटरों में एक टैलेंट है
0: जी, जी।
1: कि जो भी गाना उनका ले लें आप, वो एक परत अगर उठा दें
0: जी, जी।
1: जो नॉर्मल वर्ड से
0: जी।
1: तो आपको एक अलग मीनिंग अंदर दिखाई देगा और पता चलेगा। हम आज तक उनके गानों के बारे में लिखते हैं और हमें भी सीखने को मिलता है और समझ में आता है कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं। मतलब उनके गानों में इतनी गहराई होती थी कि एक आम आदमी तो अपने तौर पे गा लेता था। जैसे हम एक उदाहरण के तौर पे आपको बताते हैं कि गुलजार साहब के साथ एक दिन हम बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि होंगे राजे राजकुमार, एक श्री 420 का गाना है, मेरा जूता है जापानी, तो उसके एक अंतरा है कि होंगे राजे राजकुमार हम बिगड़े दिल शहजादे, हम सिंहासन पर जा बैठे जब जब करे इरादे।
0: क्या बात है।
1: उन्होंने बताया कि ये आप उसके मीनिंग ऐसे ही ऑर्डिनरीली आप ले सकते हो, लेकिन अगर आप एक परत हटाओ तो शैलेंद्र इज टॉकिंग अबाउट द न्यू इंडिया, मोनार्की खत्म हो गई है और डेमोक्रेसी आ गई है, तो राजे राजकुमार तो हैं, होंगे अब सिंहासन वो कोई भी आम

0: आदमी जाके बैठ सकता है, ये बोलना चाह रहे हैं वो।
1: उनके अंदर की जो ये आग थी ना, ये उनकी हर रचना में दिखती है। एक फिल्म भुलाए नहीं भूलती, और वो है फिल्म तीसरी कसम, जिसको आपके पिताजी ने बहुत दिल से बनाया था, और आज तक वो फिल्म हमारे जहन में बिल्कुल तरोताजा है। वही हीरा मन और वही सारी चीजें, वही राज कपूर साहब और वही गीत, उसको लेकर के कुछ बातें हम जरूर आपसे करना चाहेंगे दिनेश जी।
0: मनीषा जी, एक शॉर्ट स्टोरी थी फणीश्वर नाथ रेणु जी की
1: जी,
0: तो जिस दिन उन्होंने पढ़ी, छोटी सी किताब थी
1: मारे गए गुलफाम,
0: मारे गए गुलफाम नाम की कहानी थी, उन्होंने जब पढ़ी तो वो शुरू से आखिर तक एक ही उसमें पढ़ी फ्लो में, और जैसे ही पढ़ी उन्होंने किताब साइड में रखी और एक चिट्ठी लिख दी रेणु जी को
1: जी।
0: तो एक अजीब सा, मतलब उनको कोई जरूरत नहीं थी फिल्म प्रोड्यूस करने की, वो सबसे हाईएस्ट पेड राइटर भी थे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में और सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर वो एक कहानी इतनी पसंद आई जो हमारे रूट्स हैं वो बिहार के हैं
1: जी, जी जी,
0: तो उनको लगा कि वो कहीं अपने रूट्स के साथ जुड़ने में ये कहानी बहुत हेल्प कर रही थी उनको, तो एक जुनून सा सवार था कि मैं इस फिल्म को तो प्रोड्यूस करूंगा ही। फिर शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बीच में वो फिल्म में कुछ ज्यादा समय लग गया, जो एक साल में बननी चाहिए थी फिल्म, इनफैक्ट कुछ महीनों में बननी चाहिए थी
1: जी।
0: उस फिल्म को 5 साल लग गए, और जब तक फिल्म कम्प्लीट होने लगी थी तब तक सभी लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया था, पर वो अकेले, मतलब उनके दिमाग में बस यही था कि ये मेरा सपना है और मैं इस सपने को पूरा करके ही छोड़ूंगा, और जो भी था उनके पास वो सारा कुछ उन्होंने झोंक दिया उस फिल्म में, और फिल्म कंप्लीट की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिल्म शुरू में चली नहीं, तो कई लोगों का ये मानना है शायद फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से उनकी डेथ हो गई, या वो बिल्कुल बात नहीं थी, जितना पैसा वो उस वक्त ले रहे थे ये 3-4 महीने में वो इजिली कवर अप कर सकते थे सारे लॉसेस, और ये कुछ महीनों की ही बात है कि सितंबर में फिल्म रिलीज हुई, दिसंबर में वो गुजरे, और मार्च या अप्रैल में नेशनल अवार्ड अनाउंस हुए, तब लोगों की आंखें खुली कि भाई ये इसमें कुछ तो होगा, और उसके बाद वो फिल्म जहां भी लगी है बहुत अच्छा बिजनेस किया है और लोगों को सारे गाने भी पसंद आए हैं और बहुत चली।
2: अपने बाबा शैलेंद्र की स्मृतियां बांट रहे थे उनके सुपुत्र दिनेश शैलेंद्र। मनीषा जी, हम इस बातचीत को सुन रहे थे और उस दौरान फिल्म तीसरी कसम का एक गीत बार बार मन में कौंध रहा है, क्यों ना अपने श्रोताओं को सुनवाया जाए।
1: गीतकार शैलेंद्र की अनुपम कृति सेल्यूलॉइड पर लिखी एक कविता तीसरी कसम।

0: तो श्रोताओ, आज हमने स्मरण किया महान गीतकार शैलेंद्र को, और अब एक ऐसी संगीतकार जोड़ी की बातें जिनके गीत एक जमाने में लोगों को दीवाना बना दिया करते थे, और आज भी जब रेडियो से ये गीत बजते हैं तो उस जोड़ी की स्मृति को भी हम नमन करते हैं। और जयंत जी, हुस्नलाल जी और भगत राम जी संगीतकार खयाम के गुरु थे, जिन्हें अभी कुछ ही दिनों पहले हमने खो दिया। और इसके अलावा नौशाद साहब के भी गुरु थे हुस्नलाल जी और भगत राम जी,
1: जिनके गीतों का हुस्न देखते ही बनता था, और जिनके गीतों को सुन करके उनके संगीत के सब भगत हो जाया करते थे।
0: क्या बात है। तो आइए इस कार्यक्रम को सुनते हैं श्रोताओं, सरगम के सितारे। हमारा एक ये बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम होता था, इसके कुछ संपादित अंश आज के विविधा में हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। स्वर निम्मी मिश्रा का है, तो आइए सुनते हैं विविध भारती के संग्रहालय से चुनी गई ये रिकॉर्डिंग।

1944 में फिल्म चांद से सिने संगीत जगत में कदम रखा इस जोड़ी यानी हुसनलाल भगत राम ने। इस फिल्म का गीत दो दिलों को ये दुनिया मिलने नहीं देती बहुत ही लोकप्रिय हुआ।

0: वरिष्ठ फिल्म संगीतकार खय्याम, जो स्वयं संगीतकार हुसनलाल भगत राम जी के शिष्य हैं, अपने गुरु की सुरीली यादों में खो से जाते हैं और बताते हैं।
1: फिल्मी संगीत की दुनिया में पहली जोड़ी ये थी, तो दोनों मतलब शास्त्रीय संगीत के बहुत ही बड़े गुरु, और एज वेल एज उतनी ही महारत उनको लाइट म्यूजिक में, जिसमें वो ठुमरी हो, दादरा हो, गजल हो, गीत हो, तो ये मतलब बहुत बड़ी दोनों हस्तियां थे ये लोग। तो भाई मेरी खुश नसीबी ये कि मेरे गुरु थे, और मैं जो सरगम और स्वर और ताल का जो ज्ञान मुझे मिला उन्हीं से मिला, पहले स्वर सा जिसे कहते हैं उन्हीं से मिला, सरगम और सुर और सुर और ताल का, तो उन्हीं से ज्ञान मिला। दिल्ली में मुझे ये शिक्षा मेरी हुई, तो मैं बहुत ही मतलब भाग्यशाली हूँ, बहुत खुश नसीब हूँ कि ऐसे गुरु मुझे मिले, और जिनसे मतलब गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है वो तो सबको मालूम है, बहुत ही उत्तम होता है, लेकिन उन्होंने तो मुझे जैसे अपनी औलाद की तरह प्यार दिया, तो ये उनका। और फिर धुने उन्होंने क्या सुरीली, क्या अच्छी और कैची और आसान धुने बनाई उन्होंने हर एक फिल्म में। आप उनकी कोई भी फिल्म आप बजाएंगे, आप देखिए कितना आसान और उम्दा और अच्छा संगीत,
0: मतलब सुरीले होने के साथ साथ वो बहुत सरल भी होता था।
1: जी हाँ, बहुत सरल होता था,
0: और फिर जब सरल हो सुरीला हो तो असर की तो क्या,
1: यकीनन वो मकबूल होता है और आम लोगों तक, यानी हर खासो आम तक वो पहुंच जाता है।

0: फिल्म प्यार की जीत ने युगल जोड़ी को अपार सफलता दिलाई। यूं तो संगीत का गहरा ताल्लुक होता है दिल से, और फिल्म संगीत वो तो हर आम और खास की रग रग में बसता है, क्योंकि उसे सुनते सुनते ही हम बचपन से किशोर और किशोर से फिर युवा और फिर प्रौढ़ कब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। पर हुसन लाल भगत राम जैसे संगीतकारों का उम्दा संगीत हमेशा वैसा ही असरदार ताजा रहता है। योग्य पिता संगीतकार हुसन लाल की सुयोग्य संतान दिनेश प्रभाकर ने संगीत को ही अपनाया बतौर संगीतकार। पिता और गुरु की मीठी सुरीली यादें आज भी वैसी ही ताजा हो जाती हैं।
1: इस जोड़ी ने पंजाब की मिट्टी की सौंधी खुशबू एवं पंजाबी फोक को इस तरह से फिल्म संगीत में ढाला, और एक जो खास बात थी कि पंजाबी ठेका इसको शंकर जयकिशन ने भी अडॉप्ट किया, उसके बाद में ओपी नैयर जी ने भी अडॉप्ट किया, और इस तरह से कई संगीतकार हैं जो कि उनके संगीत के इन्फ्लुएंस में आए। अपने जमाने के बहुत ही बिजी संगीतकार थे, धुने तो वो दोनों भाई इकट्ठे एक साथ ही बैठ के बनाते थे, और इतने अनुबंध थे उनके कि उनको कई बार ये भी याद नहीं रहता था कि हमने कौन सी फिल्म की धुन किस तरह से बनाई। पर इतने माहिर थे कि सेट पर जाते ही जब वो ये फील करते थे कि ये धुन हम पहले भी कहीं दे चुके हैं, सेट पर ही उस धुन को एकदम चेंज कर देते थे। मैंने एक्चुअली वायलिन की ट्रेनिंग ली फादर से, और उनका हमेशा यही रहा कि पहले स्टडी करो, संगीत तो तुम्हें आ ही जाएगा। संगीतकार होने के साथ साथ वो एक बहुत बड़े गायक भी थे और वायलिन वादक भी। एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ, जालंधर में शायद हरिवल्लभ संगीत सभा में गा रहे थे वो, तो उस समय काफी बारिश हो रही थी और सामने बड़े गुलाम अली खान साहब और कई कई लोग बैठे थे, उन्होंने राग गाया मियां मल्हार। तो जब फंक्शन खत्म हुआ गुलाम अली खान साहब स्टेज पर आए, उनको गले मिले और बोले कि उनका नाम जैसे आप जानते हो हुसन लाल था ना
0: जी हाँ,
1: तो कि जैसा तुम्हारा हुस्न है वैसा ही तुम्हारा गाने में हुस्न,
0: वैसा ही गायन का हुस्न भी लाजवाब है।

फिल्म बड़ी बहन के साथ हुसनलाल भगतराम के संगीत का जादू चला, जो सिलसिला बना तो कई बार एक साल में ही इस जोड़ी की 8-8 फिल्में भी आईं। सन 1950 में निर्मित सावन भादो, आधी रात, मीना बाजार और गौना तो विशेष रूप से लोकप्रिय रहीं। सन 1951 की फिल्मों में अफसाना और सनम बहुत ही उल्लेखनीय हैं।

0: संगीत के क्षेत्र में पिता श्री भगत राम की ताल से ताल मिलाने की कोशिश में बेटे अशोक शर्मा।
1: वो सिर्फ मेरे पिता ही नहीं, मेरे गुरु भी हैं, उन्हीं से मैंने सब शिक्षा हासिल की है। मैं तो काफी छोटा था, पर फिर भी उनके जो पीक टाइम था उस वक्त तो मैं नहीं था, पर फिर भी मैंने उन्हें स्टूडियो में अक्सर देखा है। मैं उनके साथ जाया करता था, तो उनकी जो लगन थी काम करने की वो बहुत देखने लायक थी। और बहुत ही, वैसे तो बहुत ही सरल लोग थे, पर उनके काम में उनका अलग ही ढंग था काम करने का, जो खुद ही सब इवन वो अरेंजमेंट में भी इन्वॉल्व होते थे। सिर्फ गाने पे ही नहीं, धुन तो थी उनकी, प्लस वो म्यूजिक पे भी अपना बहुत ध्यान देते थे। कभी जब वो दोनों बैठे रहते थे तो वो बैठ के ही धुन बनाया करते थे। कभी जैसे कभी मेरे पिता पंडित भगतराम जी बैठे रहते थे, उन्हें कुछ सूझता था तो वो अलग बैठ के धुन बना लेते थे
0: जी,
1: और फिर उन्हें बता देते थे कि भी ये हो गया है। और कई बार प्रोड्यूसर बैठ जाते थे, उनके सामने भी वो इमीडिएट धुन बना देते थे। राइटर लिखते थे, तो पहले तो ऐसे नहीं था कि आपने ट्यून दे दी और उस पे लिख दिया, इतना नहीं हुआ करता था। पहले राइटर को फ्रीडम दी जाती थी और वो अपना लिख के तभी म्यूजिक डायरेक्टर को देते थे और वो उसी पे धुन बनाया करते थे। तो वो हर तरह से ही धुन बनाया करते थे। धुनें काफी हैं, जैसे वो गाना है छुप छुप खड़े हो जरूर की बात है।
0: अच्छा।
1: इस तरह की जो है वो धुने बस जैसे आई बैठे के दिमाग में तो उन्होंने इमीडिएट कंपोज कर दी फिर। और उसके म्यूजिक भी देखिए, हारमोनियम का बहुत छोटा सा पीच, बहुत बहुत खूबसूरत बनाया है भगतराम जी ने उसमें।
0: कुछ कोई बात खास आप अपने पिताजी के बारे में बताना चाहेंगे हम लोगों को, श्रोताओं को?
1: जी, पिताजी के बारे में यही कहना चाहूंगा कि बहुत सरल भाव के थे, बहुत सीधे थे और हमेशा संगीत में ही उनका दिमाग रहता था। और एक बात बताना चाहूंगा कि वो सिर्फ लाइट म्यूजिक के ही नहीं थे
0: जी,
1: बल्कि मतलब कहने का कि सिर्फ फिल्मों के संगीतकार नहीं थे, बल्कि वो बहुत विद्वान शास्त्रीय संगीत के भी कलाकार थे। वो
0: हुसनलाल जी के साथ भगत राम जी भी हारमोनियम पर शास्त्रीय रागों को बखूबी प्रस्तुत करते थे, यानी सही मायने में थी ये जोड़ी एक दूसरे की पूरक, या यूं कहें कि एक दूसरे के लिए ही बनी थी।

0: शास्त्रीय संगीत में महारत बनाती है सिनी संगीतकार की धुनों को और भी कामयाब और भी असरदार। संगीतकार हुसनलाल भगतराम जो थे सगे भाई और दोनों ही शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता। हुसनलाल जी की वॉयलिन की धुन स्वर कुछ अनूठे ही लगते थे जिनकी प्रशंसा में संगीतकार खयाम यूं कहते हैं।
1: देखिए उनकी खास बात ये थी कि पंडित हुसनलाल जी शास्त्रीय संगीत में वायलिन पर
0: जी
1: इतना अच्छा शास्त्रीय संगीत उसमें वायलिन में बजाते थे
0: जी।
1: तो मतलब एक रागा को पौना घंटा आधा घंटा पौना घंटा एक घंटा वो बजाते थे किसी भी एक रागा को वायलिन के ऊपर।
0: अच्छा, तो
1: और ऐसी टोन वायलिन की बहुत कम सुनने में मिली पूरी दुनिया में।
0: Yes.
1: ऐसी टोन वायलिन की कि क्या कहने या ये क्या मतलब कोई दूसरा विदेशी इंसान भी अगर सुन लेता था पंडित जी का वायलिन तो वो बहुत सराहना करते थे।
0: अच्छा,
1: कि वाह वाह ऐसा ऐसी टोन हमने नहीं सुनी। पंडित सुलाल जी वायलिन बजाते थे और पंडित भक्तराम जी हारमोनियम उसी तरह शास्त्रीय संगीत वो इसी तरह राग रागनिया हारमोनियम पे बजाते थे
0: जी। हाँ।
1: वो भी आधा घंटा पौना घंटा किसी राग को हारमोनियम पर बजाते थे।
0: और उसमें हारमोनियम और वायलिन की जुगलबंदी भी होती थी।
1: खैर उन्होंने दोनों भाइयों ने तो नहीं की
0: जी।
1: लेकिन जाहिर है जब काम करते थे दोनों दो दो हारमोनियम मैंने देखा कि भाई दो हारमोनियम होते थे एक हारमोनियम पंडित जी पंडित सुलाल जी के पास होता था एक भक्तराम जी के पास होता। दोनों भाई मिलकर काम करते बहुत कोई चहिता शागिर्द हो तो मेरी खुशनसीबी के मुझे कभी जब वो काम करते थे अदरवाइज जब इंसान काम करता है किसी थर्ड पर्सन को रिदमिस्ट के सिवाय किसी को पसंद नहीं करता कि उनके पास कोई बैठे क्योंकि एक तख्लीक करना होता है एक क्रिएटिव काम करना होता है। तो मगर मुझे अलाउड था मैं मुझे कहते थे तू आ जा पुत्र पुत्र आ जा तू आ जा काका आ जा तू इधर। तो हमारे जालंधर में ना तो वो भी जालंधर के थे मैं भी जालंधर का सब वो तो वो कहते तू बैठ तू न जा बाहर। तो मैं मुझे मतलब मुझे मौका मिलता कि मैं देखता पंडित जी किस बारीकी से किस तरह सजा रहे हैं।
0: वो आपके गुरु थे तो ये तो आप जानते होंगे तो कैसे उन्होंने ऐसा सोचा कि उससे पहले तो कभी दो एक साथ संगीतकार हुए ही नहीं थे उन्हीं की ये जोड़ी थी तो उन्होंने कैसे ऐसे सोचा कि दो लोग मिलके और ये संगीतकार हम बने एक साथ।
1: देखिए इसके लिए तो मैं मेरी मतलब बहुत ही मैं छोटा इंसान हूँ उनके सामने वो
0: हाँ।
1: बड़े मैं कैसे पूछ सकता था कि
0: नहीं,
1: वो...
0: मैं पूछ मैं अपनी जानकारी
1: तो उनके सामने मैं तो कुछ मैं तो हमेशा आपने सुना भी होगा मैं कहता हूँ कि मैं जो खयाम है उनके पांव की धूल भी नहीं है।
0: अरे क्या
1: इतने बड़े वो थे।

0: कि ये जो मुखड़ा है
1: जी,
0: ये बड़े गुलाम अली खान साहब बड़े खुश होते थे सुन के।
1: अच्छा।
0: तो उन्होंने खान साहब ने ठुमरी में इस मुखड़े को ले लिया था।
1: अच्छा।
0: मतलब इतने इंस्पायर हुए थे खान साहब।
1: अच्छा।
0: गुलाम अली खान साहब, उन्होंने पंडित जी को कहा, गुरु जी को, कि वाह हुसैन लाल जी क्या बनाई आपने तर्ज।
2: प्रसिद्ध सरोदवादिका जरीन शर्मा जो भगत राम जी की बहू हैं, उनके संगीत से बहुत प्रभावित हैं।
3: संगीतकारों में वो तो फिल्म इंडस्ट्री के पिलर थे
1: जी,
3: जिन्होंने आने वाली पीढ़ी को ये मार्गदर्शन दिया कि संगीत को कैसे बनाना चाहिए, फिल्म संगीत क्या है, किस दर्जे का होना चाहिए, जिसमें अमर धुने दी है, मेलोडी कभी मरती नहीं है
1: जी।
3: वो उन्होंने अपने संगीत के द्वारा साबित कर दिया है। और केवल फिल्म म्यूजिक में ही नहीं, शास्त्रीय संगीत में भी वो बहुत विद्वान थे। उन्होंने पंडित दिलीप चंद्र बेदी जैसे शास्त्रीय संगीत की तालीम हासिल की, कई शास्त्रीय संगीत के प्रोग्राम दिए, और शास्त्रीय संगीत में उनका फाउंडेशन इतना अच्छा था, इसीलिए वो फिल्म म्यूजिक में भी बहुत उम्दा संगीत दे पाए। उनका हर जो भी गाना देखिए, ऐसा नहीं एक दूसरे से मिलता रहता था, हर एक का अपना अंदाज होता था, हट के गाना होता था, मेलेडी होती थी। आज भी, आज सालों साल हो गए पर आज भी एवर ग्रीन है, जब भी सुनते हैं तो ऐसा लगता है बस सुनते रहो। तो ये तो जब तक आपके अंदर मेरिट नहीं हो ये बात कभी नहीं आ सकती
1: जी,
3: क्योंकि एक आपके पास इतनी विद्वत्ता है कि आप उसको अलग अलग अंदाज में पेश कर सकते हैं।
1: हाँ।
3: जब आप किसी चीज से सीमित रहते हैं तो आप उस काबिल नहीं बनते कि आप अलग अलग चीजों का प्रयोग करें
1: जी।
3: अब जिनको राग की जानकारी हो तो वो हर अलग अलग रागों के आधारित गाना बना के, तो ये सब जानकारी होने की वजह से वो सब कर सकते हैं
1: जी। हाँ।
3: और उन्होंने हर तरह से नई नई चीजों को प्रयोग में लाया है, जैसे चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है
1: जी,
3: ये देखिए तो उसमें रिदम का पैटर्न देखिए, हारमोनियम का पीस देखिए, मटके का प्रयोग उन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया
1: जी।
3: तो ये जो बातें होती है वो हमेशा सोचते थे कि आज ये गाने में हम नया क्या चीज बनाएं। उनको अपने काम से बेहद लगन थी, ये भी बहुत जरूरी है। सिर्फ आपको नॉलेज होने से कुछ नहीं होता है
1: जी, हाँ, जी।
3: आपको अपने में कितनी लगन है, वो लगन काम करती है
1: जी।
3: हर तरह से हर नए नए चीजों को प्रयोग में लाना और खूबसूरत अंदाज में लोगों के सामने लाना
1: जी, हाँ।
3: ताकि लोग उसको तारीफ करें और लोगों को भी अच्छा लगे। जितने महान थे उतना ही वो नम्र थे।
1: हाँ जी।
3: मतलब मैं तो ये को कभी मानना ही मेरे लिए इतना मुश्किल हो जाता था कि इतना विद्वान हो के इतनी नम्रता से वो बात करते थे, अपने से छोटे कलाकार को भी इतना मान देते थे जैसे उसको लगे अरे बापरे क्या बात है।
2: सिने संगीत के पुराने सुनहरे दौर में रविवार की रात रेडियो सिलोन से एक कार्यक्रम प्रसारित किया जाता था, हमेशा जवां रहने वाले गीतों का कार्यक्रम। उसका शीर्षक गीत भी हुसैनलाल भगत राम जी की ही तर्ज है। सन 1944 से 1954 तक के दशक में इस सफल संगीत जोड़ी हुसैनलाल भगत राम का ही एक छत्र राज्य था। सन 1955 में बनी फिल्म अदले जहांगीर के संगीत की चमक की तो क्या बात थी। यूं भी कहें कि ये संगीत उनका अंतिम चमकदार नमूना था।

फिल्म प्यार की जीत का वो गीत जो अमर गायक मोहम्मद रफी के यादगार गीतों में गिना जाता है, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, संगीतकार हुसनलाल भगतराम की धुन का ही कमाल है।

0: ये कहना तो देखिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर गीत उनका अच्छा था। और फिर वो देखिए वो भी आपने वो भी गाना आपने सुना होगा ना, तूने मेरा यार ना मिलाया।
1: अरे क्या बात है, क्या बात है, बहुत
0: तूने मेरा यार।

हुसन लाल भगत राम सिने संगीत आकाश की धूम केतु के समान अपनी रोशनी चमक बिखरा कर थोड़े से समय में ही चल दिए, पर दे गए ऐसी नायाब धुनी कि सिने संगीत के खजाने को जिन्होंने मालामाल कर रखा है, जिनमें से कुछ मधुर धुने गुनगुना कर हम किसी भी पल कर लेते हैं खुद को ताजा और याद कर लेते हैं ऐसी दुर्लभ धुनों के सर्जक को।

0: संगीतकार जोड़ी हुसनलाल भगतराम पर केंद्रित ये सरगम के सितारे कार्यक्रम था जयंत जी, और इसकी हमने संपादित रिकॉर्डिंग आज श्रोताओं को सुनवाई।
1: अब और कुछ कहने को बचा नहीं है, समय भी बचा नहीं है, और अगली विविधा के लिए अपने श्रोताओं से वादा करते हैं कि कुछ और बेशकीमती रिकॉर्डिंग्स हम उनके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए श्रोताओं दीजिए आज्ञा, जयंत पात्रीकर
0: और मनीषा जैन, हम दोनों ही का
1: आपको नमस्कार।
0: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: द बर्निंग ट्रेन फिल्म का ये गीत सुन रहे थे आप, जिसे लिखा साहिल ध्यानवी ने, राहुल देव बर्मन का संगीत, आवाजें सुषमा श्रेष्ठा और पद्मिनी कोल्हापुरे के साथ साथियों की।
1: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
2: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
1: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
3: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं।

रोजा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, ए आर रहमान का संगीत, पी के मिश्रा के बोल, एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की आवाजें। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: कहो ना प्यार है फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें, सावन कुमार टाक के बोल और राजेश रोशन का संगीत।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुम्हें बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
2: दिना दिना, हे आला दिना, बदली दुनिया के आया नया दिना।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर ऐसे गीत आपको सुनवा रहे हैं जिनमें बातें हैं आसमान की।

कोई मिल गया फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। उदित नारायण और चित्रा के साथ साथियों की आवाजें, इब्राहिम अश्क के बोल, राजेश रोशन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल आप विविध भारती पर सुन रहे हैं।

स्वदेश फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। उदित नारायण, हरिहरन और कैलाश खेर की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल, ए आर रहमान का संगीत। इसके साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर, लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बता देते हैं आज की इबारत, जिसमें छुपे हैं वो शब्द जिनसे आज के इस कार्यक्रम में गीत शामिल होने वाले हैं। तो आज की इबारत है, माँ ने कहा था चंदा में रहती हैं लाखों परियां, उन परियों के बीच कभी खुद को भी देखा करते थे, सपनों की वो दुनिया जिसमें आसमान के बादल पल में मौसम बदल देते और चांद सितारे अपनी चमक से आंखों को रोशन कर देते। कभी देखी चंदा पर बैठी चरखा कातती एक बुढ़िया माई, तो कभी चंदा ने आप थाली में खाकर हमें प्याले में ही दे दी मिठाई। जितना अनोखा बचपन उतना ही अनोखा हमारा खामों का संसार, पर बड़े होकर भी कहां बदला चांद से हमारा ये प्यार। रॉकेट छोड़े यान उतारे नाप लिया जग सारा, पर चंदा की सपनीली बातों ने ही मन को संभाला। तो आप किस तरह से देखते हैं चांद को, ये हमें बताइए, और साथ ही ये भी बताइए कि बचपन में कौन सी वो लोरी थी आपको जो सुनाई जाती थी सुलाने के लिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ फिल्मी गीतों को भी लोरी के रूप में सुनाया जाता है। वहीं चांद से जुड़ी वो कौन सी बातें हैं जो आपको सबसे अच्छी लगती है, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपको जाना है चांद की सैर पर, हमें बताइए। तब तक सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, और इस गीत को किस फिल्म से हमने लिया ये बताइएगा।

0: मामा जी के रॉकेट पर हम चांद की सैर को जाएंगे
1: जाएंगे।
0: अरे मामा जी के रॉकेट पर हम चांद की सैर को जाएंगे, वहाँ के बच्चों से मिलजुल कर दूध मलाई खाएंगे
1: खाएंगे। दीदी को भी ले जाएंगे, दूध मलाई खाएंगे।
2: अरे दीदी बच्चा थोड़ी है।
0: मामा जी के रॉकेट पर हम चांद की सैर को जाएंगे।

0: बजवाएंगे
1: बजवाएंगे
0: मामा जी के रॉकेट पर हम चार

ले चलो जल्दी को साथ। मामा जी का रॉकेट है, मामा

0: हम चांद की तल को जाएंगे, वहां के बच्चों से मिलजुल कर दूध मलाई खाएंगे।
1: दीदी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। साहिल उद्यानवी के बोल एन दत्ता का संगीत। हमने आपसे पूछा कि बचपन में कौन सी लोरी है जो आपके लिए गाई जाती थी, और चांद से जुड़ी वो कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगती है, और साथ ही ये भी पूछा है कि क्या आपने कभी सोचा है कि आप चांद की सैर पर जाएंगे, और बचपन का वो कौन सा सपना है जो अब भी आपकी आंखों में बसता है, ये भी हमें बताइएगा। लेकिन हमारे एक साथी ने कहा कि चांद आदिकाल से ही मानव के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। इंसान ने चांद को निहारा नहीं बल्कि कविता और गीतों में भी उतारा है। चांद को देखने का सबका अपना नजरिया है। बच्चों को चांद में चरखा चलाती बुढ़िया नजर आती है, तो नौजवानों को अपनी महबूबा का चेहरा नजर आता है, और तो और भूखे को चांद में नजर आती है रोटियां। एक ओर चांद को स्त्री पुरुष के प्रेम का साक्षी स्वरूप भी माना जाता है, और दूसरी ओर चांद संदेश वाहक भी बनता है। चांद को लेकर हमारी हिंदी फिल्में दूरदर्शी रही हैं। अंतरिक्ष में पहला मानव 1960 में गया था, लेकिन उससे पहले ही 1959 की फिल्म दीदी में मामा जी की रॉकेट में हम चांद को सैर पर जाएंगे ये गीत लिखा गया था। इसी तरह चांद पर मानव 1969 में पहुंचा, मगर उससे पहले 1968 में अंतरिक्ष के वासियों की कल्पना को लेकर वहां के लोग फिल्म का निर्माण किया गया था। वहीं हमारे एक और साथी कहने कि चंदा मामा दूर के ये गीत बचपन में बहुत बार सुन चुके हैं, और चांद पर बैठी चरखा काटती बुढ़िया माई की कहानी भी सुन चुके हैं। किसी सुंदर स्त्री के गोरे गोरे मुख को भी चांद की उपमा दी जाती है, और चांद कितना सुंदर या खूबसूरत है। ये साल 1969 से में 20 जुलाई के दिन अपोलो 11 चंद्रयान ने चांद की धरती पर उतरकर गलत साबित कर दिया कि वहां की जमीन सुंदर रहे या उबड़ खाबड़। दूर से ली गई तस्वीर देखकर महसूस हो रहा है कि जैसे किसी स्त्री के चेहरे पर निकले हुए शीतला के दाग हुए, यानी चेचक के दाग हुए, ऐसा वो कह रहे हैं। हालांकि सुंदरता को इस तरह से आंकना तो हमारी नजर में बिल्कुल सही नहीं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि ख्वाब कहीं या सपना, इनकी दुनिया ही अलग होती है। ये चांद के भी कई रूप होते हैं, कभी उसमें दाग तो कभी सूत काटती बुढ़िया परियां। क्या क्या कल्पना कर लेते हैं हम चंदा मामा दूर के बचपन से आज तक सुनते हैं। पूर्णिमा का चांद तो बेहद खूबसूरत होता है, वो अपनी धवल चांदनी से हमें आह्लादित करता है। और हमारी आप जिस तरह से बातें करें कि चांद पर हमने देखा है, तो सिर्फ सूत काटती बुढ़िया माई को ही हमने चांद पर नहीं देखा, बल्कि और भी अलग अलग आकृतियां हम अक्सर देखते हैं चांद पर भी, सितारों के साथ भी। तो आपने अंतरिक्ष में या कहें आसमान में कौन कौन सी ऐसी आकृतियां देखी हैं चांद और तारों को मिलाकर, हमें बताइए। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि चांद बचपन और यादों के हंसी सपनों को समेटे हुए गद्यांश आज अंतरिक्ष का रुख करवाएगा। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि वो उन्होंने अलग अलग गीत लिख भेजे हैं। और हमारे एक और साथी कहते हैं कि माँ ने अपने बच्चों को चंदा मामा परियां चांद सितारों की कहानियां सुनाकर बचपन में सपनों की दुनिया सजाई जो हकीकत लगी। आज भी चांद में वही सब दिखता है। ऐसा कोई नहीं जिसने चंदा मामा दूर के लोरी माँ से न सुनी हो। आज भी प्लेन आकाश में उड़ता दिखाई देने पर ऊपर देखे बिना नहीं रह पाते। शरद पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा की खूबसूरत चंद्रमा को देखने की आदत है, शायद बचपन फिर याद आ जाता है। तो हम बड़े होकर भी तो इन चीज़ों को देख सकते हैं। आप क्या कहते हैं इस बारे में हमें बताइए, क्योंकि बातें तो बचपन की, चांद की, सितारों की और परियों की होने वाली है, साथ ही साथ सपनों की दुनिया में भी हम खोने वाले हैं। हमारे साथी क्या लिखते हैं ये आपको बताएंगे, लेकिन आप हमें ये भी बता सकते हैं कि क्या तारों की पहचान करने के लिए आपने आसमान में कभी ताक झांक की है, और क्या कभी आपने ये सोचा है कि आप चांद पर जाएं। इस गीत को किस फिल्म से लिया है हमें बताइएगा।

बचपन हर गम से। गीत गाता चल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार और साथियों की आवाजें, रविंद्र जैन की बोल, उन्हीं का संगीत। हमारे एक साथी ने लिखा कि आसमान पर चंद्रमा के साथ तारों के समूह जैसे काल पुरुष, तारा मंडल, सप्तर्षि मंडल, आकाश गंगा जिसमें अनगिनत तारे हैं, आप टेलीस्कोप या साधारण आंखों से भी देख सकते हैं। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि चांद पर जाना अब मुश्किल नहीं, लेकिन जाने का तो नहीं सोचा है। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हमारे राजस्थान में तो चांद को देखकर व्रत भी खोलती हैं सुहागन औरतें। फिल्म गीत गाता चल का ये गीत आपने सुनवाया, तुम गगन के चंद्रमा हो मैं धरा की टॉर्च हूँ, ऐसा हमारे एक साथी ने लिखा। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि मलयालम में चंदा मामा दूर के जैसे ही गाना है, अम्बिली अम्बावा तमारा कुंबिलील इन थोड़ू, ऐसा गाना है, मेरी माँ सुनाती थी, ऐसा उनका कहना है। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि बचपन में हम उसे मामा कहकर पुकारते थे और फिर जब बड़े होते गए तो चांद के प्रति जो महसूस करते थे वही अक्स उसमें नजर आने लगा। फिल्मों में और कवियों ने चांद को लेकर कितना सुंदर सुंदर लिखा है। इसकी बानगी वे गीत है जिनकी ठंडक में हम अपना गम बिसरा देते हैं। चांद आसमान में टंगा सबसे सुंदर आभूषण है, समय की खाली आंखों में तैरते आकाश के तारे चांद के पैरों की पाजेब है, उसके घुंघरू हैं, इसको जिस चाहे उस नज़र से देखो, ये पल में बच्चों का मामा बन जाता है, किसी बहन को उसमें अपना भाई नज़र आता है, तो किसी को दूर देश में बैठा अपना प्रियतम भी नज़र आता है। तो जिस तरह से अलग अलग रिश्ते होते हैं एक ही व्यक्ति के जीवन में, कुछ उसी तरह से चांद को भी हमने अलग अलग रिश्तों में बांध रखा है और अलग अलग नज़रिए से उसे देखते हैं। वही हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि भले ही विज्ञान ने चंद्र का असली स्वरूप हमें समझा दिया है, चांद तो आज भी हमारे लिए मनोरम परिकथाओं का जनक है। बचपन का पुए पकाने वाला चंदा मामा, अपने अंक पर खरगोश, हिरण की गाड़ी और सूत कताई करती दादी माँ को संभालने वाला प्यारा इंसान है। सजा के तौर पर रोज खुद का आकार बदलने वाला नटखट बेटा है। प्रभु रामचंद्र जी ने भी बचपन में उसे पाने के लिए आतंक मचाया था। सभी के मन पर वो राज करता है। जवां दिलों के सपनों का सौदागर है। करवा चौथ, संकष्टी चतुर्थी, कोजागरी पूर्णिमा, नारियली पूर्णिमा को पूजनीय आराध्य देव भी वो कहलाता है। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि दादी कहती थी तारों की महफिल में चजता है एक जादुई नगर, जहां जुगनू बनकर हम भी रोज करते थे सफर। कागज की वो नावें जो बारिश के पानी में समंदर पार कर जाती, और वो कागज के हवाई जहाज जो बादलों को छूकर वापस आ जाते। कभी धूप की छांव में परछाइयों से राजा रानी की कहानी बुनते, तो कभी रात को छत पर लेटकर हवाओं की सरसराहट में परियों के गीत सुनते। जितना मासूम वो लड़कपन, उतनी ही

0: सुनिले नारी महल।
1: जीएसटी काउंसिल निजर 56तम बैठकरे हेल्थ केयर द्रव्यकु सस्ता करिबा द्वारा आम देशर बृहत जनसंख्याकु एक आश्वासना मिलिछि। भारतर मधुमेह रोगीको पई दैनिक जरूरी ग्लुकोमीटर एवं स्ट्रिप्स उपरे जीएसटी रो दर ह्रास करि दिया जाइछि। डाक्तरी चश्मा उपरे मध्य जीएसटी ह्रास करा जाइछि। ब्रेस्ट क्यान्सर सहित आस्थमार उन्नत चिकित्सा पई केतक दरकारी औषध थर्मोमीटर डायग्नोस्टिक किट्स उपरे भी ट्याक्स रो दर ह्रास करा जाइछि।

0: are creating new technologies.
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: The BRICS Sports Ministers meeting is underway in Visakhapatnam, Andhra Pradesh, as part of India's BRICS Chairship 2026. Union Minister for Youth Affairs and Sports, Dr. Mansukh Mandaviya, and Minister of State for Youth Affairs and Sports, Raksha Nikhil Kharse, welcomed the sports ministers and heads of delegation from all 11 BRICS member countries and engaging in discussions with them. The ministerial engagement is focusing on strengthening cooperation among

0: आत्मशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के कार्य की भी सराहना की।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। श्री चांदना ने बताया कि उनकी कंपनी ने 3 कारखाने स्थापित किए हैं। इस वर्ष 18 जुलाई को श्री चांदना की कंपनी ने भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज अहमदाबाद में 3rd राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्पेस साइंस की इस विधा को प्राइवेटाइजेशन करके भारत के लिए अपार संभावनाओं का द्वार सृजित किया गया और जिस तरह की क्षमता प्रोफेसर साराभाई से लेकर के आज तक भारत के महान वैज्ञानिकों ने जिस तरह का मुकाम हासिल किया है, भारत जो आज एक मजबूत स्थिति में इस क्षेत्र में खड़ा है, आने वाले समय में विश्व का अग्रणी और लीडरशिप स्टेटस को प्राप्त करेगा।
0: कार्यक्रम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के निदेशक वीएन राव भी उपस्थित थे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: देश आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। हर वर्ष 23 अगस्त को यह दिन चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की स्मृति में मनाया जाता है। वर्ष 2023 में इस दिन चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के निकट सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। इस उपलब्धि के साथ भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया और साथ ही विश्व की अग्रणी अंतरिक्ष शक्तियों में अपनी जगह बनाई। संचार और मौसम पूर्वानुमान से लेकर नेविगेशन और आपदा प्रबंधन तक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी लोगों के दैनिक जीवन में लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक इस समय आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में चल रही है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया, राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने ब्रिक्स के सभी 11 सदस्य देशों के खेल मंत्रियों और शिष्टमंडल के प्रमुखों का स्वागत किया। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच खेलों के माध्यम से सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जा रही है। बैठक के अंत में साझा घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। ब्रिक्स युवा अलायंस ने आज लगातार दूसरे दिन ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ विषय पर चर्चा का आयोजन किया। ये ऑनलाइन चर्चा मुख्यतः वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार पर केंद्रित थी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वस्थ जीवन शैली के लिए साइकिल चलाने को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की है। डॉक्टर मांडविया ने आज विशाखापट्टनम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग कार्यक्रम के

0: बाद मीडिया से कहा कि साइकिल चलाना फिट इंडिया आंदोलन का अभिन्न हिस्सा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की दो दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सहअध्यक्षता करेंगे। डॉ सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ से भेंट के दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 27 अगस्त तक जापान की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका का दौरा करेंगे। उनके साथ भारत का एक बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी जापान जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि ये यात्रा भारत और जापान के विशेष रणनीतिक तथा वैश्विक साझेदारी संबंधों की महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि सफाई के काम में मानवीय श्रम को कम करने और मशीनों के अधिक इस्तेमाल की आवश्यकता है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों के लिए सुरक्षा उपाय, सुरक्षा उपकरण और प्रशिक्षण तथा स्वास्थ्य बीमा जरूरी हैं। नौसेना का प्रशिक्षण जहाज सुदर्शनी और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार जहाज पर सवार चालक दल के सदस्य और प्रशिक्षु पुर्तगाल की नौसेना और भारतीय समुदाय के साथ पेशेवर और सांस्कृतिक आदान प्रदान करेंगे। ये आईएनएस सुदर्शनी का 15वां पुर्तगाल दौरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल के गांगेय क्षेत्र और झारखंड में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तराखंड और विदर्भ में भी दिन में ऐसे ही मौसम की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार बारिश से प्रमुख नदियां उफान पर हैं।
1: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के नए क्षेत्र के कारण उड़ीसा के कई हिस्सों में फिर से भारी बारिश हो रही है। आईएमडी ने आज केंदुझर, मयूरभंज, रायगढ़, कोरापुट और कलाहंडी में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। कलाहंडी के थुआमूल रामपुर में पिछले 24 घंटे में 345 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो राज्य में सबसे ज्यादा है। लगातार बारिश के बीच बंसाधारा और सालंदी जैसे नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जबकि बाढ़ प्रभावित इलाके अभी भी जोखिम की स्थिति में है। 7 जिलों में हालिया बाढ़ से लगभग 14 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और राहत व बहाली का काम जारी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज सुबह हल्की बारिश हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि युद्धपोत निर्माण, अपतटीय पोत और अन्य रक्षा क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। श्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन री शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड से जुड़े 5 केंद्रों के भूमि पूजन समारोह में शामिल हुए। रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार आंतरिक सुरक्षा के मामले में पूरा सहयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 11,000 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई है। उन्होंने कहा कि GRSE ने हाल के समय में 100 से अधिक पोत उपलब्ध कराए हैं। GRSE की परियोजनाएं शिपयार्ड की विनिर्माण क्षमता और बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगी। इन परियोजनाओं से समुद्री बलों और अन्य रक्षा जरूरतों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। यंत्र इंडिया लिमिटेड के मेटल एंड स्टील फैक्ट्री ईशापुर में 750 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से 2 केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इनसे स्वदेशी धातुकर्म और रक्षा विनिर्माण को मजबूती मिलेगी। चौथे चरण की औद्योगिक क्रांति और ऊर्जा कुशल तकनीकों से लैस ये दोनों केंद्र उच्च स्तर के विनिर्माण को बढ़ावा देंगे। आयात पर निर्भरता कम होगी और रक्षा, रेलवे तथा रणनीतिक क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसेन रेजाई ने पड़ोसी देशों को ईरान के खिलाफ अमरीका के आर्थिक अभियान में शामिल न होने की चेतावनी दी है। उधर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर अमरीकी इलाका बताए जाने के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान ने फिर कहा है कि जब तक अमरीका अपना रुख नहीं बदलता, हॉर्मुज बंद रहेगा। एक रिपोर्ट।
2: ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजाई ने हॉर्मुज पर अमरीकी दावों को खारिज करते हुए श्री ट्रंप के बयानों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि

0: हुर्मुज जलरमरु मध्य और अमेरिका के बीच की दूरी 7000 मील से भी अधिक है और ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ईरान पर और अधिक आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारियां कर रहा है। ईरान ने कहा है कि इससे उसकी अर्थव्यवस्था को और अधिक नुकसान होगा और प्रमुख व्यापारिक साझेदारों तथा खासकर चीन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो ईरान के कच्चे तेल का एक प्रमुख आयातक बना हुआ है। समाचार कक्ष से मुनीष शर्मा।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा के साथ व्यापार वार्ता को स्थगित किए जाने और कनाडा को अमेरिकी राज्य बनाने की इच्छा एक बार फिर व्यक्त करने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार विवाद और गहरा गया है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कनाडा पर आरोप लगाया कि वो अमेरिकी किसानों पर काफी अधिक शुल्क लगा रहा है। उधर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि अमेरिका की मांग को अनुचित और व्यापार समझौते की अनदेखी करने वाली है। श्री कार्नी ने कहा कि कनाडा अपने कामगारों, किसानों, परिवारों और कारोबार की रक्षा के लिए अमेरिका जितना ही शुल्क लगाएगा। प्रधानमंत्री कार्नी ने स्पष्ट किया कि कनाडा स्वतंत्र रूप से व्यापार समझौता वार्ता करेगा और इस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध स्वीकार नहीं किया जाएगा। जापान में राजधानी टोक्यो के उत्तर पूर्वी प्रांत इबाराकी में आज तड़के 5.9 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप से पानी की पाइप फट गई और कुछ इलाकों में यातायात सेवा पर भी असर पड़ा। भूकंप का केंद्र 70 किलोमीटर की गहराई में था। और अब कुछ खेल खबरें। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट पर 184 रन बना लिए हैं। इस मुकाबले में सारांश जैन भारत के लिए डेब्यू कर रहे हैं। भारत ने पहला मुकाबला 165 रन से जीता था। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। और अन्य खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन।
2: ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में एक पारी और 51 रन से हरा दिया है। दोनों टीम श्रृंखला में 1-1 की बराबरी पर रही। टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर और भारत चौथे स्थान पर है। उधर महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। पूल ई का ये मैच रात 10:30 शुरू होगा। नीदरलैंड्स 6 अंकों के साथ पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। चीन के 2 अंक हैं जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के 1-1 अंक हैं।
1: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष स्टार्टअप से मजबूत इकोसिस्टम बनाने की अपील की ताकि वे वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित कर सकें। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की शुभकामनाएं दी। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज 2 दिवसीय रूस दौरे पर रवाना होंगे। छत्तीसगढ़, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। ईरान ने पड़ोसी देशों को आगाह किया कि वे अमरीकी आर्थिक प्रतिबंध अभियान में शामिल न हों। भारत और श्रीलंका के बीच क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच कोलंबो में जारी। और हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत के लिए मैच जीतना जरूरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ଏତେବେଳେ ଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ। ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ କିଛି ସମୟ ପରେ।
4: ବନ୍ୟା ହେଉ ବା ମହାବାତ୍ୟା, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ
5: ଗାଁରୁ ସହର ଯାଏ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ
4: ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ
5: ଜୁଆଙ୍ଗ ଓ ସାନ୍ତାଳଙ୍କ ଠାରୁ ବଣ୍ଡା ଏବଂ କୋୟାଙ୍କ ଯାଏଁ ସବୁରି ଭାଷାରେ
4: କେବଳ ଆକାଶବାଣୀ।

0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में हसरत जयपुरी के बोल आपने सुने तर्ज शंकर जयकिशन की फिल्म जंगली।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुम्हें बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपके आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
2: दिना दिना हे आला दिना, बदली दुनिया के आया नया।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, जिसमें आज अभिनेत्री सायरा बानो अभिनीत फिल्मों से गीत।
4: तुम

आओ प्यार करें फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल, उषा खन्ना का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे

रहे हैं विविध भारती पर सदाबहार नखमे। आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज में ये गीत। दीवाना फिल्म का ये गीत हसरत जयपुरी ने लिखा, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी।
2: मन चाहेगी।

प्यार का मौसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। और इसे पसंद किया था एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से कुमारी वंदना मराठा, भाऊ मराठा, गणेश दादा, कार्तिक भाऊ, परी, संजना मराठा और मालती चौधरी, स्वाति, प्रयाग चौधरी, ललिता नारायण खर्चे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सिमगा से रमेश कुमार यादव, माया यादव, रिंकू सन्नी कोमल यादव, सेक्टर 67 मोहाली छत्तीसगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा बजाज, गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से एम फारूक कादरी, फिरासत हुसैन, मुनव्वर लल्ला, पप्पू बिजलीवाले, शेख शमा परवीन, अल कमर बेगम, अफसाना बेगम, महजबीन शेख और मिर्जा नसरीन बेगम। आप सभी के पसंद पर ये गीत हमने आपको सुनवाया। और अब कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं, शरीफ बदमाश फिल्म का ये गीत पसंद किया है विट्ठल मंदिर चौक भीड़ शहर से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, संतोष पगारिया, केशव पटेल, सांगा मगर लोड छत्तीसगढ़ से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार और हियांश कुमार चंदन। और साथ ही भरी टोला डोंडी से नमित कुमार गौतम, पीहू नीतू मुरली गौतम। और आप हैं इस्लामपुर से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना, सुमित कुमार दामोदर। आप सभी के पसंद पर सुनिए शरीफ बदमाश फिल्म का ये गीत।

नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं कश्मीरी नाटक गिली तुरी का हिंदी रूपांतर दो फूल जूही के। लेखन एवं अनुवाद किया है हृदय कौल भारती ने। निर्देशन है दीनानाथ।

0: के मानी। अरे ये तक तो हमारे शहर के सामने ही रुका। बाप रे कितना सामान भरा है इसमें। बॉय के माने खिलौना। कितना बड़ा है ये ट्रक। कैसी कैसी चीजें हैं इसमें। संदूक, बिस्तर, सोफा, मेज और वो साइकिल। कैसी प्यारी छोटी साइकिल। इसकी तो सवारी करनी चाहिए। ट्रन ट्रन ट्रन। बचके जरा बचके भाई साहब। मैं नीचे जाकर इसको दिखाता हूँ। पर नहीं, फिर मम्मी डांटनी है तो कभी पड़ता भी है। टी ओ वाई टॉय। तो क्या हुआ, मैं नीचे जाकर ही पढ़ूंगा। बी ओ वाई बॉय। टॉय के माने खिलौना। बी ओ वाई बॉय।
1: अरे धीरे धीरे उतारो भाई, जरा सावधानी से, इसमें क्राकरी है।
2: अरे चिंता न करो साहब, हम तो फूल की तरह सामान उतारेंगे।
0: बी ओ वाई बॉय। बॉय के माने लड़का, लड़का।
1: अरे क्या करते हो भाई, जरा देखना छूट ना जाए हाथ से।
2: एक छूटेगा साहब, रस्सी से जो बंधा है।
0: बॉय के माने खिलौना, टॉय के माने लड़का। इस साइकिल तो नीचे उतार ही नहीं रही है। बी ओ वाई टॉय। टॉय के माने लड़का। टी ओ वाई बॉय। बॉय के माने खिलौना।

0: की माँ ने खिलौना, जैसे मुझे नहीं मालूम।
1: फिर क्यों कह रहे थे?
0: मैं साइकिल को देख रहा था।
1: साइकिल? कौन सी साइकिल?
0: जो इस ट्रक में रखी है, ये लोग उतार ही नहीं रहे हैं उसे।
1: ये किसकी साइकिल है?
0: पता नहीं।
1: तुम्हें चलानी आती है?
0: नहीं, मेरे पास साइकिल ही नहीं।
1: मुझे चलानी आती है।
0: मुझे सिखाएगी?
1: ये साइकिल मेरी ही है।
0: मुझे इस पर बैठने देगी?
1: तुम्हारा घर कहाँ है?
0: वो सामने। तुम्हारा?
1: वो वाला जहाँ ये सामान ले जाया जा रहा है ना, ये हमारा अपना घर नहीं है।
0: तो
1: पापा की बदली हुई है, तभी हम लोग यहाँ आए हैं। पापा वापस बदली करवा लेंगे तो हम फिर अपने घर वापस जाएंगे।
0: कब?
1: पता नहीं।
0: मुझे अपनी साइकिल पर बैठने देगी?
1: ना बाबा ना, मुझे नहीं आता दूसरों को बिठाना। मैं गिर जाती हूँ ऐसे।
0: तो
1: मैं तुम्हें सिखा दूंगी, फिर हम दोनों सवारी किया करेंगे, है ना?
0: कब? मेरे पास भी बहुत सारे खिलौने हैं। डीओवाई टॉय।
1: डीओवाई टॉय।

0: क्या, मैंने यार स्कूल से आते ही सारा होमवर्क कर लिया।
1: तो फिर बेल सुनते ही बाहर क्यों नहीं आए?
0: मम्मी होमवर्क जो देख रही थी, आता कैसे?
1: तुम्हारी मम्मी भी होमवर्क देखती है क्या?
0: हाँ, तुम्हारी?
1: मेरी मम्मी भी देखती है।
0: मेरी मम्मी को पढ़ना आता ही नहीं, पर होमवर्क फिर भी देखती है।
1: मेरी मम्मी तो फर फर फर फर सारा कुछ पढ़ लेती है। मैं झूठ कहती हूँ, उसे भी पढ़ना नहीं आता। सीखोगे साइकिल चलाना?
0: हाँ, मैं समझा था तुम भूल ही गई होगी।
1: पापा की तरह, जैसे मैं भी कोई पापा हूँ।
0: वो क्या होता है?
1: जब मैं पापा से कुछ लाने के लिए कहती हूँ ना, शाम को आकर वो कहते हैं, अरे बेटा मैं तो भूल ही गया।
0: मेरी डैडी तो मेरी कोई चीज नहीं भूलते।
2: वो भी इसी तरह भूलते हैं।
1: नहीं तो क्या पापा भूल जाते हैं? मम्मी की तो हर चीज उन्हें याद रहती है।
0: नहीं तो वो झगड़ा करेंगी ना।
1: तुम्हें कैसे मालूम?
0: मुझे मालूम है, मेरे मम्मी डैडी भी झगड़ते हैं ना।
1: हाँ, मेरे भी।
0: मैं उस समय नींद का बहाना करता हूँ
1: और मैं साइकिल लेके गली में निकल जाती हूँ।
0: मुझे सिखाएगी साइकिल चलाना?
1: तुम सीख ही नहीं रहे हो तो। चलो उठो, पहले इस पर पैर रखो। ना ना, नहीं नहीं, ये पैर नहीं बाबा, वो पैर रखो।
0: अच्छा।
1: हाँ, अब बैठो सीट पर। उफ़ो, नहीं, पहले एक हाथ से इस दीवार का सहारा लो।
0: अच्छा, ले लिया।
1: हाँ बस, अभी हाथ नहीं हटाना। अच्छा, जब मैं कहूँगी तब छोड़ना, ठीक है?
0: अच्छा अच्छा, छोड़ू?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं, अब सामने देखो, ऐसे
0: ऐसे।
1: तुम तो डरते हो, डरपोक कहीं के।
0: नहीं तो
2: मैं डरता हूँ, मुझे कहीं चोट लगी तो मम्मी मारेगी। वो इसकी मम्मी के साथ झगड़ा करेगी, इसको भी मारेगी, फिर ये मेरे साथ कभी नहीं खेलेगी।
0: अब धक्का दो ना।
1: हैंडल ठीक से थामना।
0: अच्छा
1: देखो, मैं अब धक्का देने जा रही हूँ, मैं तब कहूँगी गो, ठीक है?
0: हाँ।
1: लगी तो नहीं?
0: नहीं।
1: अब मैं एक बार चलाकर दिखा दूंगी, तुम ध्यान से देख लेना, ठीक है?
0: अच्छा।
1: देखो ऐसे, फिर घुमाओ ऐसे, फिर ऐसे, देखा?
0: हाँ। तुमने किससे सीखी?
1: खुद ही सीखी।
0: नहीं?
1: और नहीं तो क्या?
3: झूठ, मुझे तो मामा जी ने सिखाई।
1: मैं एक बार भी नहीं गिरी थी। जानते हो ये साइकिल मुझे किसने लाके दी है?
0: पापा ने।
1: नहीं
0: तो फिर
1: तुम ही बताओ।
0: मुझे क्या मालूम।
1: मामा जी

0: बैठकर बाजार जाती हूँ, सब्जी लाती हूँ, पापा के लिए सिगरेट लाती हूँ। मम्मी पापा मुझे कुछ भी नहीं कहते।
1: एक दिन मैंने भी सिगरेट पी थी।
0: झूठ।
1: झूठ क्यों? चोरी चोरी पी थी।
0: फिर
1: शाम को डैडी ने सिगरेट ढूंढी, मम्मी ने भी ढूंढी।
0: फिर क्या हुआ?
1: फिर मम्मी ने थक कर कहा, वो चूहे ले गए होंगे।
0: चूहे?
1: फिर उन्होंने झगड़ा किया। मैंने झूठ मूठ नींद का बहाना किया। अब डैडी सिगरेट अपनी अलमारी में बंद रखते हैं ताकि
0: ताकि चूहे न ले जाए। तुम चूहे।
1: जब मैं भी बड़ा हो जाऊंगा, मैं भी सिगरेट पीऊंगा डैडी की तरह।
0: फिर तुम्हारी सिगरेट भी चूहा ले जाएगा।

0: उसमें जब चाबी भरते थे वो दीवार के पास पहुंचकर खुद ही मुड़ जाया करती थी।
1: झूठ कहा मैंने, पापा कहते हैं ऐसी चीजें लाने से पैसे बर्बाद हो जाते हैं।
0: मेरी एक सहेली ने उसे तोड़ दिया।
2: तुमने उसे कुछ नहीं कहा?
0: सहेली को क्या कहती?
2: मैं होता तो झगड़ा करता, टाई की तोड़ा मेरा।
0: बीओ
2: नहीं, टीओ वाई।
0: बीओ
2: वाई,
0: टीओ वाई, टीओ वाई।
2: जानती हो हमारे यहाँ बुलबुल ने बच्चे दिए हैं।
0: है, है? कहाँ?
2: बाद में पेड़ पर। चल दिखाता हूँ। चल
0: चल
2: आ जा,
0: जल्दी
2: आ जा।
0: अगर हमारे भी पंख होते,
2: आहा, तब हम भी उड़ते।
0: ना बस के लिए खड़ा रहना पड़ता, ना साइकिल सीखनी पड़ती।
2: मैं एक ही उड़ान में स्कूल पहुंच जाता, फिर नाना जी के पास, फिर घर।
0: तब हम खिड़की से अंदर आते
2: चिड़ियों की तरह। मुझे स्कूल की बस बहुत बुरी लगती है।
0: क्यों?
2: और नहीं तो क्या, हम उसमें समा ही नहीं पाते। मैडम सीट पर बैठती है, हम खड़े रहते हैं। पीछे से कंडक्टर अंकल कहते हैं शाबाश, आगे चलो आगे चलो, पर आगे से मैडम डांटती है पीछे चलो पीछे चलो। परसों मुझे पीटी सर ने मारा।
0: क्यों, उसे क्या हुआ?
2: हम बस में बैठे थे, ड्राइवर ने एकदम से बस रोकी। मैडम सीट पर बैठी थी, मैं गिर पड़ा। मैडम के होठों का रंग मेरी कमीज पे लग गया।
0: फिर
2: स्कूल पहुंचकर पीटी सर ने पकड़ा और कहा शर्ट पर दाग क्यों है बैड बॉय। फिर मारा। ना मैडम को कुछ कहा ना ड्राइवर से।
0: तुमने पीटी सर से कहा नहीं?
2: मैं क्या कहता, वो उस मैडम को कुछ कहते ही नहीं, बस उसे ही देखकर हंसते।

0: कहाँ बैठी हो? पता है क्या हुआ?
1: क्या?
0: वो थे ना हमारे पेड़ पर बुलबुल के दो बच्चे।
1: हाँ थे तो?
0: वो वहाँ है ही नहीं, जाने कहाँ भाग गए। वहाँ उनकी मम्मी डैडी अब अकेले हैं।
1: उन्होंने शादी की होगी।
0: शादी? तुम्हें कैसे पता?
1: अरे तुम्हें नहीं मालूम, शादी के बाद ही अलग हो जाते हैं।
0: अलग? अलग क्या?
1: उफ़ो, अलग भी नहीं मालूम, नहीं मालूम। B.O.I. टॉय अलग होता है दूसरे घर में रहना, अलग से खाना पकाना और बस।
0: तुम्हें कैसे पता?
1: बस है पता, मेरे अंकल भी तो शादी के बाद अलग रहने लगे। पहले उन्होंने पापा और मम्मी के साथ खूब झगड़ा किया, फिर अलग घर में रहने लगे। मम्मी बेचारी ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, एक बार भी झगड़ा नहीं किया। झूठ कहती हूँ मैं, मम्मी ने बहुत झगड़ा किया, गालियाँ दी, बहुत गालियाँ, फिर खींच कर माथे पर गड़वी मारी। आंटी बेचारी रो रही थी, मुझे तो अंकल बहुत अच्छे लगते हैं।
2: मेरी मम्मी बहुत अच्छी है।
0: तुम भी क्या शादी करने के बाद अलग

0: लड़कियाँ नहीं होती, लड़के हो जाते हैं। अंकल क्या कोई लड़की थे?
1: लड़कियाँ क्यों नहीं अलग होती?
0: पता नहीं, डरती होंगी शायद। नहीं नहीं, शर्माती होंगी। मम्मी भी कहती है ना, लड़कियों को शर्माना चाहिए।
1: तुम भी क्या शादी करने के बाद अलग रहोगी?
0: और तुम?
2: ना, नहीं, मुझे तो डर लगता है अकेले में।
0: डरपोक डरपोक,
1: शर्मीली नहीं है।

0: तुमने झूठ बोला होगा। मम्मी कहती हैं जो झूठ बोलता है उसे कुछ भी याद नहीं रहता।
1: चल चल, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। जानती भी हो झूठ बोलना पाप है।
0: तब तो तुम्हें पाप लग गया। कल तुमने झूठ बोला ना, कहा था मम्मी डैडी के साथ कल घूमने जाना है, देर से लौटूंगा।
1: कहा था तो क्या हुआ, नहीं गया?
0: पाप लगा कि नहीं?
1: क्यों, मम्मी डैडी तो गए।
0: तुम क्यों नहीं गए?
1: मुझे उनके साथ घूमने में मजा नहीं आता।
2: झूठ कह रहा हूँ, उन्होंने मुझे अपने साथ लिया ही नहीं। पहले मम्मी ने डांटा, फिर डैडी ने चॉकलेट ला के दी, कहा हम अभी लौटेंगे। झूठ कहा डैडी ने, उन्हें भी तो पाप लगेगा झूठ बोलकर।
1: वो रास्ते में चलते चलते जाने क्या बातें करते हैं, कैसी बातें करते हैं। डैडी को कोई दोस्त मिलते हैं तो ऑफिस की बातें करते हैं, बीमारियों की बातें करते हैं। मम्मी को कोई सहेली मिले तो बस वो यही पूछती है,
3: बड़ी कमजोर लग रही हो, घर में सब ठीक ठाक है ना?
1: मैं उनकी उंगली थामे खड़ा खड़ा थक जाता हूँ। उनका हाथ खींचता हूँ तो उंगली दबाकर तोड़ देती है। मम्मी बस चिल्लाती ही रहती है, किनारे किनारे बेटे, किनारे किनारे चल। जैसे मुझे नहीं मालूम सड़क पर किनारे किनारे चलना चाहिए। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा अकेले घूमने जाया करूंगा।
0: मैं भी।
1: तुम कैसे जाओगी, लड़कियां थोड़ी ही घूमने जाती हैं।
0: तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ जाया करूंगी।
1: हाँ, हम बहुत दूर घूमने जाया करेंगे, टैक्सी में।
0: हम रास्ते में किसी से बातें नहीं किया करेंगे।
1: हाँ, हम बस आपस में ही बातें करेंगे। मैं सिगरेट पीता रहूँगा जैसे डैडी पीते हैं।
0: जाओ, फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं आया करूँगी।
1: क्यों,
0: और क्या, मुझे सिगरेट के धुएं से खांसी आती है।
1: अच्छा, मैं धुआं दूसरी ओर फेंक दिया करूँगा ऐसे।
0: फिर एक दिन तुम्हारी सिगरेट भी चूहा ले जाएगा।
1: खेलेंगे हमारे बाग में, वहाँ कोई नहीं है ना।
0: तुम्हारे सभी खिलौने तो अंदर कमरे में बंद होंगे।
1: नहीं तो, मैंने वो पहले ही निकाल रखे हैं।
0: मम्मी ने कुछ नहीं कहा?
1: जब उन्हें घूमने जाना होता है वो मुझे कुछ नहीं कहती।
0: तो चलो फिर।
1: चलो
0: चलो।
1: देखो ये मेरी कार है, गाड़ी है।
0: मुझे तुम्हारी ये कार बहुत अच्छी लगती है। ये चाबी के बिना ही चलती है ना, सचमुच की कार की तरह।
1: अगर ये सचमुच की कार ही होती
0: तब तुम्हारे मम्मी डैडी इसी में घूमने जाते।
1: जब मैं देता तभी ना, हम खुद इसमें घूमने जाते।
0: हाँ, कार मैं चलाती।
1: अरे, लड़कियाँ भी कभी कार चलाती है क्या?
0: क्यों नहीं चलाती, मैंने क्या पिक्चर में नहीं देखा है?
1: तब स्कूल की बस ड्राइवर क्यों चलाते हैं?
0: पता नहीं, बस बड़ी होती है ना, शायद इसलिए।
1: क्या पौधों को सींचेंगे?
0: वो क्या होता है?
1: सींचना भी नहीं मालूम। इसे नहीं मालूम सींचना क्या होता है।
0: तो क्या हुआ, तुम्हें मालूम था क्या अलग होना क्या होता है?
1: सींचना होता है पानी पिलाना, पौधों को पानी पिलाना, समझी?
0: मुझे आएगा क्या पानी पिलाना?
1: क्यों नहीं आएगा, मैं सिखा दूंगा। चलो बाहर
0: चलो। अरे देखो तो, पानी किस तरह इस लकीर में से अंदर अंदर गायब हो जाता है।
1: इस पौधे को बहुत प्यास लगी होगी।
0: तुम्हें कैसे मालूम?
1: और क्या, हमें जब बहुत प्यास लगती है हम बहुत सारा पानी नहीं।

0: मैं बताती हूँ, मुझे मालूम है।
1: तुम्हें कैसे मालूम? झूठी कही की।
0: सच, मुझे मालूम है। जब दादी माँ मरी थी, डैडी की मम्मी ना सब बहुत रोए थे, मम्मी भी रोई थी। झूठ कहती हूँ मैं, वो तो बस ट्रंकों अलमारियों में कुछ ढूंढ रही थी। झूठ मुंह की उस समय रोती थी जब बाहर से कोई आता था, फिर उसने अंकल के साथ बहुत झगड़ा किया। मुझे दादी माँ के पास जाने ही नहीं दिया था किसी ने। मैंने दालान में से चोरी चोरी झांक कर देखा, उसे सफेद कपड़े में लपेटा था उन्होंने।
1: चल हम भी इसे सफेद कपड़े में लपेटेंगे।
0: कहाँ से लाएंगे कपड़ा?
1: हाँ, वो लाएंगे कहाँ से? तुम ठहरो, मैं अभी आया।
0: तुम कहाँ जा रहे हो?
1: बस मैं अभी आया। ये रहा सफेद कपड़ा।
0: रुमाल?
1: हाँ, डैडी का है, मम्मी ने सुखाने के लिए डाला था।
0: डैडी मारेंगे।
1: वो कुछ नहीं कहेंगे।
0: झूठ।
1: कहा ना, जिस दिन उन्हें घूमने जाना होता है उस दिन वो मुझे कुछ नहीं कहते। अगर मैं बरामदे का बल्ब भी तोड़ दूं, वो आज मुझे कुछ नहीं कहेंगे।
0: क्यों?
1: वो बहुत देर से लौटते हैं ना।
0: अच्छा, लपेटो फिर।
1: ना, तुम लपेटो।
0: क्यों? तुम क्यों नहीं लपेटोगे?
1: मुझे नहीं पता कैसे लपेटते हैं। मैंने नहीं देखा ना, तुमने देखा है।
2: नहीं, मैं डरता हूँ इसे हाथ लगाने से।
0: अच्छा, ला रुमाल, मैं ही लपेटती हूँ।
1: लो।
0: मुझे बहुत दुख हो रहा है इसका।
1: मुझे भी।

0: आ गई?
1: मैं आज स्कूल गई ही नहीं।
0: तुम्हें मजा आ गया होगा घर में बैठे। डैडी मुझे एक दिन भी घर में नहीं बैठने देते, कदाचित इससे छुट्टी लेते हैं। बड़ों की तो मजे होते हैं।
1: खाक मजे होते हैं। मुझे नहीं लगता अच्छा घर में बैठना।
0: क्यों?
1: वो हर छुट्टी के दिन झगड़ते हैं।
0: हाँ ये तो है।
1: कल पापा और मम्मी ने इतना झगड़ा किया, इतना झगड़ा किया।
0: तुम्हें साइकिल लेके निकल जाना चाहिए था।
1: आग लगा दूंगी उस साइकिल को। मैं अब उस पर कभी भी नहीं बैठूंगी। लाए पापा अपने लिए खुद ही सिगरेट, मैं क्यों लाऊंगी? मैं तो उस साइकिल को हाथ भी नहीं लगाऊंगी।
0: क्यों?
1: वो साइकिल मामा जी लाए हैं ना।
0: उससे क्या होता है?
1: मामा जी की शादी है।
0: तब तो वो भी अलग हो जाएंगे।
1: पता नहीं, मम्मी ने कहा उनके लिए सूट और घड़ी होनी चाहिए।
0: क्यों?
1: अफ़ो, तुम तो कुछ भी नहीं समझते। शादी पर देते हैं ना घड़ी और सूट। पापा को आ गया गुस्सा, कहने लगे मैं कहाँ से लाऊंगा, है इतने फालतू के पैसे मेरे पास। मम्मी ने कहा वो भी तो बेबी के बर्थडे पर साइकिल लाया था।
0: फिर?
1: बस फिर क्या, दोनों ने बहुत झगड़ा किया। मम्मी बहुत रोई, उन्होंने खाना भी नहीं खाया। मुझे पापा अच्छे नहीं लगते जब वो मम्मी के साथ झगड़ते हैं। तुम्हें?
0: मुझे भी नहीं।
1: मेरी मम्मी तो यूं ही पापा से डरती हैं। मैं नहीं डरती वरती पापा से। झूठ कहा मैंने, मैं मम्मी से भी ज्यादा डरती हूँ उनसे। तुम डैडी से डरते हो?
0: मैं क्यों डरूंगा? झूठ, मैं उनसे बहुत डरता हूँ, वो मारते हैं ना।
1: चल आज पौधों को फिर सींचेंगे।
0: नहीं।
1: क्यों?
0: क्या पता आज और कोई बुलबुल मरी हो। खिलौनों से खेलेंगे। पीओ वाई
1: वाई।

0: मुझे ये बारी बहुत अच्छी लगती है। तुम्हें?
1: मुझे नहीं लगती।
0: क्यों?
1: मम्मी कहीं जाने ही नहीं देती, कहती है बीमार हो जाओगी।
2: झूठ, वो कहती है कपड़े भीग जाएंगे। रोज रोज ना कपड़े धुल सकते हैं ना प्रेस हो सकते हैं। अपने पापा से कहो नौकरानी।

0: तुम्हारी मम्मी तुम्हें कुछ नहीं कहती?
1: कहती तो है, फिर?
0: अरे देखो बैलगाड़ी।
1: कहाँ?
0: वो नहीं देखते, उस मोड़ के पास।
1: अरे हाँ, इधर ही आ रही है।
2: तुमने कभी बैलों को लड़ते देखा है?
1: नहीं, तुमने?
0: मैंने भी नहीं देखा।
1: एक बात कहूँ?
0: क्या?
1: ये लड़ ही नहीं सकते।
0: क्यों?
1: क्यों क्या, इतना भी नहीं समझती? ये बैलगाड़ी में बंधे हैं, लड़ेंगे कैसे?
0: अरे हाँ,
1: अरे इसमें भी बहुत सारा सामान भरा है, जैसे उस दिन तुम्हारे ट्रक में भरा था।
0: वो मैं तो भूल ही गई तुम्हें बताना।
1: क्या?
0: पापा मम्मी से कह रहे थे हमारी वापस बदली हो गई है।
1: सच?
0: और नहीं तो क्या, अब हम अपने घर जाएंगे।
1: कब?
0: पता नहीं।
1: अगर मेरे पास भी बैलगाड़ी होती, मैं भी कहीं दूर चला जाता।

0: मैं तुझसे नहीं बोलता, कुट्टी है तुम्हारी मेरे साथ।
1: क्यों?
0: मैं यहाँ कब से बैठा हूँ, आई क्यों नहीं? मम्मी मुझे हर रोज डांटती है, आया ना कांच कपड़ों का सत्यानाश करके।
1: मुझे मम्मी आने ही नहीं देती थी, कहती है इस बारिश में आदमी बीमार हो जाता है।
0: झूठ कहती है, मैं क्यों नहीं हुआ?
1: जानते हो हम जा रहे हैं।
0: कहाँ?
1: वापस अपने घर।
0: कब?
1: अभी, पापा ट्रक में सामान भरवा रहे हैं।
0: तुम भी जाओगी?
1: और नहीं तो क्या।
0: जाने दो उन्हें, तुम यही रहो, वो झगड़ा करती है ना।
1: लेकिन पापा मम्मी के बिना कैसे रहूं?
0: तुम अलग हो जाओ।
1: कह तो दिया कि लड़कियां अलग नहीं होती।
0: हाँ, लड़के अलग नहीं होती।
1: तू किसके साथ खेला करेगा?
0: पता नहीं। और तू?
1: किसके साथ खेलूं? अपने साथ।
0: एक बात बोलूं?
1: क्या?
0: हम शादी करेंगे।
1: क्या?
0: शादी करेंगे। क्यों?
1: हम छोटे हैं ना।
0: है तो क्या हुआ?
1: हमारी शादी करेगा कौन?
0: हम खुद करेंगे, फिर अलग रहेंगे। जाने दो जिसको जहाँ जाना है, हम यही रहेंगे।
1: मम्मी डैडी के बगैर ही?
0: हाँ, जैसे बुलबुल के बच्चे अलग हुए। पर वो बुट्टी बुलबुल जो मर गई, भी होगी।
1: आ गई टैक्सी, पापा हॉर्न बजा रहे हैं, मैं जाती हूँ।
0: जाओगी तुम? तुम ठहरो, मैं भी आया। तुम्हें ये कार अच्छी लगती है ना? ये तुम रखो।
1: कुछ कहेंगे तो नहीं?
0: क्यों कहेंगे, मैं किसी से नहीं डरता, मैं वही करूँगा जो मेरा मन चाहे। तुम इस कार के संग रोज खेलना।

0: दो फूल जूही के, अभी आपने कश्मीरी नाटक गिली तुरी का हिंदी रूपांतर सुना। लेखक और अनुवादकर्ता थे हृदय कौल भारती, निर्देशन दीनानाथ का था। यह हमारे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति थी।
1: कुछ दिल ने कहा,
2: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की,
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
2: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
3: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
2: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
2: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई,
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
2: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।

0: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
1: जैसे तू है पास मेरे, तेरे पास मैं।
0: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।
1: अपनी कहानी उतनी रहेगी, चाहे बढ़ा लो चाहे घटा लो।
2: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
3: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
2: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
4: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
2: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक रंगकर्मी और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से बातचीत। वामन केंद्रे को रंगमंच की दुनिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तकरीबन 50 दशक तक रंगमंच की दुनिया को अपनी कला से वामन जी ने सुशोभित किया। उनका ये सफर आज भी जारी है। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बिखेरेंगे पद्मश्री वामन केंद्रे। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने, तो आइए सुने ये बातचीत। आज आपको सुनवा रहे हैं इसका दूसरा भाग।
1: वामन केंद्र जी, जो ये पूरा ब्यौरा मैं जिस तरह से सुन रहा हूँ तो आंखों के आगे पूरे दृश्य चल रहे हैं। एक चीज जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो है आगे बढ़ने की और अपनी मंजिल को पाने की जबरदस्त ललक, जबरदस्त ऊर्जा। क्योंकि 40 घरों के गांव से आप निकल के आते हैं और फिर एक एक कदम आगे बढ़ता जाता है और आपकी दृष्टि और आपका क्षितिज बड़ा हो रहा है और दिल्ली तक आप जिस तैयारी के साथ और जिस तेवर के साथ पहुंचे वो बहुत बेमिसाल है। ये ऊर्जा जो है जी, ये कहां से आ रही थी?
2: ये ऊर्जा मुझे लगता है कि आपके डिटर्मिनेशन से आती है
1: जी।
2: आपके सारा बैकग्राउंड ऑड है,
1: हाँ, सब कुछ खिलाफ विरुद्ध है
2: और मुझे लगता है जीतने का एक ही जज्बा हो सकता है, वो होती है जिद।
1: वाह वाह,
2: क्योंकि कोई भी ऊर्जा आती है वो आपके जिद से निर्माण होती है कि मुझे तो जाना ही था, मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ही पढ़ना था।
1: ये बात,
2: और वो मैं नहीं पढ़ता तब भी मैं और कुछ करता जो इससे बेहतर भी हो सकता था, पता नहीं
1: जी जी,
2: पर मुझे तो वहीं जाना था। तो इसीलिए वो जो तैयारी होती है, जो होमवर्क है, रिसर्च है, आपका प्रेपरेशन है, लक्ष्य अगर आपको मालूम है और जाने का तरीका अगर आपको मालूम है तो पूरी शक्तियों के साथ अपने आप को झोंक देने का आपका स्वभाव होना चाहिए।
1: वाह वाह वाह,
2: मैं स्टूडेंट मूवमेंट में भी था तो मैं इतना सा छोटा नाटा था तो 5,000 लोगों के मोर्चा को कंट्रोल कर रहा हूँ और आप जवाबदेह है। उस सारे मोर्चा में किसी ने कुछ भी मिसबिहेव किया तो वो सारा का सारा ठिकरा तो आपके ऊपर फूटने वाला है
1: जी।
2: तो ये सारी जिम्मेदारी का एहसास भी था।

0: इसीलिए वो जिद और श्रम, मेहनत करने की ताकत, मुझे लगता है ये दोनों अगर आपके पास हो तो आपको कहीं से भी कहीं भी जाने से कोई भी रोक नहीं सकता। आप कहां से आए हो, कौन से जाति के हो, कौन से धर्म के हो, कहां क्या कर रहे हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, गरीब हो अमीर हो, आपको कोई मायने नहीं रखता। आपका लक्ष्य सीधा आपके सामने होना चाहिए और वहां पहुंचने की ऊर्जा, पूरी ताकत के साथ पहुंचने की ख्वाहिश बहुत लंबी होनी चाहिए, पुख्ती होनी चाहिए और काम करने का मादा होना चाहिए।
1: क्या बात है, छोटे कद के हल्की सी दाढ़ी वाले दुबले पतले वामन केंद्रे जब दिल्ली पहुंचे तो वहां के शुरुआती दिन कैसे थे?
0: मैं जब दिल्ली पहुंचा तो मैं कुछ एक आप इमेजिन करते, मैं कभी दिल्ली गया नहीं था, पहली बार गया
1: जी।
0: तो एनएसडी में पहुंचते ही पहले तो ऐसा लगा, मुंबई देख के थोड़ा बहुत गया था तो ये बड़ी 10-12 मंजिला बिल्डिंग होगी, ये थिएटर बड़े बड़े, ये होगा वो होगा वो, वहां गया तो एक हेरिटेज स्ट्रक्चर है, 1+1 का कुछ एरिया है, बाकी तो सारा 1-1 एरिया है, ऐसा फैला हुआ 7-8 पूरा गांव लगा हुआ। और पैंट और एक शर्ट, ऐसे दो ही पेयर थे मेरे पास
1: जी।
0: एक पैंट शर्ट सूटकेस में रखा था ताकि वो दूसरे दिन स्कूल में जाने के समय में पहन लूंगा, और ये पहन के ऐसे ही गया था तो देखा तो सामने से हाई फाई सारे लड़के लड़कियां आ रही कुछ, और हाथ में पैकेट है, सिगरेट पीते हुए जा रहे हैं। तो मैंने उनको पूछा कि एनएसडी किधर है,
1: वाह,
0: तो मेरी तरफ देख के हंसे हो, बोले यही तो है एनएसडी सामने जहां से हम आए हैं। मैं उनके नाम नहीं लूंगा, वो शॉर्ट्स पहने हुए हैं और वो समय ये था फैशन का कि वो सारे धागे जो है वैसे छुटे हुए होते थे शॉर्ट्स के, लगभग इज्जत ढकने के लिए जो कपड़े पहने जाते हैं उतनी ही थी, गर्मी बहुत थी। तो ऐसे देखने के बाद मुझे पहला तो शॉक लगा, कल्चरल शॉक, माय गॉड ये एनएसडी है। और यहाँ पर मुझे 3 साल रहना है
1: जी,
0: तो अंदर ही अंदर ऐसा हो गया, वामन केंद्र संभालो अब कब वापस जाओगे। तो ऐसे एक कुछ सोच मन में आई और धीरे धीरे अंदर गया और रिसेप्शन पे जाके बोला मेरा नाम फलाना है और मैं फर्स्ट ईयर के लिए सेलेक्ट हो गया हूँ। एक साड़ी पहनी हुई औरत थी तो मुझे लगा ये टीचर होगी। तो उन्होंने कहा हाँ अच्छा है, उधर बाहर जाना है आपको, तो वो रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि यहाँ पर एक कमरा है, यहाँ पर आप अपना सूटकेस और वो जो भी रखना है रखो, और वहां पर एक फर्स्ट ईयर के साथ गैदरिंग होने वाला है सारे का स्वागत आगत। तो वहां रख के मैं चला गया, तो जिस महिला से मेरी बात हुई थी तो मुझे लगा वो टीचर होगी, कोई एक्टिंग पढ़ाती होगी या डायरेक्शन। वहां गया तो जब मैं बैठा फर्स्ट ईयर के लाइन में तो मेरे बगल में बैठी थी। मैंने कहा मैडम आप यहाँ क्यों? तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं फर्स्ट ईयर में ही मेरा एडमिशन हुआ है।
1: ओके।
0: और उनका नाम था अनामिका हक सर।
1: ओ हो, घोड़े को जलेबी
0: जिन्होंने आगे चल के फिल्म, मेरी क्लासमेट जो पीएन हक्सर जो इंदिरा गांधी जी के एडवाइजर थे, लीगल एडवाइजर थे, तो उनकी वो बेटी।
1: वाह वाह।
0: तो फिर वहां से कारण जी आए, फिर माहौल बन गया, फिर क्या कहते हैं स्वागत हो गया, परिचय हो गया, कौन क्या कहाँ से आया है, तो एक आध दो गाना गाओ, ये करो वो करो, सब हो गया। तो लगा कि नहीं नहीं ठीक है, ये जो पहला शौक था उस शौक से उस सदमे से थोड़ा मैं बाहर आना शुरू हो गया कि नहीं नहीं यहाँ माहौल ठीक है।
1: वो पहले दृश्य में जो लोग थे उनकी कोई सुराग?
0: नहीं नहीं वो नहीं लगा। उनका नाम बताऊंगा तो मुझे मार पड़ेगी। अभी भी अजीज दोस्त थे दोनों तीनों भी।
1: अच्छा ठीक है।
0: और ये मुंबई में ही रहती है।
1: चलिए हम लोग अंदाजा लगा लेंगे। यहाँ एक गाना सुनते हैं।

0: जी का संतूर अटेंड कर रहे हैं या खान साहब का सरोद अटेंड कर रहे हैं या श्रीराम सेंटर में जाके कोई और बाहर का नाटक देख रहे हैं या बगल में रशियन सेंटर था वहां जाके कुछ फिल्म देख रहे हैं या जापानी सेंटर था वहां जाके कोई उनका फोक आया है वो देख रहे हैं, नहीं तो यहां भी कुछ नहीं है तो सीधा कोई एक दूर दराज पे चाणक्यपुरी में थिएटर हॉल था जो फिल्म समझ में नहीं आए ऐसी अंग्रेजी फिल्में जाके देखते थे।
1: वाह वाह वाह,
0: वो इसीलिए था कि शाम फालतू में बर्बाद नहीं करनी है।
1: क्या बात,
0: मेरी रिहर्सल है तो मैं रिहर्सल में रहूंगा या मुझे किसी और को मदद करनी है तो उनके साथ रहूंगा, सीनियर्स के साथ। तो ये मुझे लगा कि पढ़ने पढ़ाने का बहुत ही अच्छा खूबसूरत माहौल था। वो सुबह 8 बजे क्लासेस शुरू होती थी और रात को कितने बजे खत्म होगी इसका कोई अंदाजा नहीं था। सुबह 8 बजते ही आप योगा कर रहे हो, 2 दिन हफ्ते में 2 दिन डांस कर रहे हो, 2 दिन ट्रेडिशनल डांस कर रहे हो, 2 दिन मॉडर्न डांस कर रहे हो, इस तरीके से ये था। किसी दिन फिर मार्शल आर्ट के गुरु मणिपुर से आए हैं, वो अपने को तलवार चलाना सिखा रहे, उसके बाद कोई छाऊ वाला आया है वो पूरा आपकी बॉडी को तोड़ मरोड़ रहा है। एक महीना पहले जाते ही अस्ताद देबो का मॉडर्न डांस एंड मूवमेंट का वर्कशॉप लगा, 1 महीना निरंतर उन्होंने हमारे साथ काम किया। तो उन्होंने हमारे शरीर को खड़े रहने की क्या कहते हैं एक तरीके से 4-5 दिन के बाद इतना टर्न ट्विस्ट हो गया कि बॉडी इतना दर्द करती थी कि किसी के हाथ पे या पैर पे टिचकी मारो तो पूरा हाथ पूरा शरीर थरथराता था। तो इस तरीके से कौन जेंडर है, कौन मेल है, कौन फीमेल है, ये सारा खत्म कर दिया 1 महीने के अंदर। तो इस तरीके से फिर क्लासेस, थ्योरी क्लासेस होती थी, प्रैक्टिकल क्लासेस होती थी। सौभाग्य से बेहतर एक टीचर मिले
1: जी,
0: और कारण जी जैसा आदमी हमारे डायरेक्टर थे वो भी पढ़ाते थे और उन्होंने इतने सारे दुनिया भर के टीचर इकट्ठा करके लाए हम लोगों को पढ़ाने के लिए। और उसमें सौभाग्य से अलकनंदा समर
1: वाह
0: नाम की रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स लंदन में पढ़ी हुई और वहां कई सालों से पढ़ा रही थी एक्टिंग, वो फ्रेंच आदमी से शादी हुई थी उनकी, सौभाग्य से उनके हस्बैंड की ट्रांसफर दिल्ली में हुई एज एम्बेसेडर, फ्रांस के एम्बेसेडर दिल्ली में। चला कि अलकनंदा समर्थ यहाँ आए तो उनको उन्होंने 2 साल निरंतर हमें पढ़ाने के लिए बुलाया, इनवाइट किया। तो हफ्ते में उनके 2 या 3 क्लासेस होती, माहौल था आप लाइटिंग भी पढ़ रहे हो, आप सेट डिजाइन भी पढ़ रहे हो, आप लिटरेचर भी पढ़ रहे हो,
1: जी
0: वहां जो भी नाटक आते थे वो तो हम जाके देखते ही थे। पर इस वजह से नाटक आया, कभी महाराष्ट्र से आया, कभी कर्नाटक से आया, कभी केरल से आ गया, अपने अपने, तो वो हमें पता चलता था तो हम जाके देखते थे। तो एक मुझे लगा कि ये अंदर 4 दिवस
2: कुछ नहीं होता है उस समय, एक श्रीराम सेंटर का एक नेशनल फेस्टिवल हुआ करता था 6-7 दिन का, वहां जो भी नाटक आते थे वो तो हम जाके देखते ही थे। पर इस वजह से नाटक आया, कभी महाराष्ट्र से आया, कभी कर्नाटक से आया, कभी केरल से आ गया, अपने अपने, तो वो हमें पता चलता था तो हम जाके देखते थे। तो एक मुझे लगा कि ये अंदर 4 दीवारों में हम जो पढ़ रहे थे उसके साथ साथ बाहर जो घटित हो रहा है उससे कनेक्शन हमारा निरंतर रहा। देश का और दुनिया का नाटक जो देखने का मौका मिला और नाटक करने के तरीके कितने हो सकते हैं, संभावनाएं कितनी बनती हैं, फिर एक से बेहतर एक विद्वान, चाहे वो बादल सरकार है उस समय के जो थियोरेटिशियन भी थे, प्रैक्टिशनर भी थे, सारे बंगाल के थे, कोई गुजरात का था, कर्नाटक का, गिरीश कारनाड जी से लेकर चंद्रकर कंबार जी से लेकर ये सारे लोग आ रहे थे। तो उधर रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता आके कुछ नाटक कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में हमारे साथ, तो दूसरा कोई आके रतन थियाम मार्शल आर्ट पढ़ा रहे हैं, तो कावालम नारायण पनीकर नाटक लेके आए मध्यम व्यायोग उनकी अपने तरीके का, हबीब साहब के नाटक पहले जाते ही पहले महीने में मुझे लगा कि 10 दिन उनके चरणदास चोर के शो मंजर थिएटर में प्रगति मैदान में लगे थे, 10 के 10 शो हमने उस नाटक के देखे।
1: वाह, एक ही नाटक के 10,
0: एक ही नाटक के 10, हर दिन शो कैसे बदलता है और क्या मैजिक है उस थिएटर का
1: जी।
0: ये सारा जो था, फिर एमके रैना थे, बंसी कौल थे जो हिंदी में थिएटर करने वाले भी थे और भी भाषाओं के आने वाले लोग थे, प्रसन्ना जी थे, तो ये मुझे लगा कि शांता गांधी का क्या कहते हैं रेपर्टरी कंपनी का नाटक देख रहे, जसमा वर्डन सैया भय कोतवाल भी देख रहे हैं, उसके बाद बर्नम वन भी देख रहे हो, तो एक इतना एक्सपोजर थिएटर करने की संभावनाएं, थिएटर कितने तरीके से आदमी इस समय सोच रहा है दुनिया में, वो सब का एक्सपोजर मिलने का एक बहुत बड़ा

0: फर्स्ट ईयर जो है वो बहुत तूफानी होता है?
1: नहीं, सारा ही तूफानी होता है एक्चुअली. पढ़ने वाले के लिए मैंने ये तय किया था कि कोई एक सेकंड मुझे फालतू में बर्बाद नहीं करना है.
0: जी जी.
1: मतलब कसम ये खाई थी कि जिस दिन मेरा कोर्स खत्म होगा उसके एक दिन पहले मैं दिल्ली से निकलूंगा.
0: अरे कसम.
1: मतलब मैं रहूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए यहाँ नहीं रहना है, मुझे जाना तो महाराष्ट्र है.
0: वाह वाह.
1: क्योंकि मेरी जो मातृभाषा है वो मराठी है और थिएटर की जो यहाँ की हालात है उससे बेहतर तो दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, खासकर हिंदुस्तान की कक्षा में तो कुछ नहीं हो सकता. हिंदुस्तान में सबसे बेहतर थिएटर तो या तो बंगाली है या मराठी है, तो मैं वहां से क्यों हटूं.
0: जी.
1: तो इसीलिए मैंने, मेरा जो हर दिन था वहां का, मैंने कोई क्षण ये था कि शाम को अगर मेरी रिहर्सल नहीं है और वहां जो भावलपुर हाउस में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है वहां कुछ देखने के लिए मेरे लिए नहीं है तो मैं भाग जाता था. हम दो तीन लड़के लड़कियां जो हमारी दोस्ती हो गई तो ये तो कमानी ऑडिटोरियम में जाके कुछ किशोरी ताई अमोन करके गाने सुन रहे, भीमसेन जोशी की महफिल अटेंड कर रहे हैं, या शिव कुमार शर्मा.

0: मुझे लगता है कि मेरे बनने में बहुत बड़ा उसका रोल है
1: जी।
0: फ्रिट्स बेनिविट्स भी वहां से ब्रेक ये नाटक करने के लिए आ रहे हैं, फलाना कोई और भी ब्रेक के ऊपर नाटक कर रहा है, कोई स्टैनिस्लावस्की पे कर रहा है, कोई चेखव का नाटक कर रहा है, कोई इब्सेन कर रहा है, कोई शाकुंतल कर रहा है, कोई भास का नाटक कर रहा है, कारण जी खुद हमारे साथ विद्या सुंदर नाटक किए जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। तो एक तरीके का ग्राइंडिंग जिसको कह सकते हैं, 3 साल में आपको एक ऐसे ग्राइंडर में डाल दिया है और आप उसके साथ घूमते जा रहे हो और देखते जा रहे हो और फिर आपको बाहर फेंक दिया गया, जाओ अब अपने तरीके का थिएटर देखो।
1: वाह,
0: तो ये मुझे लगा कि पढ़ने पढ़ाने का जो सिलसिला होता है वो वहां पर विजनरी डायरेक्टर, विजनरी फैकल्टी, विजनरी क्या कहते हैं नेशनल इंटरनेशनल थिएटर थिंकर और प्रैक्टिशनर के साथ जब मुकाबला होता है आपका, जो पीटर ब्रुक को आप पहले साल ही समझ रहे हो।
1: बड़ी बात है।
0: हाँ, सौभाग्य से उनका एम्प्टी स्पेस पहले ही पड़ा हुआ था, पीटर अच्छा। ब्रुक कौन है मालूम थे, तो उनके साथ आमना सामना होना और उनकी फिलॉसफी को और दोबारा उनके मुंह से सुनना, उन्होंने वो व्याख्यान दिए थे और जिसकी किताब छपी थी, उसके बाद उनकी जर्नी जो आगे बढ़ी है उसके बारे में समझना, महाभारत जो उन्होंने किया था उसका डॉक्यूमेंटेशन वो कर रहे थे उस समय, उसके लिए वो बार बार हिंदुस्तान आते थे। तो ये सारा का सारा मुझे लगता है कि जो आनंद का पढ़ाई लिखाई का माहौल होता है वो मुझे उस समय बहुत अच्छी तरीके से मिला और इसीलिए फिर हर तरीके का नाटक।
1: बिल्कुल।
0: आप छोटे सैयद बड़े सैयद जैसा नाटक हो रहा है, आप सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक जैसा नाटक रेपर्ट्री कर रही है, श्रीराम सेंटर की रेपर्ट्री क्या कहते हैं अंजी तेंदुलकर का कर रही है, घाशीराम कोतवाल कर रही, फलाना कर रही, ये तो मैंने कई सारे मराठी नाटक पहले हिंदी में देखे और फिर वापस महाराष्ट्र में आने के बाद फिर यहाँ मूल रूप में घाशीराम देखा, वो भी 7-8 साल के बाद
1: जी।
0: तब तक वो बंद हो चुका था, फिर वो 500 शो के लिए रिवाइव हो गया, वो देखने का मौका मिला यहाँ रविन्द्र नाट्य मंदिर में। तो ये सारा जो होता है मुझे लगता है कि आपको सैद्धांतिक पक्ष भी समझने की आवश्यकता है, प्रत्यक्ष रूपांतर कैसे होता है, प्रैक्टिकल में रूपांतर कैसे होता है, उसकी कड़ियों को जोड़ने, खुद के मन में जोड़ने की आदत हो जाती है, क्रिएटिव माइंड तभी पनपता है जब ये कड़ियां जोड़ने लगते हो। तो ये सोचना समझना कहां पर आज भारत का थिएटर है, कहां पर दुनिया का थिएटर है, मतलब जितना भी एक्सपोजर उससे आप ये संचित इकट्ठा करते हो, आप अपना एनालिसिस करते हो, पर मैंने ये तय किया था जो मुझे मिलेगा वो मैं सीखूं।
1: ये बहुत अद्भुत बात है कि
0: मुझे कोई ये रिजेक्ट नहीं करना है, ये मेरे काम का है कि नहीं है, मेरे काम का है कि नहीं, वो नहीं, जो मिलेगा वो खाना है,
1: वाह वाह,
0: बचाना है, बाद में देखेंगे खून में किसको रखना है और खून से बाहर किसको उतारना है।
1: वाह, यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।
2: ए भाई दर...

कभी छोटे कभी खड़े कभी छोटे कभी दुबले कभी मोटे कभी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है थोड़ा जो पैसा है थोड़ा जो किस्मत है कर कर नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है। बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है। ये भाई जरा देख के चलो आगे।

हजार है हप हप, खाता है कोड़ा भी रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है प्यार।

0: ये आलोकनाथ, नीना गुप्ता, सुरेश भारद्वाज, ये श्रीराम बड़े उसी बैच में थे जो पॉपुलर है उनमें से, तो यही है। उसके सेकंड बैच के बाद रत्ना पाठक शाह, दीपा सहाई, उसके बाद उस बैच के बहुत सारे लोग हैं, मतलब पूरे देश में। प्रांजल साई किया है, वहाँ आसाम में काम कर रहा है, वो सुपरस्टार है आसामी फिल्म के थिएटर के। उसके बाद मेरे बैच में बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैंने अनामिका अक्सर का नाम लिया, वीरेंद्र सक्सेना का नाम लिया, अशोक मिश्रा जिनको इतने सारे नेशनल अवार्ड मिले हैं फिल्म लिखने के लिए, और कटल उन्होंने लिखी
1: नेशनल अवार्ड विनिंग,
0: और उनके बेटे ने डायरेक्ट की हुई फिल्म है, वो क्लासमेट है। ब्रिज में होन व्यास है, उन्होंने बहुत सारी सीरियल्स लिखी है, वो हिमानी शिवपुरी है,
1: वाह,
0: जो मेरी क्लासमेट है, वो थिएटर और फिल्म और टेलीविजन तीनों मीडिया में काम कर रही है। हेमा सहाय, हेमा सिंह, हेमा सहाय जो रघुवीर सहाय की बेटी, वो दिल्ली में रेपर्टी के साथ काम कर रही थी, फिर एनएसडी में एक्टिंग पढ़ा रही थी, अभी मैं था तभी, अभी अभी रिटायर हो चुकी है। तो ये सारे हैं, सुंदरशी है वहाँ, एक पूर्णिमा साइकिया है आसाम में, गुलाम सरवर और बहारुद्दीन ये बांग्लादेश में है।

0: राजकिरण बम्मा है वो मॉरिशस में है, तो ये सारे भी अशोक भाटिया है जो यहाँ मुंबई में काम कर रहे हैं, जो चाणक्य में सेकंड लीड में काम करते हैं, तो ये सारे के सारे इतने अच्छे क्लासमेट्स मुझे लगता है हमारे थे कि जिनसे भी मुझे बहुत सारा सीखने को मिला। चिदंबरा राव जाम्बे हैं जो कर्नाटक में हैं, जिनको संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मिल चुका है। नीनासम थिएटर का वो प्राचार्य रहे कई साल तक, और हमारा जो एनएसडी का सेंटर था उसके भी वो डायरेक्टर रहे। तो ये इतने सारे, एक प्रताप सामल है, वो ये सब छोड़ के यूनियन में चला गया, वो भोपाल में स्थित है, वह था उड़ीसा का, पर वो अभी भी वो लिफ्ट ऑर्गेनाइजेशन का काम करता है, वो भोपाल में है। तो जो भी थे हमारे साथ, मुझे लगता है लगभग सारे उसमें से बहुत सारे लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सतह पर आए हुई बहुत सक्सेसफुल बैच में मुझे रहने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला उन लोगों से। मीपम उत्सल है करके एक हमारा क्लासमेट है, वो लद्दाख में है, तो लद्दाख कल्चरल एकेडमी का वो डायरेक्टर भी रहा है, और अभी वो अपनी तरीके से अपना ग्रुप चला के थिएटर वहां भी कर रहा है।
1: क्या एनएसडी में रहते हुए ये आपके जहन में आया कि अभिनय पीछे जाएगा और निर्देशन आगे आएगा?
0: मैं तो गया था एक्टर होने के लिए
1: जी,
0: पर धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि मेरा एक्टर तो ग्रो हो ही रहा है। मेरे सारे टीचर बहुत दुखी हो गए, उनको पता चला कि मैंने एक्टिंग से ज्यादा ऑप्ट आउट किया बाहर आने के बाद। सौभाग्य से मेरा कोर्स इंटीग्रेटेड था, मुझे एक्टिंग भी सीखना था, मुझे डायरेक्शन भी सीखना था, स्टेज क्राफ्ट भी सीखना था, स्क्रीन प्रिंटिंग भी सीखना था, फोटोग्राफी भी सीखना था, साउंड डिजाइन भी सीखना था। ये सौभाग्य से सब कुछ 3 साल में जितनी संभवता ट्रेनिंग की संभावनाएं थी वो सब सीखने का मौका मिला। आपको कारपेंट्री भी सीखना है, आपको कॉस्ट्यूम करना भी सीखना है, लाइटिंग भी सीखना है, इससे बड़ा मौका कुछ नहीं। क्योंकि कारण जी का ये कहना था कि भारत में अब स्पेशलाइज उस समय लोगों की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी जाके वो थिएटर करे और सबको अपने साथ लेके चले, ऐसे लोगों की भारतीय थिएटर को आवश्यकता, इसलिए उन्होंने स्पेशलाइजेशन से कोर्स इंटीग्रेटेड कर दिया। वो 2 या 3 ही बैच के साथ रहा, सौभाग्य से मैं उसमें से एक बैच का हूँ
1: जी।
0: तो मुझे पता चल रहा था कि मेरा एक्टर तो ग्रो हो रहा है, पर साथ साथ ये मेरा ऑब्जेक्टिव देखने का जो स्वभाव है चीजों को वो ज्यादा ग्रो हो रहा है, मेरे विजुअल्स ज्यादा ग्रो हो रहे हैं। ह्यूमन हैंडलिंग का तो मुझे अनुभव था ही
1: जी,
0: स्टूडेंट मूवमेंट की वजह से, और लीडरशिप जो भी छोटी मोटी थी उसका अनुभव तो था ही कि चलो एक 10-20 लोगों को इकट्ठा करके कुछ हंगामा करते हैं, ये वाला माहौल तो था। पर ये मेरे अंदर का क्रिएटिव डायरेक्टर या क्रिएटिव डायरेक्टर्स माइंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग कल्टिवेट हो रहा है। डायरेक्शन चुनने के 2 वजह है, एक्टर होता मैं बेहतर एक्टर तो जरूर हो जाता, पर एक्टर होना ये पैरासाइट करियर है, इसी के ऊपर निर्भर हो आप। कोई नाटक लिखेगा, सिनेमा लिखेगा, सिनेमा तो मेरे फ्रेम में ही नहीं था, पर वो नाटक लिखेगा, वो आपको उसमें रोल होगा, फिर वो आपको अप्रोच होगा, फिर वो कोई प्रोड्यूसर मिलेगा, उसके बाद नाटक। मैं जिस कारण से स्टूडेंट मूवमेंट और ये सारा छोड़ के गया था कि ताकि मुझे अपनी कहानियां, अपने नैरेटिव्स, अपनी बातें, अपनी विवंचना, आपके आनंद, सो किसी ना किसी की मुझे आवाज बनना था, मेरा नाटक कुछ बात कहे, वो केवल मनोरंजन ना करे, मनोरंजन तो करना ही है, पर मनोरंजन से आगे प्रबोधन और अंतर्मुख और अस्वस्थ बनाना आपको, ये मेरा काम है मेरे नाटक का, जो मैं निरंतर करते आया हूँ। आप जुलवा से देखिए, सैया भय कोतवाल से देखिए, उसके बाद जाने मन से देखिए, रणांगण देखिए, एक झुंझवारे से, जितने भी मैंने मराठी हिंदी में नाटक किए, अब जो लास्ट नाटक किया गजब तेरी अदा
1: जी,
0: या गजब किची आधा मराठी में
1: जी,
0: या मोहे पिया मध्यम व्यायोग जो है जी, इसका भास का नाटक, उसको भी मैंने आज के चश्मे से देखा है, हिडम्बा के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डायरेक्ट किया हुआ है। तो ये सारा का सारा जो है, मुझे लगा कि ये अगर करना है तो मुझे पैरासाइट करियर चुनना नहीं चाहिए। मेरे सामने ये कि मुझे एम्प्टी स्पेस है और 2 लाइट है और 2 एक्टर है, मैं अपनी बात कह दूंगा।
1: वाह वाह क्या बात।
0: तो यहाँ से मुझे वो भी मैंने सीखा, 300 लाइट इस्तेमाल करना, 3 मंजिला सेट लगाओ, क्योंकि आइडियल सिचुएशन में एनएसडी आपको नाटक पढ़ाता है। पर अंत में आते आते हमने अपने, तब वो डायरेक्टर थे बीएम शाह, कारण जी निकल गए थे भारत भवन के लिए, तो हमने उनको कहा कि अब हमने बहुत लग्जरी में नाटक करना तो बहुत सीखा, पर अब हमारे पास कोई रिसोर्सेस नहीं है और हमें नाटक करना है, वो भी सीख।
1: ये बात
0: कि मैं जाऊंगा भीड़ जाऊंगा तो वहाँ 2 फ्लड लगी हुई है,
1: उसी में करना है,
0: उसी में। जयदत्त सिरसागर कॉलेज के वो केशर भाई काकू के बेटे हैं, तो जब

0: इंजीनियरिंग कोर्स करके आए तो तुम हमें 3 अंक की नाटक कर रहे थे, तो वो आए एक दिन, बताया कि वो इंजीनियर है, तो हमने कहा कि हमको ऐसा ऐसा कुछ करवा के दोगे, तो उन्होंने डाल्डे के डिब्बे मंगवा के उसको ट्विस्ट ट्राइन करके उसको बड़ा बल्ब लगा के उसको लटका के हमको उन्होंने 2 या 3 फ्लड लाइट बनवा दिए।
1: गजब।
0: तो ऐसे स्थिति में भी हमारे यहाँ सारे के सारे मुंबई या दिल्ली में रहेंगे नहीं, हम अपने अपने गांव में भी जाएंगे, तो वहाँ नाटक करने के लिए भी हमको मिनिमम रिसोर्सेस में नाटक करना है। तो बोले क्या करना होगा, हमने कहा आप हमें नाटक करने का टाइम दो, हम एक्स्ट्रा काम करेंगे, हम में से हर कोई एक नाटक डायरेक्ट करेगा।
1: अच्छा।
0: हमने अपने 24-25 लोग थे तो 8-8 के इसमें हमने 3 ग्रुप बांट लिए और 8 ग्रुप में हम नाटक करेंगे, एक डायरेक्टर होगा, बाकी एक्टर होंगे, कोई डिजाइनर होगा और बाकी दूसरे जो 2 ग्रुप थे उसमें से हम एक दूसरे की मदद करेंगे। तो उस एक साल में हमने 22 नाटक किए।
1: अरे बाप रे।
0: जो हमारे मेन नाटक का हिस्सा नहीं है,
1: एक्स्ट्रा थे
0: ये। मैंने महेश एलकुंजवार जी का यातनागर हिंदी में किया,
1: बहुत इंटेंस नाटक
0: है, और वो जब मैं हैंडल कर रहा था तब मुझे लगा कि आई कैन हैंडल बेटर डायरेक्शन देन एक्टिंग।
1: ओके, ये वो पॉइंट,
0: ये अनुभव होता है ना आपको। और ये एक्टर ब्लॉक्ड हो गया, अब इसको क्या करना है, भले दूसरा डायरेक्ट कर रहा है तो सोल्यूशन आप देते हो, अरे इसको ना ऐसे करने से ना ये जो मेंटल ब्लॉक हो गया ना वो ब्लॉक टूटेगा, और वो जब करके देख रहा है तो आपकी आइडिया एग्जीक्यूट हो रही है। तो मुझे लगा कि नहीं है, मेरे पास लीडरशिप की क्वालिटी है और डायरेक्टर कैप्टन होता है तो उसके पास लीडरशिप तो होना जरूरी है। और कंफर्टेबल जोन में आप अपने टीम को कैसे ला सकते हो और उनसे काम कैसे निकलवा सकते हो, ये सारा मैंने फ्रिट्स बेनिविट्स, बीएम शाह, कारण जी, हबीब तनवीर जी, रतन थियाम जी, कावलम नारायण पनीकर जी, इनसे सीखा। मतलब वो फ्रिट्स बेनिविट्स एक नाटक करने आए थे हमारे साथ बैच के साथ, उन्होंने जानबूझकर ब्रेक्थ नहीं किया हमारे साथ, वो मास्टर थे ब्रेक्थ के, वो बर्नीनारा और थिएटर अंसाम्बल जो है, जो बड़ी रेपर्टरी है जिनने ब्रेक्थ को पूरे दुनिया में पॉपुलर किया, उसके वो डायरेक्टर थे। उन्होंने कहा एवरी टाइम आई कम एंड आई डायरेक्ट बर्टोल ब्रेक्थ, सो दिस टाइम आई वॉन्ट टू डायरेक्ट शेक्सपियर विद दिस बैच।
1: क्या बात,
0: हमने करिए। और वो ऐसा होता था कि रोटेशन में आपको काम मिलता था, एक्टिंग, डायरेक्शन या बाकी सारा जो काम है, तो 3 साल के रोटेशन में जिनको कोई काम नहीं मिला था, जैसे मतलब मिनिमम काम मिला था, तो हमारे अशोक मिश्रा, ब्रजमोहन व्यास, ऐसे सारे जो, उनको उन्होंने लीड रोल दिए।
1: वाह।
0: तो तब तक ये धारणा बन जाती है ना पहले दूसरे नाटक के बाद कि ये बड़ा अच्छा एक्टर है, ये बड़ा अच्छा एक्टर नहीं है वगैरह। उन्होंने उन सारे जिनको काम कम से कम मिला था उनसे वो इतना बेहतर नाटक निकलवाया। अनफॉर्चुनेटली आई वॉज असिस्टेंट डायरेक्टर, आई ऑप्टेड आउट, मुझे काम नहीं करना, मुझे आपके साथ या तो सेट डिजाइन करूंगा या आपका असिस्टेंट बन के रहूंगा। तो देखा कि हाउ ही हैंडल्स मिरेक्युलसली एक्टर, इतने सहजता से उनसे परफॉर्मेंस कैसे निकलवा रहे हैं ये डायरेक्टर, और दैट वाज द बेस्ट प्रोडक्शन ऑफ ऑल 3 इयर्स टाइम।
1: वाह वाह वाह, अद्भुत अनुभव।
0: और कोई सेट नहीं, कोई तामझाम नहीं, कुछ नहीं। तो एक एक्टर के मन में घुसकर उससे आप उस कैरेक्टर तक कैसी जर्नी करवाते हो और उसके जो अर्थ के, भाव के जो सच्चाई है, ट्रूथ जिसको कहते हैं, ट्रूथ इन एक्टिंग, उस ट्रूथ कर ले जाने की जो किमया है, वो जो जादू है, वो मैंने उनसे डायरेक्ट सीख ली और मुझे लगा कि क्या बात है, ओहो मजा आ गया। और उसके बाद एक्चुअली फिर मैंने सीरियसली लेगा आई शुड बी द डायरेक्टर।
1: ये पॉइंट जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट रहा एनएसडी में, जहां आपने अपनी एक दिशा,
0: मतलब 2-3 चीजें एक साथ हो गई कि एक रियलाइजेशन हो गया
1: जी,
0: दूसरा मेरा संस्कार था और तीसरा जिस बात के लिए मैं नाटक में आया था, मुझे अपनी बात कहनी है।
1: यस।
0: और मैं आज भी इतने सारे व्यावसायिक भी नाटक किए जहां मुझे अपनी बात नहीं कहनी थी, ऐसे कई सैकड़ों नाटक, कितने भी पैसे देने के लिए प्रोड्यूसर तैयार थे, मैंने आज तक एक भी ऐसा नाटक डायरेक्ट नहीं किया।
1: क्या बात है,
0: जो मुझे अंदर से नहीं लगा
1: जी। यहाँ एक गाना सुनते फिर आगे बहुत दिलचस्प सवाल।
0: बिल्कुल, दिल की बात।

0: वामन केंद्र जी, ये जो एनएसजी का पूरा आपने खाका खींचा के इस तरह की इंटेंस गतिविधियां, लेजेंड लोग, सिखाने वाले, साथी, सब एक तरह से भरपूर, जो किसी भी रंगमंच के प्रशिक्षु का सपना हो सकता है, वो आप जी रहे थे उस समय जब आप एनएसजी का कोर्स फिनिश कर रहे थे। केरल का रुख हो गया अचानक।
1: जी, वो इसलिए कि मेरा 3 साल पूरा हो गया
0: जी,
1: और मेरे सामने 2 चॉइस थे।
0: एक तो आपने कहा एक दिन पहले वापस लौटना है।
1: एक दिन पहले मैं वापस लौटा। फिर मुझे दिल्ली से फोन आ गया कि भाई आपका एज एन एक्टर अप्रेंटिसशिप मिलती थी
0: जी,
1: 8 लोगों को, 6 लोगों को एनएसडी रेपरेटरी के साथ 1 साल काम करने का मौका मिलता था और 2 लोगों को एक्सटेंशन प्रोग्राम में मौका मिलता था। तो मुझे बीएम शाह, जो हमारे तब के डायरेक्टर थे और बहुत आदरणीय शिक्षक भी रहे और बहुत अच्छे डायरेक्टर भी रहे अपने आप में और नाटक के भी बाहर, तो उनका मुझे मैसेज आया, चिट्ठी आई कि आपको तुरंत दिल्ली आना है, आपका रेपरेटरी में भी अप्रेंटिस के हैसियत से सिलेक्शन हो गया है और आपके लिए अगर आप एक्सटेंशन में जाना चाहते हो तो आपके लिए एक नया प्रोग्राम हम डिवाइस करना चाहते हैं।
0: वाह वाह, मतलब 2 अलग अलग रास्ते।
1: अलग, दोनों जगह मेरा सिलेक्शन हुआ है
0: जी,
1: और चॉइस मेरे ऊपर छोड़ा है। अब मैं दिल्ली पहुंचा तो उन्होंने मुझे बुलाया और ये सब एक्सप्लेन किया और बोले आपको रेपर्टरी में जाना है तो बिल्कुल जा सकते हो। और उस समय फॉर्चुनेटली फर्स्ट टाइम वो फेस्टिवल ऑफ इंडिया इंग्लैंड में हो रहा था
0: जी,
1: और वहां पर एनएसडी रेपर्टरी के 6 नाटक जा रहे थे परफॉर्म करने के लिए, जिसमें अलकाजी साहब के 2 नाटक, तुगलक भी था और बहुत सारे 5-6 नाटक थे। और वो केवल इंग्लैंड नहीं है, पोलैंड भी जाएंगे और 6 यूरोप कंट्रीज का टूर लगा हुआ है आपके सामने टेम्पटेशन के लिए। मैंने कहा दूसरा क्या है? आपने कहा कि वी आर डिराइविंग समथिंग, तो बोले आपके लिए हम फेलोशिप देना चाह रहे हैं। तो किस बात की? बोले ड्रामा स्कूल, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और ड्रामा स्कूल त्रिचूर, वहाँ के जो डायरेक्टर थे तब डॉक्टर जी शंकर पिल्ले
0: जी,
1: प्ले राइट एंड नॉवेलिस्ट और बहुत अच्छे टीचर भी, तो उन्होंने कहा कि वो उनके साथ मिलकर हम एक नया पायलट प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे हैं रिसर्च के लिए और उसका एम होगा टू फाइंड आउट इंडियननेस इन इंडियन थिएटर।
0: अरे गजब।
1: और हमने सब देख लिया है कि यू आर एन आइडियल स्टूडेंट और फेलो फॉर दैट, आप ही ये कर सकते हो और एक सिद्ध कर सकते हो कि वो किस तरीके का रिसर्च किया जा सकता है। तो बोले आपके साथ एक और स्टूडेंट को हम सेलेक्ट करेंगे एनएसडी के आप ही के क्लास में से, और वहां के 2-3 स्टूडेंट आपके साथ रहेंगे जो दे विल हेल्प यू एंड दे मे ऑल्सो डू द सेम टाइप ऑफ रिसर्च। तो बोलो आप कहाँ जाना है आपको? तो मैंने कहा मुझे 12 घंटा दीजिए।
0: अच्छा, एक तरफ इंग्लैंड की चमक दमक,
1: एक तरफ इंटरनेशनल। तो रात में मैंने सोचा कि एक तरफ मैं, मुझे लीड रोल तो कोई देगा नहीं 6 देश में जाने के लिए, पकड़ना तो भाला ही होगा किसी या एक या 2 डायलॉग की एंट्री का। ऑब्वियस है, इतने सारे बड़े बड़े एक्टर हैं, जहाँ पर पंकज कपूर जी है, जहाँ पर गोविंद नामदेव है, जहाँ पर आनंद देसाई है, ये सारे के सारे राजेश विवेक जी है, कौन नहीं है, के रैना है, रघुवीर यादव जी है, ये सारे एक्टर है, डॉली आलूवालिया है, इनके सामने उत्तरा भावकर है, सुरेखा सीकरी है, मनोहर सिंह खुद है,
0: बाप रे।
1: तो ये सारा इतना, मतलब जो हमारे आइकॉनिक एक्टर्स थे, तो हाँ उनके साथ रहकर सीखने का मौका तो जरूर था उसमें। तो हिमानी शिवपुरी ऑप्टेड दैट, तो वो हेमा ये सब चले गए वहाँ। तो मैंने कहा मुझे 12 घंटा दीजिए, और मैं दूसरे दिन जाके बोला मैं केरल जाऊंगा, केरल में ही जाना था। तो बोले क्यों? मैंने कहा मैंने सोचा सर, क्योंकि ये तो मैं 5-6 देश जाके सीखूंगा तो डेफिनेटली वहां का थिएटर देखने का मौका मिलेगा, इंस्टीट्यूशंस वगैरह सब देखूंगा, पर मुझे गुजरात नहीं मालूम है, मुझे ढंग से कर्नाटक नहीं मालूम है, मुझे ढंग से बंगाल

0: नहीं मालूम है ढंग से, यूपी राजस्थान उत्तराखंड कुछ नहीं मालूम है मुझे, मुझे अपना देश ही नहीं मालूम है तो मैं बाहर का देश को क्यों समझूं?
1: गजब।
0: मैंने कहा मुझे पहले एक मौका मिल रहा है कि मुझे अपने ही देश को समझने का मौका मिल रहा है, और वो भी केरल जैसा जहाँ पर पूरा द्रविड डोमिनेशन है कल्चर में। तो ये आर्य कल्चर से तो मैं हूँ, लेकिन मुझे द्रविड कल्चर का एक्सपोजर नहीं है, तो मैं वहां जाना चाहूंगा, और वो भी रिचुअलिस्टिक थिएटर फॉर्म से आपको ये सब्जेक्ट के क्या कहते हैं आत्मा तक पहुंचना है, भारतीय नाटक में भारतीयता। तो मैंने कहा इससे बेहतर चांस तो कुछ हो नहीं सकता। मैंने कहा मुझे रेपर्टी नहीं जाना है, मुझे केरल जाना है, और मेरा टिकट कर दिया और मैं सीधा केरल पहुंच गया। और वहां जाने के बाद जो दो साल मैंने बिताया वहां, वो इतना हिप्नोटिक था
1: जी,
0: वो 35-35, 40-40 फुट के हेडगेयर आप देख रहे हो,
1: हाँ,
0: उसके बाद इतने बड़े बड़े कॉस्ट्यूम देख रहे हो, प्रिमिटिव कलर से इतनी ब्यूटी क्रिएट की जा रही है, 100-100 चंडे बज रहे हैं, वो इतनी धारदार हथियार लेके वो उर्मी और ये मार्शल आर्ट कलरी पाइटू सब उसमें सम्मिलित है। तो वो देखने के बाद तो एक पहले दिन तो मैं 6 घंटा उसी को देखते ही रह गया
1: जी,
0: खाना पीना सब भूल गया, क्योंकि वो अप्लाइड थिएटर है।
1: हाँ।
0: वो रिचुअल को पॉपुलर करने के लिए थिएटर का यूज किया है। तैयम का मतलब होता है दैवम।
1: अच्छा।
0: दैवम मतलब देव
1: जी,
0: उसका वो मलयाली करप्ट प्रोनंसिएशन है, गलत, मतलब जो मलयाली के हिसाब से ठीक है
1: जी जी जी,
0: पर वो प्रोनंसिएशन है तैयम। तैयम का मतलब है देव।
1: देव
0: जो परफॉर्म कर रहा है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो देव बनकर आपके सामने नाच रहा है।
1: क्या अनुभूति है, वाह।
0: मतलब वहाँ कोई जो एक्टर है पीछे, उसकी आइडेंटिटी खत्म की जाती है मेकअप से, कॉस्ट्यूम से, और पता ही नहीं चलता
1: कि कौन
0: यूनुस जी परफॉर्म कर रहे हैं या वामन केंद्रे कर रहे हैं और कोई है। उसका एक एक मेकअप करने के लिए 4-4, 5-5 घंटा लगता है, उसकी आइडेंटिटी खत्म करने के लिए। और वो सारा का सारा जो करने वाले लोग है वो गांव के कम्युनिटी के सबसे निचले स्तर के लोग है। उसको एक दिन भगवान बनने का मौका मिल रहा है, पूरी जिंदगी दांव पे लगाने के लिए तैयार है।
1: वाह, यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।
0: क्या बात है।

0: इतना बड़ा वो कॉस्ट्यूम, मतलब कोई भी अगर ये इलेक्ट्रिसिटी के तार है तो उसके नीचे से जर्नी हो नहीं सकती।
1: इतना बड़ा है वो,
0: इतना ऊंचा है और कुछ कुछ राउंड है, कुछ कुछ जो वॉरियर्स है वो और स्लीक है, उसके हाथ में वो जो लपलपाती तलवार होती है दूधारी, दोनों धाराएं काम करती है, ऐसे दो दो तलवार से वो लड़ता है, दिखाता है उसका सब कौशल। तो वो सब करने के लिए उसका प्यूरिफिकेशन होता है तीन तीन महीना, जैसे हमारे रामनगर में या रामलीला में होता है, वो बच्चे सेलेक्ट करते हैं तो उनका प्यूरिफिकेशन होता है, उसी तरीके से इस आदमी का भी प्यूरिफिकेशन होता है। वो दिसंबर से मई के बीच में तैयम होता है, तो तीन महीना पहले उसको अपने औरत के साथ से दूर रहना है, उसको ये नहीं खाना है, उसको ये खाना है, उतनी इतनी बार नहाना है, वगैरह वगैरह वगैरह जो भी उनकी रिचुअल्स है। और जब वो पूरा गांव उसके सामने नतमस्तक होता है, अब मान लो मैं एक उदाहरण देता हूँ, ती चामुंडी, ती का मतलब होता है फायर, आग, उसकी देवता। अब जैसे हमारे यहाँ होली होती है, बड़े बड़े ट्रक के ट्रक लकड़ियां वहां लाई जाती हैं और जो मंदिर का परिसर है उसको कावो बोलते हैं, तो वो बहुत बड़ा होता है कावो, वो मंदिर छोटा है क्योंकि वो गांव का मंदिर है, पर उसके आंगन में और वहां पर जो कठड़ा होता है, जो बैरिकेड वाली दीवारें होती, उसी के साथ बैठने की व्यवस्था है, काइंड ऑफ ऑडिटोरियम। और वो आग जलाई जाती है ती चामुंडी में, और रात भर वो आग जलने के बाद जब जलते कोयले में वो मेकअप कॉस्ट्यूम पहन के उसको 32 बार पेट पे जंप करना है,
1: अरे और
0: 32 बार पीठ के बल जंप करना है। वो जो नारियल के कॉस्ट्यूम बनाए जाते हैं नारियल के पत्तों से जलकर, जिसको बोलते हैं ना हम, जो खराटा हो जाना मराठी में बोलते हैं, वो जल के राख हो जाते हैं, ऐसा काम जो करता है। और वो देखने के लिए हजारों की तादाद में ऑडियंस है वहाँ, जो वो परफॉर्मेंस देखने नहीं आए, वो भगवान को देखने आए,
1: आस्था है,
0: आस्था है उसके पीछे, इसीलिए वो एक काइंड ऑफ थैंक्स गिविंग फेस्टिवल है
1: जी।
0: जैसे अमेरिका में थैंक्स गिविंग है, तो भाई इतना सारा इस साल क्या धान आ गया, नारियल आ गया, फल आ गया, फूल आ गया, ये भगवान को ऑफर वापस करना तेरे हिस्से का, उसको धन्यवाद करने के लिए तैयम वो भगवान निकलता है।
1: अच्छा,
0: सो नोबडी परफॉर्म्स दैट, इट इज बिलीव्ड दैट दैट पर्सन इज गॉड हिमसेल्फ।
1: वाह,
0: अब ये सब देखने के बाद ऐसा लगा कि ये बनने के लिए पूरी कम्युनिटी वही करती है, दो तीन कम्युनिटी है जो वहाँ का वंचित कम्युनिटी है, दलित कम्युनिटी से ये लोग काम करते हैं। तो मैंने ऐसे ती चामुंडी करने वाले कुछ कलाकारों को मिला, क्योंकि सबसे ज्यादा स्किलफुल वही है, तो 40-42 साल में वो सारे खटिया पे पड़े हैं अपने अपने गांव में, जल जाता है
1: जी, जी, जी।
0: अंदर कितना जलता है किसको नहीं मालूम, वो सारे टीबी के इन्फेक्शन से पड़े हुए लोग हैं, उनके इंटरव्यू किए मैंने, और कोई एक पेपर में तब मैंने एक आर्टिकल लिखा था गॉड ऑन फायर। तो ये सब देखने के बाद आपको वो सब समझ में आता है, जो इंडियननेस को हम ढूंढ रहे हैं वो कहाँ कहाँ है, कलर्स में है, साइज में है, शेप्स में है, आकारों में है, अनुभूति में है, वाद्यों में है, माहौल में है, और कुल मिलाकर आपको वो, मुझे लगता ही नहीं था ये मेरा माहौल है, मुझे लगता था ये मेरा है, पर मैंने कभी इसका अनुभव नहीं किया
1: जी।
0: कि वो द्रविड़ी कल्चर का पूरा गढ़ है, ये चार राज्यों ने मुझे लगता है कि एक भारत की बहुत अलग अस्मिता को आज तक जिंदा बनाए रखा हुआ, एंड आई एम कॉम्बिनेशन ऑफ दैट एक्सपोजर एंड नॉर्थ इंडियन एक्सपोजर,
1: एक संगम हो रहा है।
0: तो मेरे नाटकों में अगर आपको कुछ अलग दिखता है तो ऊर्जा वहां की, विजुअल्स वहां के, नो इमिटेशन, इट इज इवॉल्व्ड थिंग
1: जी।
0: मुझे कभी भी ये मोह नहीं हुआ, क्योंकि जब मैं नाटक में डायरेक्टर बनना चाहता था तो मेरे सामने मेरी फिलोसफी क्या होगी, मैं कौन से फिलोसफी के नाटक करूंगा, मतलब जिसको हम रंग भाषा बोलते हैं नाटक की भाषा में, वो कौन से करूंगा। वो सारा रिसर्च खत्म होने के बाद जब मैं वापस आया तो मेरे सामने ये सवाल था, लोक शैलियों में हमने चाहे भवाई में किया, तमाशा में किया, रामलीला में किया, रासलीला में किया, यक्षगान में किया, नौटंकी में किया या नाच में किया, सब हो गया। उसमें तो हमारे दो जो महाकाव्य है, रामायण है या महाभारत है, वो तो फिट हो ही जाते हैं। हमारी जो दंत कथाएं हैं, लोक कथाएं हैं, जो भी है,

0: वो सारी फिट हो जाती है। आप चरणदास चोर को कर सकते हो उसमें, क्योंकि वो भी एक कथा है, दंत कथा, ये जो भी कथा है। तो मेरे सामने सवाल था कि मैं हबीब साहब की तरह नाटक करूंगा, मैं कावालम नारायण पनीकर की तरह नाटक करूंगा, मैं जब्बार पटेल की तरह नाटक करूंगा, मैं विजया मेहता की तरह नाटक करूंगा, शांता गांधी की तरह नाटक करूंगा, या प्रसन्ना की तरह नाटक करूंगा, किसकी तरह का नाटक करूंगा। मैंने पहले तय किया कि मुझे किसी भी तरीके का नाटक नहीं करना है। वो रतन थियम मेरे बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग डायरेक्टर रहे, उनका भी मैंने कुछ नहीं लिया, लेना ही नहीं, क्योंकि तब तक ये था कि चलो कव्वाली एक फोक फॉर्म पे बेस्ड नाटक किया, या इस फॉर्म से लिया, उस फॉर्म से लिया, इसको हम कहते हैं कि गुलदस्ता बना के भी नाटक करके देखे। मेरे सामने एक सवाल था, मैं जिस मोमेंट से आया हूं, जिसकी आवाज मुझे बनना है, उसकी बर्निंग समस्या जो है, आज की जो समस्या है, ज्वलंत समस्या है, उसको मुझे उठाना है। और ये मैंने जो देखा है, बचपन से भी देखा है, रिसर्च भी किया है, मॉडर्न थिएटर और नेशनल इंटरनेशनल थिएटर का एजुकेशन भी लिया है, अब ये सब अगर वो मुझे मेरी कहानी कहने के लिए उपयोग में आता है तो मैं इसके शरण जाऊंगा।
1: वाह वाह वाह।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने रंगकर्मी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का दूसरा भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग मनीषा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

ये धड़कनों का कारवां जो कभी किसी के नाम से तेज हो जाता है, बहकने लगते हैं कदम, प्यार में किसी से मिलने की रितुए भी इन वादियों में कई महकते हुए गुल खिला देती हैं, जिनकी रंगत किसी के हुस्न की मिसाल बनकर तन मन को उमंग से भर देती है और दिल गा उठता है।

मन की तरंगे किसी के इंतजार में बेकरार हो राह निहारने लग जाती हैं। बहारों की खुशबू सांसों में घुलकर मिलन की आस जगा देती है। उनकी यादों की कसक दिल के आईने में एक अक्स उभारने लग जाती है। ऐसा लगता है ये वक्त यही थम जाए, अपने प्यार का इजहार दिल खोल के उसके सामने कुछ यूं कर दूं।

अंतराल के बाद छाया गीत में आप और हम आ गए हैं साथ साथ। पेश है मोहब्बत भरे दिलों की दास्तां। ये इजहारे मोहब्बत भी खूब रंग लाया, मेरे दिल की सदा उनके दिल की सदा बन गई। वो पहलू में आए और यूं बैठ गए जैसे चांद के पास चांदनी रहती है। उनका वो साथ, गर्म सांसों का एहसास, फिर ओठों पे उनके थिरकते गीतों की फुहार इस मुलाकात को और भी रोशन कर उठी। बस दिल की ना पूछिए, वो तो चुपके चुपके आहें भरने लगा।

कौन रोक सकता है दिल को जब नजरों से नजरें मिलती हैं, बिना कहे ही सारी बात हो जाती है। मोहब्बत के सफर पे चल पड़ते हैं जब दो दिल, तो ढूंढते हैं मंजिल एक होने की। महफिल में हो या खुली वादियों में, अपने प्यार का इजहार करने को बेताब रहती है दिल की धड़कनें। और जब मौसम हो इश्क का, तो कहने ही क्या, वो अपनी रूहानी रंगत में दिलों को रंग देता है, और खामोशी बहुत कुछ बयां कर जाती है।

लेकिन खामोशी बहुत देर तक कहाँ खामोश रह पाती है। जब बात आशिकों के दिलों की हो तो जुबां बोल पड़ती है, और हम सफर बनने तक के सफर में कई वादे कस्में दिल कर ही बैठता है। तभी तो एक दूसरे के मोहब्बत पर चाहत पर यकीन करने को दिल मचल उठता है। तभी तो ये गीत होठों पर खुद ब खुद सज उठता है।

कहीं ना कहीं इन गीतों ने आपके दिल को छुआ तो होगा, आपकी यादों ने दस्तक भी दी होगी। फिलहाल मुझे इस सफर से विदा लेनी होगी। प्यार भरे नमस्कार के साथ मंत्री वर्मा को अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, तराने नए पुराने कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

कार्यक्रम तराने नए पुराने में आप सभी का स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गाने के साथ।

0: बाहू वाली एक लड़की।
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
0: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
0: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
0: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई,
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
0: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के।
0: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
2: जैसे तो है पास मेरे, तेरे पास मैं।
0: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे,

0: संस्कृति मूल्यबोध एवं परंपरार एकनिष्ठ प्रवक्ता आकाशवाणी
1: बड़ बहू एटा तुम नारे
2: एते जल्दी कौन पाई
1: अरे आउ सान बहू एटा तुम नारे आउ एटा मो कोंढेरा नारे
2: किंतु जेजे मां तुम नारे
3: सब किछि मो बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब थिरे यांको हित नमनी रखिछि काली को जेबे मु नथिबी सेतबेले यांको टंका मिलिबा सहज हेबो
1: शुभ शुभ कुह कौन
4: आरबीआई कहे
1: सचेतन हुवंतु सतर्क रुहंतु।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: नाम होचे गौतम सावत, ग्राम हतापुर, पंचायत रणशाली, ब्लॉक पुरस्तमपुर, जिला गंजा। मु प्रधानमंत्री फसल बीमा करिथिबा जोगु आर्थिक 85,000 टंका सहायता पाइली। प्रत्येक चाषी भाई भौणीनकु अनुरोध, समस्ते प्रधानमंत्री फसल बीमा करन्तु।
2: खरीफ फसल बीमा पाई शीघ्र पंजीकरण करन्तु।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जनसेवा केन्द्र CSC को जोगाजोग करन्तु।
2: फसल बीमा संबंधी सूचना पाई हेल्पलाइन नंबर 1444 को कॉल करन्तु।

0: दिल्ली से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र से नवाचार की वैश्विक छवि बनाने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया, देश में स्वाइन फ्लू का कोई नया स्ट्रेन नहीं है। आश्वासन दिया, वर्तमान टीके प्रभावी बने हुए हैं। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक, खेल में सहयोग, समावेशिता और आपसी सम्मान को मजबूत करने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाने के साथ संपन्न हुई। ईस्ट बंगाल ने मोहन बागान को 4-1 से हराकर रिकॉर्ड 17वीं बार डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता जीती। और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीतना जरूरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: दुनिया अब भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है तो हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। स्पेसटेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस बीच राष्ट्र आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। ये दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्पेस साइंस की इस विधा को प्राइवेटाइजेशन करके भारत के लिए अपार संभावनाओं का द्वार सज्जित किया गया और जिस तरह की क्षमता प्रोफेसर साराभाई से लेकर के आज तक भारत के महान वैज्ञानिकों ने जिस तरह का मुकाम हासिल किया है, भारत जो आज एक मजबूत स्थिति में इस क्षेत्र में खड़ा है, आने वाले समय में विश्व का अग्रणी और लीडरशिप स्टेटस को प्राप्त करेगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध पोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की

0: लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इंडिजिनस स्वदेशी हथियार प्रणालियों की क्षमता को भी देखा है और आगे भी रक्षा मंत्रालय के साथ हमारे लैब, हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और प्राइवेट स्टेक होल्डर्स मिलकर अपनी सेनाओं को इंडिजिनस प्लेटफॉर्म से लैस करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और हमने ये साबित किया है कि आत्मनिर्भरता ये हमारी केवल पॉलिसी नहीं है, आत्मनिर्भरता बैटलफील्ड कैपेबिलिटी का एक मल्टीप्लायर है और इस पहल में जीआरसी तथा यंत्र इंडिया लिमिटेड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, ये वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। परिषद के अनुसार H1N1 समेत मौसमी इन्फ्लुएंजा अत्यधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न शामिल है तथा अधिकतर लोग उचित देखभाल और विश्राम के बाद इससे उबर जाते हैं। परिषद ने कहा कि छोटे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति को इसकी इन्फ्लुएंजा से जटिलताएं आ सकती हैं। यदि ये लक्षण गंभीर हों तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक का समापन आज ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार करने के साथ हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।
2: बैठक का मुख्य परिणाम खेल विज्ञान, AI, डिजिटल बदलाव और एथलीटों के प्रदर्शन में सहयोग बढ़ाने के लिए खेल प्रौद्योगिकी पर ब्रिक्स कार्य समूह का गठन करने का प्रस्ताव है। भारत के ब्रिक्स खेल विनिर्माण सम्मेलन के प्रस्ताव को व्यापक समर्थन मिला है। पहला इस वर्ष नवंबर में उदयपुर में किए जाने वाला प्रस्ताव है। इससे विनिर्माताओं, निवेशकों, प्रौद्योगिकी कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों को विशेषज्ञता साझा करके नवाचार को बढ़ावा देने का मंच उपलब्ध होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण पहल ब्रिक्स पारंपरिक और स्वदेशी खेल है जो अक्टूबर में अहमदाबाद में होंगे। इनसे ब्रिक्स देशों की समृद्ध खेल विरासत प्रदर्शित होगी और सांस्कृतिक तथा लोगों के आपसी संबंध सुदृढ़ होंगे। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ऐसे ब्रिक्स खेल साझेदारी करने की अपील की जो केवल घोषणाओं तक सीमित न रहकर खिलाड़ियों और कोचों के आदान प्रदान, संयुक्त प्रतिस्पर्धाओं और ज्ञान साझाकरण के जरिए व्यवहारिक सहयोग के लिए हो। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की सफल बैठक से ब्रिक्स देशों के बीच स्थायी खेल सहयोग का आधार तैयार हुआ है। विशाखापट्टनम से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना।
0: केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने और देश की समृद्ध विरासत को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने में कला और संस्कृति के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में कला तरंगिणी दिल्ली कला महोत्सव में श्री सोनोवाल ने कहा कि महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव की रचना पारिजात हरण अंकीय नाट प्रस्तुत करने के लिए देश भर के कलाकार श्रद्धापूर्वक एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कहा कि श्रीमंत शंकरदेव ने कला, संस्कृति, नृत्य और संगीत के माध्यम से समाज में सांस्कृतिक मूल्यों को लाने के लिए अनेक प्रयास किए।
3: महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने भारत में एक संस्कार लाने के लिए जो भी उन्होंने कदम उठाई है, कला संस्कृति की द्वारा, नृत्य गीत की द्वारा, इसकी वजह से आज हम 21वीं शताब्दी में दुनिया में अपना मर्यादा पूर्वक परिचय बनाने में हम सफल हुई है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से अपील की है कि वो महिला आरक्षण विधेयक पर राजनीति छोड़े और संसद में इसका समर्थन करे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस महिलाओं के समर्थन की केवल बात करती है। उन्होंने इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की है।
4: देश भर में महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, देश की संसद में वो संसद का गौरव बढ़ाएं, ऐसा प्रस्ताव, ऐसा कानून पारित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से ये अपील की है कि वो त्वरित रूप से महिला आरक्षण का ये संकल्प देश भर में लागू करने के लिए सहयोग करें।
0: राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कल्ट्स एजुकेशन ने अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर

0: क्लाउड तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 1.5 लाख से अधिक लोगों को एआई और क्लाउड साक्षरता के बारे में आधारभूत जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके अलावा 10,000 भागीदारों को रोजगार योग्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि इस पहल में विकसित भारत का विजन परिलक्षित होता है। उन्होंने कहा कि भारत नवाचार, तकनीक और प्रतिभा का वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा के लिए मॉस्को पहुंच चुके हैं। वे रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिन का ये सम्मेलन भौतिक और आभासी दोनों माध्यमों से संयुक्त रूप में आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक एमएल जाट ने आज कहा कि फसल सुधार, कृषि विकास तथा नीति निर्धारण प्रक्रिया के लिए राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो का मृदा डेटाबेस और सूचना प्रणाली तथा भूमि उपयोग नियोजन महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देश की प्राथमिकताओं और परिवर्तित आवश्यकताओं के अनुरूप ये संस्थान सही दिशा में प्रगति कर रहा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने गंगा नदी के संरक्षण से संबंधित नियमों में हाल ही में किए गए बदलाव पर एक याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक पीठ ने इस महीने की शुरुआत में जारी की गई एक अधिसूचना पर संज्ञान लिया है। अधिसूचना में कथित तौर पर गंगा नदी को इसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में निर्माण निषेध क्षेत्र हटा दिया है। अधिकरण का मानना है कि बदलाव वर्तमान पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन है। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं शक्ति सिंह।
1: ईस्ट बंगाल एफसी ने 135वां ड्यूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। ईस्ट बंगाल ने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेले गए फाइनल में मोहन बगान सुपर जायंट्स को 4-1 से हराकर रिकॉर्ड बराबरी करते हुए 17वीं बार ड्यूरेंट कप जीता। ईस्ट बंगाल के एडमंड लाल रिंदिका ने पहले हाफ में शानदार हैट्रिक लगाकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उधर महिला हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 बजे भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। नीदरलैंड्स 6 अंकों के साथ पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। चीन के 2 अंक हैं जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के 1-1 अंक हैं। और क्रिकेट में कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 5 विकेट पर 300 रन बनाए। देवदत्त पड्डीकल ने 117 रन, शुभमन गिल ने 50 और यशस्वी जायसवाल ने 45 रन की पारी खेली। भारत पहला टेस्ट जीतकर फिलहाल श्रृंखला में 1-0 से आगे है।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 2 से 3 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र से नवाचार की वैश्विक छवि बनाने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया, देश में स्वाइन फ्लू का कोई नया स्ट्रेन नहीं है। आश्वासन दिया, वर्तमान टीके प्रभावी बने हुए हैं। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक, खेलों में सहयोग, समावेशिता और आपसी सम्मान को मजबूत करने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाने के साथ संपन्न हुई। और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीतना जरूरी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को बारूद में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझे वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों की, 16 अगस्त से 6 सितंबर, हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम के अंत में सुनिए पूर्णिमा और उदित नारायण की आवाजों में सातवां आसमान फिल्म का गाना, इसे लिखा है सूरज सानिम ने, संगीत राम लक्ष्मण का है।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, पर या तो बिल्कुल बागी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने उसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हुई, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।
2: आज के फनकार।

विशेष प्रोग्राम आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है अपने जमाने की मशहूर मारूफ अदाकारा सायरा बानो पर।

जी हाँ दोस्तों, कमसीन तो वो थी ही और है भी। इसी मारूफ कमसीनियत की बदौलत उन्हें कई फिल्मों का ऑफर मिला। सारा बानो की माता जी उस जमाने की जानी मानी अभिनेत्री थी नसीम बानो। उनके पिता प्रोड्यूसर थे एहसान उल हक साहब। उनकी दादी भी नामचीन थी छमिया बाई, जो कि शमशाद बेगम ऑफ दिल्ली के नाम से मशहूर थी। उत्तर प्रदेश के हसनपुर से ये परिवार था। सायरा बानो को अदाकारी जैसे विरासत में ही मिली थी। पहली ही फिल्म जंगली में उन्हें काफी सराहना मिली और फिल्म फेयर के बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड का नॉमिनेशन भी मिला।

जंगली के कहानीकार और संवाद लेखक थे मशहूर उर्दू राइटर आगा जानी कश्मीरी। लंदन से तालीम याफ्ता सायरा बानो को उर्दू की डायलॉग डिलीवरी की सलाहियत आगा जानी कश्मीरी ने ही सिखाई, वो उनके लिए काफी मददगार साबित हुई। शम्मी कपूर के साथ उनकी पहली फिल्म जो जंगली बनी, इसके बाद उन्हें काफी मकबूलियत हासिल हुई। इसी वजह से वो उस जमाने की लव स्टोरीज की जैसे रोमांटिक हीरोइन बन गई।

दोस्तों उस जमाने के चार्मिंग चॉकलेट हीरो जुबली कुमार राजेंद्र कुमार के साथ उनकी 1964 में आई थी फिल्म आई मिलन की बेला और इसके बाद झुक गया आसमान।

0: जमाने के रोमांटिक हीरो विश्वजीत के साथ भी उनकी एक फिल्म आई थी जिसका नाम था अप्रैल फूल।
1: पहली नजर क्या असर कर

0: दोस्तों सायरा बानो जो 1966 तक एक एस्टैब्लिश्ड अदाकारा बन चुकी थी, उनके शादी के लिए किसी नवाब शहंशाह बादशाह सी आन बान वाला राजकुमार उनकी नजरों में रहा होगा और वो ख्वाब जो उन्होंने देखा होगा सच हुआ जब उनकी शादी मुगल आजम के शहजादा सलीम यानी दिलीप कुमार अर्थात यूसुफ खान साहब के साथ तय हुई और 11 अक्टूबर 1966 में उनका निकाह हुआ।
1: अरे गोपी क्यों ठाकुर के पैसों का नाश करते हो? हम जो हैं दोनों उत्तम कलाकार, भूल गए?
2: अरे मुझे तो ध्यान ही नहीं आया, उस दिन की तरह मिलजुल के जमा देंगे प्रोग्राम। काली भी पिट जाएगी और ठाकुर का पैसा भी पिट जाएगा। चलो

0: प्यार मोहब्बत क्या समझाए इसको राम और शाम के तेरी मेरी नई निभनी के तेरी मेरी नई निभनी नई नई के तेरी मेरी नई निभनी।
1: इसी दौरान उन्होंने राजेंद्र कुमार अभिनीत फिल्म अमन में एक रोमांटिक रोल किया और उनके चाहने वालों को ये संदेश भी दिया कि शादी के बाद वो फिल्मों में काम करना बंद नहीं करेगी।

0: Maybe it'll go some town.
1: दोस्तों, फिल्म पड़ोसन जो 1968 में आई थी, सायरा बानो के लिए उनके करियर की एक जबरदस्त मोड़ देने वाली फिल्म थी। इस फिल्म के सक्सेस ने उन्हें उस दौर की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में एक ऊंचा मुकाम हासिल किया। इस फिल्म के सक्सेस ने उन्हें दिलाया उस दौर की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में एक ऊंचा मुकाम।

1968 में उनकी एक फिल्म आई दीवाना, जिसमें उनके साथ दीवाना के मुख्य किरदार में थे राज कपूर। महेश कौल निर्देशित इस फिल्म का संगीत शंकर जयकिशन का था और बड़ा ही कर्णप्रिय और लोकप्रिय बन पड़ा था। दोस्तों, दिलीप कुमार के साथ उनकी 3 फिल्में आई हैं, सगीना, बैराग और गोपी। इसमें सिर्फ गोपी को ही कमर्शियल सक्सेस मिली थी।

नवीन निश्चल के साथ भी दो हिट फिल्में उन्होंने दी, पहली थी पैसे की गुड़िया और दूसरी विक्टोरिया नंबर 203।

देवेंद्र के साथ उनकी कुल 6 फिल्में आई थी, आदमी और इंसान, रेशम की डोरी, पॉकेट मार, इंटरनेशनल। उन्नीस सौ 74 में उन्होंने विनोद खन्ना अभिनीत

सुनील दत्त के साथ एक और सफल फिल्म उनकी आई थी नहले पे दहला। और जैसा कि आप जानते हैं उनकी सुनील दत्त साहब के साथ पहली फिल्म थी पड़ोसन। दिलीप कुमार अभिनीत फिल्म दुनिया में जो आई थी 1984 में उन्होंने एक छोटा सा रोल किया था। दोस्तों उनकी आखिरी रिलीज फिल्म थी फैसला। इस फिल्म में उनके हीरो थे विनोद मेहरा। हालांकि फिल्म 1976 में पूरी हो चुकी थी पर यह फिल्म रिलीज हुई थी 1988 में। दोस्तों सायरा बानो एक सफल अभिनेत्री रही हैं और साथ ही साथ एक जिम्मेदार पत्नी का रोल भी वो बखूबी निभा रही हैं। तो आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था अपने जमाने की मशहूर और मारूफ अदाकारा सायरा बानो पर।

0: शोध आलेख और स्वर अशोक सोनावड़े का, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कुमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है।
2: आकाशवाणी बारिपद स्टूडियो घर समय वर्तमान राति 10:00 प्रचार करुचु लोकसंगीत कार्यक्रम पाला। आज विषय रही काचर संजीवनी मंत्र शिक्षा परिवेशन कर शिल्पी सुभाष चंद्र पंडा एवं साथी कलाकार माने।
3: ओम श्रीमन सत्यनारायण महाप्रभु को प्रीति अर्थ आनंद सागर एक बार। कला प्रेमी श्रोता मंडली, आज एक पौराणिक विषय वस्तु आधार रे एक सामाजिक शिक्षामूलक पाला परिवेशन करिबा।

0: पनि जन्मभूमि छ स्वर्गादपि गरियसी
1: गरियसी
0: हमर जन्मभूमि भारत वर्ष देवभूमि ए भारत वर्ष रे स्वयं भगवान रामकृष्ण रूप अवतार ग्रहण करंती
1: करंती
0: एवं हमर परम सौभाग्य आमे आज ए भारत माटे जन्म ग्रहण करिसंती पुणि देव दुर्लभ मनुष्य जन्म हिसाब रे गीता कहिला भागवत कहू।

मानव जन्म मही तपस्या परे आमे पाई चंती देव दुर्लभ मनुष्य जन्म श्रीमद भागवत व्यास कहते आज स्थावर।

0: हिसाबरे कोड़े लक्ष जन्म जलचर प्राणी हिसाब से गला नौ लक्ष जन्म कृमि कीट हिसाब से एगार लक्ष जन्म
1: चालीस
0: पक्षी हिसाब से दस लक्ष जन्म
1: पचास
0: तापरे पशु हिसाब से तीस लक्ष जन्म माकड़ हिसाब से चार लक्ष जन्म
1: चौराशी
0: चौराशी लक्ष जन्म पर मानव जन्म ये संसार मनुष्य हिसाब से कहीं जन्म ग्रहण कर उत्कलमणि गोपबंधु दास।

0: ये छात्र रो अज्ञान अंधकार को विनाश करी
1: अरे
0: ज्ञान चक्षु को विकसित कर परंती से होचंती आदर्श गुरु
1: गुरु गुरु
0: जे पाश्चात्य कवि को भाषा रे
1: अच्छा
0: फादर ब्रिंग्स द चाइल्ड फ्रॉम हेवन टू अर्थ
1: यस
0: बट ए टीचर सेंड्स हिम अप बापा कौन करती गोटे स्वर्गत आत्मा को आनी मर्त्यपुर जन्म
1: दिखती
0: जन गुरु अखंड क्षमता अच्छी ज्ञान दे न मर्त्यपुर छात्र को आज्ञा स्वर्गपुर को पठे पारती आश्रम कच रही संजीवनी मंत्र शिक्षा करें
1: कथा
0: समस्त राक्षस मैंने जान पारे
1: जदि
0: देवता मान संजीवनी मंत्र प्राप्त हे सब राक्षस मान आज भेड़ा बुड़ी जीव बकट पिला बेसी बड़ पिला नुह।

0: गद सहित कतर चिता भस्म को गोल जाए गुरु पहुंची
1: गले
0: गुरु शुक्राचार्य मद्यपान अभ्यास
1: एणु
0: से चिता भस्म मिश्रित आज्ञा मद्य को आज आनंद मन पान करदे दत्त गुरु शुक्राचार्य पूजा लगन गड़ी गला देखिले घड़ी देखिले कच
2: ना
0: कच गला कड़े समस्त कथा बार्ता हो
2: सकाल प्रहरु जाई छी ए पर्यंत नदी रु फेरी नी रे बाबा
0: आज कोलाहल।

0: कचो
1: आज्ञा
0: अछो कोठी
1: मु आपन को पेट भीतर अछि गुरुदेव
0: पेट भीतर
1: हां
0: गल्लु केमिति
1: आइस मध्य सहित आपन को ये राक्षस छुआ माने आपन को दक्षिणा छल रे मोर मला पाउ सुकु पेई दे जंती आपन को
0: सुनि पाले शुक्रमुनि
2: ए
0: आज सुनि हेबो

सुनील पर सुनुले पाला परेशन करते शिल्पी सुभाष चंद्र पंडा एवं साथी कलाकार आकाशवाणी बारिपदा प्रचार करुछु एकक हिंदी कथाचित्र गीतर कार्यक्रम आज एथिरे सुनंतु हिंदी कथाचित्र स्वप्ने साजन केर केतोटी गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। राष्ट्र आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है।

0: यह दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने का दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है।
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, यह वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। परिषद के अनुसार H1N1 समेत मौसमी इन्फ्लुएंजा अधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न है तथा अधिकतर लोग उचित देखभाल और विश्राम के बाद इससे उबर जाते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा के लिए मॉस्को पहुंच चुके हैं। वे रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान डॉ जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक का समापन आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हो गया। इसमें ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ହିନ୍ଦୀରେ ସମାଚାର ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କଲୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆକାଶବାଣୀ ବାରିପଦା ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓଗୁଡ଼ିକରେ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି 11:05 ଶୁଣନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ କେତୋଟି ସୂଚନା। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 6:05 ପ୍ରଚାର କରିବ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦନା। ସକାଳ 7:00 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା। ସକାଳ 7:25 ସୂଚନା ମୂର୍ଚ୍ଛନାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିକ୍ରମା। ସକାଳ 8:35 ଗୀତାଞ୍ଜଳି। ଦିନ 12:00 ଓଡ଼ିଶୀ କୀର୍ତ୍ତନ। ଦିନ 1:20 ମହିଳା ମହଲ। ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ପ୍ରାୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ NCERT। ସନ୍ଧ୍ୟା 6:00 ଭକ୍ତି ଗୀତ। 6:15 ସୁଗମ ସଙ୍ଗୀତ। ରାତି 7:00 ଆଦିବାସୀ ସଙ୍ଗୀତ ଚାଷବାସ ପ୍ରଚାର କରିବୁ। ରାତି 7:30 କେତୋଟି ଓଡ଼ିଆ କଥା ଚିତ୍ରର ଗୀତ ପ୍ରଚାର କରିବୁ ରାତି 8:00। ଏ ଥିଲା ଆସନ୍ତାକାଲିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ କେତୋଟି ସୂଚନା। ଆକାଶବାଣୀ ବାରିପଦା ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ ଆଜିର ଅଧିବେଶନକୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 5:55। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭରାତ୍ରି ସହ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।